0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में। अभी आपने सुना प्रवर टंडन का राग ललित में बांसुरी वादन।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा GST, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने

0: कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब दो दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahmakumari's campaign Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Vikasit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahmakumari's Nadiyad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both the nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties."
3: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
1: Department of Fisheries will organize a review meeting on development of fisheries in Kolkata today. The meeting will be co-chaired by Union Minister of Fisheries Rajiv Ranjan Singh and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said the review meeting is being organized to chalk out a roadmap for huge untapped fisheries potential.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम वंदना का। तो लीजिए सुनते हैं सबसे पहले ये वंदना में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुना है कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे रवि शर्मा माधुब की लिखी हुई लघु वार्ता धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा।
2: धार्मिक ग्रंथ से तात्पर्य है ऐसा ग्रंथ जिसका संबंध किसी न किसी धर्म की मान्यताओं, नियमों, संदेशों आदि से हो। विश्व में मुख्यतः 12 धर्म प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्म के कुछ नियम, अनुशासन, संदेश आदि दिए, जिनमें से कुछ कालांतर में ग्रंथों के माध्यम से लिखित रूप ग्रहण कर भक्तों तक पहुंचे। विश्व के लगभग प्रत्येक धर्म में मानव के लिए हितकर, प्रेरक, उन्नयन आधारित विचार प्रस्तुत किए गए। सभी धार्मिक ग्रंथों में जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चिंतन किया गया। जीवन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। मनुष्यों के भीतर छिपे पशु को दबाए रखना और उसके देवत्व को उभारने का प्रयास भी अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध या जैन धर्म हो, सभी के धार्मिक ग्रंथ मनुष्य को सदमार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि ये धार्मिक ग्रंथ ईश्वरीय प्रेरणा या दैवीय प्रेरणा से लिखे गए। विश्व के कुछ प्रमुख धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ हैं वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। वेदों में जिस ज्ञान के भंडार को समाहित किया गया है, उसके वास्तविक अर्थ को समझने, यज्ञों में उस ज्ञान की प्रयोग विधि जानने, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तथा उसकी सुरक्षा के लिए ऋषियों द्वारा रचित वेद संबंधी ग्रंथों के 6 भाग हैं। वेदांग 6 हैं, उपवेद 4 हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात रामायण एवं महाभारत। स्मृति ग्रंथ हालांकि 250 का उल्लेख मिलता है, लेकिन लगभग 100 ही उपलब्ध हैं और उनमें भी 22 अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। जैन धर्म के दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाने वाले 44 ग्रंथ माने जाते हैं। गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहब सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसमें विभिन्न संतों और गुरुओं की वाणी को शामिल किया गया है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जिसके 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इसमें कई धार्मिक आदेश हैं, जिनमें प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करने की आवश्यकता भी शामिल है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तकें हैं तनख तथा तलमूड। तनख को हिब्रू में बाइबल कहा जाता है। तनख यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन रक्षा से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम् विन्याद याति पात्रताम। इस पूरे श्लोक का जो अर्थ आता है वह है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है।

0: और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। ये ग्रंथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धार्मिक विश्वास को फैलाने का काम करते हैं। ये नैतिकता, जीवन मूल्य तथा मानव मूल्य सिखाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये ग्रंथ मानसिक शांति, आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग हैं। ये धार्मिक ग्रंथ जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट करने वाले दिव्य वचन हैं। धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हुए धर्म, अर्थ, काम और मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के अर्थ तथा मूल भाव को जानें, समझें और अपनाएं। इससे हम धर्म के नाम पर प्रचलित कुरीतियों और ढोंग आडंबरों से बच पाएंगे।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब वक्त है कार्यक्रम रामचरितमानस का। आज इसमें सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 55।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रिय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जल संपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जल सुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं न हि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षं अस्तित्व साधकमस्ति। गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्ध विमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीय धरायां जापानी युद्ध विमानानां प्रथम प्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षा संबंधेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति। नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकाता नगरे मत्स्यपालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति। अस्यां सभायां केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंहः मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः। पश्चिम बंगे मत्स्य संपदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्न योजनानां अनुपूर्विक प्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतन मार्गचित्रं प्रस्तूयते। 44वीं शतरंज ओलंपियाड स्पर्धायां प्रज्ञानंदः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नीदरलैंड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अंकांतरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैंड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् संप्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशे युद्धकाले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचनायोगानुसारं 55.66% यावत् जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे युक्रेन दलानि सहस्राधिकान् ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुं उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थ राष्ट्रैः सह होर्मुज मार्गं मोचयितुं 7 नियमैः सह संधि परामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्ण विनाशः आर्थिक प्रतिबन्धः संधिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकी बलैः सह संग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराम मन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतन स्वर्ण युगस्य अभ्युदयः सञ्जातः। कृत प्रयत्नेन अयोध्या पुनः एकदा वैश्विक धार्मिक पर्यटनस्य अथ सनातन धर्मस्य मुख्य केन्द्रम् अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयेन मन्दिर निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। दीपोत्सव सदृशैः भव्य आयोजनैः च अस्याः सांस्कृतिक वैभवस्य पुनरुद्धारः साक्ष्यसिद्धः अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।
2: विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और NIA ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का, जिसमें आज आप सुनेंगे सरोज कुमार मोहंती के गाए भजन। इसमें सरोद पर संगत दे रहे हैं दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं नफीस खान और तबले पर संगत दे रहे हैं पशुपति नाथ मिश्रा। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में सरोज कुमार मोहंती के गाए भजन। संगत कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपतिनाथ मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कोई ऐसा दौर है जिसे हम जितना पीछे छोड़ते जाते हैं उतना ही उसे अपने करीब महसूस करते हैं, तो वो है बचपन। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन जब छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी। एक टॉफी भी मिल जाती थी ना तो हमारा दिन बन जाता था। बारिश हो जाए तो छतरी से ज़्यादा कागज़ की नाव हमें ज़रूरी लगती थी। और छुट्टी का मतलब तो होता था बस खेलना, घूमना और दोस्तों के साथ शरारतें करना। साथियों, बचपन वो समय था जब हमें ना कल की चिंता थी और ना आज की जल्दी। बस एक दुनिया थी जिसमें खिलौने हमारे दोस्त थे, पेड़ हमारे झूले थे, गली हमारा खेल का मैदान थी और माँ की आवाज़ हमारी सबसे सुरक्षित जगह होती थी। तो आइए आज कुछ देर के लिए उम्र की सीढ़ियाँ उतरते हैं और लौटते हैं उस खूबसूरत दुनिया में, हमारे बचपन की दुनिया में।

दोस्तों, क्या आपको याद है वो लकड़ी की काठी? किसी के पास खिलौने का घोड़ा होता था तो कोई तकिए को ही घोड़ा बनाकर उस पर सवार हो जाता था। बचपन में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती थी दोस्तों। एक चादर और वो बन जाती थी तंबू, और दो कुर्सियां बन जाती थी अपना घर, और एक डिब्बा तो उसमें छुपा होता था पूरा खजाना। आज हमारे पास बहुत कुछ है साथियों, लेकिन शायद वो कल्पना नहीं है जो एक साधारण सी चीज को भी खास बना देती है।

साथियों, बारिश का बचपन से कितना गहरा रिश्ता होता था ना। पहली बारिश होते ही स्कूल से लौटते समय रास्ते में पानी जमा होना और मन करे कि जूते उतार कर सीधे पानी में कूद जाओ, कागज की नाव बनाना, उसमें कभी छोटा सा फूल रख देना और फिर उसे पानी की धारा में बहते हुए देखना। कितनी छोटी सी बात थी लेकिन खुशी कितनी बड़ी थी। साथियों, आज हम बारिश देखते हैं तो सोचते हैं ट्रैफिक कितना होगा, ऑफिस कैसे पहुंचेंगे, कपड़े कैसे सूखेंगे, और बचपन में बारिश का मतलब सिर्फ होता था मस्ती।

दोस्तों, बचपन में त्योहार जब आते थे तो उनकी खुशी ही अलग होती थी। दिवाली मतलब नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ और सबसे बड़ी बात छुट्टियाँ। होली मतलब रंगों से ज्यादा दोस्तों को रंगने की कोशिश। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई और त्योहार, बचपन में त्योहार का मतलब सिर्फ सबसे घर सबके घर जाना, कुछ अच्छा खाना और खूब खुशियाँ बांटना।

लगता था। फिर आती थी वो सबसे खास आवाज, छुट्टी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती थी, ऐसा लगता था जैसे आजादी मिल गई हो।

सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

सदियों बचपन में दोस्तियां भी कितनी सच्ची होती थी ना। ना किसी दोस्त का बैंक बैलेंस पता था, ना उसका स्टेटस, ना ये पता होता था कि कौन कितना बड़ा बनेगा। बस इतना पता था, ये मेरा दोस्त है। गली में खेलते खेलते झगड़ा हो गया और फिर 5 मिनट बाद उसके साथ फिर खेलना शुरू हो गया। कितनी आसानी से हम एक दूसरे को माफ कर देते थे। शायद बचपन हमें यही सिखाता है साथियों कि रिश्तों में हिसाब नहीं, दिल देखा जाता है। दोस्तों बचपन सिर्फ उम्र का एक हिस्सा नहीं है, बचपन हमारे अंदर कहीं छिपा रहता है। कहीं कभी पुराने गाने में मिल जाता है, कभी स्कूल की पुरानी कॉपी में, कभी किसी पुराने खिलौने में, तो कभी किसी मोहल्ले की गली देखकर अचानक याद आ जाता है। और कभी माँ की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम फिर से वही छोटे बच्चे बन गए हैं।

दोस्तों समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो मुझे यानी अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। छोड़े जाती हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
3: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
2: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
4: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
2: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी आरंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
6: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
7: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
6: पर्यटकों की

0: संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे का आगाज कर रही हैं। वो कल एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब की सदारत करेंगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबियों को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलात नशरियात की वजारत की तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस मुबाहसे के लिए अक्वाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली का ये 81वां इजलास एतमाद की बहाली यकसर तब्दीली का बंदोबस्त एक अक्वाम मुत्तहदा जो सबको खिदमात फराहम करती है के मौजू पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस जनरल असेंबली में अक्वाम मुत्तहदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैन अक्वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ तय करेंगे। अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा है कि वो बैन अक्वामी ताउन को मजबूत करें, जैसा कि वो जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अक्वाम मुत्तहदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी ताउन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने और अमन वक़ार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इकदाम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम ने मोदी के अपने ओहदे की खिदमात अंजाम देते हुए 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उनका सफर जन सेवा से देश सेवा के उसूल और अवामी खिदमत के तई उनके लगातार अज़्म पर मबनी है। हुकूमत जो खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के तसव्वुर से मुतहर्रिक है, 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के तई काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी इख्तियारात के जरिए इस अज़्म से लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस ज़िम्न में हम पीएम किसान के बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी तादाद में पीएम किसान स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अहल किसान हर साल 3 बराबर की किस्तों में 6,000 रुपए की माली मदद हासिल कर रहे हैं। ये रकम इन्हें बराह रास्त बैंक खातों में मिल रही है। ये मदद किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है कि वो कीमियावी खादों, बीजों और दीगर ज़रई कामों को पूरा कर सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की ज़रूरतों के पेश नज़र लगातार काम कर रही है।
3: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी

0: काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: इस स्कीम का आगाज 2019 में किया गया था और अभी तक 4,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 24 किस्तों में किसानों को जा चुकी है। 23वीं किस्त से 9,49,00,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। मरकजी हुकूमत ने अब पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए की माली मदद मुख्तस की गई है। छिंदवाड़ा के एक किसान बसंत पटेल ने बताया कि किसान मजीद 5 साल के लिए इस स्कीम को जारी रखने के फैसले से काफी खुश हैं।
2: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: खातून किसानों को भी इस स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अभी तक 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खातून किसानों को दी जा चुकी है। इस स्कीम में डिजिटल तस्दीक, आधार तस्दीक और बराह रास्त फायदा मुंतकली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रकम को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाया जा सके। भोपाल से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
3: सदियों के इंतजार के बाद अजीमुशान राम मंदिर की तामीर से अयोध्या के एक नए बाब का आगाज हुआ, जो भगवान राम का शहर है और जिसकी वजह से मजहबी, सियाहत और तरक्की के आलमी नक्शे में ये शहर इम्तियाजी हैसियत का हामिल हो गया है। मरकजी और रियासती सरकारों की कोशिशों से अयोध्या में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ और ये शहर सनातन धर्म का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: साल 2014 में मरकज में हुकूमत की तब्दीली और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के कायम होने के बाद से भगवान राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर बदलने का अमल तेज हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शानदार राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हुआ, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव जैसे प्रोग्रामों के जरिए अयोध्या के सकाफती और मजहबी शानो शौकत को नई पहचान देने की कोशिश शुरू हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये शहर आलमी सतह पर मजहबी सयाहत, सनातन संस्कृति और तरक्की की अहम अलामत के तौर पर उभरा है। इसी राम की नगरी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए हमें अपने अंदर भगवान राम के उसूलों को बेदार करना होगा।
5: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
4: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक अयोध्या में सकाफती, समाजी और माशी मैदान में बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सैलानियों की तादाद में इजाफे के साथ साथ राम नगरी को आधुनिक सहूलियात से भी लैस किया गया है।
6: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, हर तरफ युगांतरकारी परिवर्तन हुए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
4: आज अयोध्या सिर्फ अकीदत का मरकज नहीं बल्कि मजहबी सयाहत, बेहतर राबते और रोजगार के मौकों के जरिए तरक्की की नई राहें भी हमवार कर रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं। सर ट्रंप का ये बयान ईरान के सदर मसूद पेजिशियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आए हैं, जहां वो अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यम्बू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खुसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि यह पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वो मोहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें रियाज की जानिब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ताजा कशीदगी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुकाम ने फजाई हमले के मुमकिन खतरे के तनाजुर में हंगामी इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इकदामात पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बताया है कि राजस्थान के मजीद कुछ इलाकों और पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों से अगले दो दिन में जुनूब मगरबी मानसून के इख्तिताम की तरफ बढ़ने के हालात हैं। महकमे ने झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। इसी तरह के मौसमी हालात मशरकी राजस्थान, गुजरात, केरला, माहे, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के कुछ इलाकों में कल तक इसी तरह के मौसम का इम्कान जाहिर किया है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें मरहले में भारत के मर्दों की शतरंज टीम ने हॉलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम को पोलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के मर्दों की टीम ने मुसलसल 5 मैच जीतकर अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा और वो उज़्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ लीडर बोर्ड्स पर मुश्तरका तौर पर सर फहरिस्त है। आर प्रज्ञानंदा ने चंद डॉस के बाद शानदार वापसी करते हुए अनिश गिरी को शिकस्त दी। अर्जुन इरिग्यासी ने सख्त मुकाबले के बाद जॉर्डन वान फॉरेस्ट के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। नेहाल सरीन ने तजर्बाकार लोइक वान वेली के खिलाफ आसानी से ड्रॉ हासिल किया, जबकि डी गुकेश ने अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखते हुए इरविन को शिकस्त दी और 5 खेलों में अपनी चौथी इन्फरादी फतह हासिल की। दूसरी जानिब भारतीय खवातीन टीम को टूर्नामेंट में पहली बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। आर वैशाली की शिकस्त महंगी साबित हुई, क्योंकि टीम के बाकी खिलाड़ी इस कमी को पूरा ना कर सकें, जिसके नतीजे में टीम को 1.5-2.5 से मामूली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खवातीन की टीम 8वें नंबर पर आ गई है, ताहम वापसी के लिए अभी 6 राउंड बाकी हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
7: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, अक़्वामे मुत्तहिदा जनरल इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी अमन इक्तसादी उमूर, न्यूक्लियाई हथियार जैसे अहम मसाइल पर मुल्क का मौक़िफ़ रखेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर ईरान अमरीका जंग से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, जंग खत्म करने का फैसला अब अमरीका के सवाबदीद पर है ईरान का बयान। और इसी अखबार ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के खदशे से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, अमरीका ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, डोनाल्ड ट्रंप कैंप डेविड का दौरा मुख्तसर करके व्हाइट हाउस वापस हुए।
3: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगे। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब वक्त है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा में कार्यक्रम नीता सूरमा का गायन ठुमरी दादरा, राग है मिश्र भैरवी। तो लीजिए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में ये।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा के कार्यक्रम में नीता सूरमा के गाए ठुमरी दादरा, राग थी मिश्र भैरवी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं जसपाल कौर। अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक वार्ता, इस तो अलावा असी शब्द भी सरवण करांगे। अज 21 सितंबर है ते अज दा दिन विश्व अल्जाइमर दिवस वजों मनाया जांदा है। इस दिन दा मुख उद्देश लोकां नूं अल्जाइमर बारे जागरूक करना अते इस बीमारी नाल जुड़ियां गलत धारणावां नूं दूर करना है। अल्जाइमर याददाश्त नाल जुड़ी एक गंभीर अते लाइलाज बीमारी है, जिस विच हौली हौली व्यक्ति दी याददाश्त, सोचण दी शक्ति अते रोजाना दे काम करन दी समर्था घट हुंदी जांदी है। अल्जाइमर दे मरीज रोजमर्रा दे कामकार अते अपने नाल जुड़ियां जरूरी जानकारियां नूं याद रखण विच वी परेशानियां दा सामना करदे ने। इस बीमारी दे शुरुआती लक्षण आम तौर ते उमर वधण नाल जोड़ के नजर अंदाज कर दिते जांदे ने। अल्जाइमर दे रोगी वार वार गल्लां या चीजां नूं भुल जांदे ने अते उन्हां दे सुभा अते व्यवहार विच अचानक बदलाव भी हुंदा है। अल्जाइमर दे मरीजां नूं प्यार, हमदर्दी अते देखभाल दी लोड़ हुंदी है। सेहतमंद जीवन शैली, पौष्टिक आहार, नियमित कसरत अते दिमागी तौर ते सरगर्म रहण नाल इस बीमारी दे जोखम नूं काफी हद तक घट कीता जा सकदा है। अज दा दिन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस वजों भी मनाया जांदा है। इह दिन पूरी दुनिया नूं अमन, भाईचारे अते अहिंसा दा सुनेहा दिंदा है। शांति मनुखी जीवन दा आधार है। जिथे शांति हुंदी है उत्थे ही तरक्की, खुशहाली अते विकास संभव है। दुनिया भर दे देशां विच आपसी प्रेम, अहिंसा अते भाईचारक सांझ नूं वधावा देण दे उद्देश नाल ही संयुक्त राष्ट्र वल्लों साल 1981 विच इस दिन दी शुरुआत कीती गई सी। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस सानू याद करवाउंदा है कि युद्ध नाल कोई भी मसला हल नहीं हुंदा, सगों गलबात अते प्यार नाल हुंदा है। ए दिन मनुखी अधिकारां अते आपसी सत्कार दी भावना नूं भी मजबूत करदा है। शांति सिर्फ जंग ना होण दा नाम नहीं है, सगों ए एक दूजे नूं समझण, एक दूजे दा सत्कार करन अते रल मिल के अगे वधण दा नाम है। ते आओ अज दे प्रोग्राम दे शुरू विच सुणदे हां ए वार्ता, नारी आत्म निर्भरता अते सशक्तिकरण। ते वार्ताकार ने डॉक्टर सारिका शर्मा।
1: समुचे विश्व दी अद्धी वसों नारी किसी भी खुशहाल समाज अते देश दे लगातार विकास करन दी दिशा विच सब तों मजबूत अते महत्वपूर्ण नी होंदी है। अजोके समय दौरान नारी दी आत्म निर्भरता अते सशक्तिकरण नूं 21वीं सदी दी एक बहुत वड्डी लोड़ मन्या गया है। इस परिपेख अधीन बदलदे ग्लोबली प्रसंगां ते संदर्भां विच मुड़ नवी दृष्टि तो पुनर्विचार करन दी जरूरत भी दिखाई देंदी है, ताकि इस दी दिशा अते दशा नूं लैके नवीआं संभावनावां अते अंतरदृष्टियां नूं उजागर कीता जा सके। नारी दे सशक्तिकरण दी प्रक्रिया अते मुद्दा आरंभ तों जटिल अते बहुअर्थी रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य एहो है कि इस दी प्रक्रिया अधीन नारी दी आत्मनिर्भरता ही उसदे आत्मविश्वास, समर्थावां अते स्वयमान दी नवी पछाण भी सिरजदी है। दरअसल नारी सशक्तिकरण दा अर्थ है नारी नूं शक्तिहीन स्थिति तों शक्तिशाली स्थिति वल वधाउणा। मर्दां वांग औरतां किसे भी समाज दा एक अनिखड़वां अंग हन, फिर भी उन्हां दी सरगर्मी अते सरपरस्ती समाजक, आर्थक, राजनीतिक गतिविधियां विच बहुत घट है। जे इतिहासक दृष्टि तो देखा जावे तां बहुत घट वध ही समाज विच पैसिव लाभपात्र रहियां हन। औरत बारे समाज विच लगातार होंदे आ रहे अवमूलीकरण अते कमजोर कड़ी होण दे गलत दृष्टिकोण करके भी औरत दे सशक्तिकरण दा महत्व होर भी वधेरे सार्थक अते प्रासंगिक बनदा है। औरतां नूं समाजक, आर्थक, राजनैतिक गतिविधियां विच शमूलियत करन लई वध तों वध प्रेरित कीता जावे। औरतां नूं अपने फैसले आप लैण दा हक प्रदान करना अते उन्हां नूं इस योग बनाना कि ओह अपनी जिंदगी, सिक्ख्या, कैरियर अते सेहत संबंधी फैसलियां नूं

0: गैर किसी बाहरी दबाव दे अपने आप करन। इस दिशा विच औरत सशक्तिकरण दे प्रमुख चार थम आखे जा सकते हैं। इन्हां विच सब तो महत्वपूर्ण थम है विद्यक सशक्तिकरण। विद्या हासिल करना हर कुड़ी वास्ते बहुत जरूरी है। इस दे राही उदे अंदर व्यक्तिगत समर्था अते योग्यता विकसित होंदी है। विद्या ज्ञान हासिल करना अंधविश्वासां रूढ़ीवादी भरमां नूं तोड़ना भी सिखाउंदा है। जिंदगी विच सही गलत निर्णय लैण बारे सकारात्मक सोच ते एक दृष्टि नूं विकसित भी विद्यक सशक्तिकरण ही करदा है। इस तों इलावा आर्थिकता दे पक्ष तों भी औरत नूं आत्मनिर्भर बनाउंदा है। इवें सिक्ख्या हासिल करके औरतां जीवन दी गुणवत्ता तों जाणू हुंदियां हन। अज दे समय विच विद्या दा प्रचार ते प्रसार हुनर कौशल नूं विकसित करन नाल भी जुड़ चुक्या है। ऐसे करके विद्यक अते रोजगार प्राप्तियां करके औरत ने घर परिवार समाज अते अपने देश दा मान वधाया है। औरतां ने अपने सुपनियां नूं हकीकत विच बदलदे होए विज्ञान टेक्नोलॉजी पुलाड यात्रा प्रशासनिक सेवावां उद्यमी तो लैके खेडां तक नवे नवे कीर्तिमान स्थापित कीते हन। सिक्ख्या हासिल करन दी राहत विच आउंदियां मुश्किलां ने भी उन्हां अंदर नवे विचार विजन दित्ते हन अते मेहनत करन दी राह दित्ती है। दूजा आत्म निर्भरता दा संचार। ए एक अजेहा महत्वपूर्ण थम है जदों तक कोई औरत आर्थिक तौर ते किसे होर ते निर्भर हुंदी है तां ओ ना तां पूरी तरह स्वतंत्र होके सकारात्मक निर्णय लै सकदी है अते ना ही स्वय विश्वास रख पाउंदी है। आर्थिक रूप विच अपने पैरां ते खड़े होना औरत दे अंदर कई सकारात्मक बदलावां नूं लै के आउंदा है। मसलन उसदा घर परिवार अते समाज विच दर्जा महत्वपूर्ण हो जांदा है। उसदे राही आखी गई गल्लां नूं वजनदार भी मन्या जांदा है। औरत दी आत्म निर्भरता अते सशक्तिकरण दी बहुपासारी भूमिका आर्थिक समाजक मानसिक तौर ते मजबूत बनाउण विच बहुत वड्डी रही है। इस दे सिट्टे वजों ही ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਮਨੋ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਤਣਾਓ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਣ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਅਕਦੀ ਥੱਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ बेहतर जीवन जीवन अते फैसले लैन विच सहायक हुंदी है। मनोविज्ञानिक पक्ष तों औरतां दी दशा सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदियां तों चली आ रही पक्षपाती सोच परिवार दे दबाव अते जिम्मेवारियां करके घट आत्मविश्वास अते हीनता भाव दा शिकार औरतां हुंदियां रहियां हन। इस दिशा विच उन्हां दी स्वय पछाण नूं वखरी शख्सियत वजों विकसित करना बहुत जरूरी है। घर अते समाज विच सांझी जिम्मेवारी अते आपसी सहयोग दी भावना नूं औरत मर्द दोहां अंदर विकसित करना भी व्यापक सशक्तिकरण नूं प्रफुल्लित करन विच मददगार बनदा है। आधुनिक समय विच समाजक राजनीतक अते वड्डियां वड्डियां तब्दीलियां होण करके औरत नाल होर वखरे संबोधन जां शब्दावली वी वर्ती जान लग पई है, जिवें पढ़ी लिखी औरत, कमकाजी, पेशेवर, आत्मनिर्भर औरत, उद्यमी, नारीवादी, अध्यापका, लेखका, विज्ञानक आदि। इवें समाज दी मानसिकता विच कुड़ी चिड़ी, ती ध्याणी वर्गे शब्द भावनात्मक नेड़ता अते ममता भरे बोल प्रदान करदे होए औरत नूं मानसिक भावनात्मक बल प्रदान करदे आ रहे हन। एही कारण है कि वख-वख खेतरां विच उपलब्धियां हासिल करदी पंजाबण औरत ने समुचे विश्व मंच ते आत्म गौरव वधाया है। एवें औरत विश्व मंच ते आत्म गौरव वधाउंदे हुए औरत सशक्तिकरण विच साडी लोक धारा विरासत अते साहित दी वी वड्डी भूमिका रही है। इस दे प्रभाव करके शोषण अते पिछा खिचू प्रतिमाना बारे खामोशी नहीं वर्तदी अते स्वय चेतन होके औरत अग्गे वध रही है। इस दिशा विच समय समय सिर नारी स्थिति नूं सुधारण लई कई इतिहासक कदमां ते नीतियां नूं लागू कीता गया है। ऐसे तरह सरकारी सिख्या, हुनर सिखलाई, संस्थागत कर्जे तक औरतां दी पहुंच नूं आसान कीता जा रहा है। उदाहरण लई मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना अते नारी शक्ति वंदन अधिनियम औरत विकास दे नाल नाल औरत विकास दी अगवाई करन दा कारज वी करदे हन। हालांकि हाले होर सफल रणनीतियां दी पछाण करनी जरूरी है।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी डॉक्टर सारिका शर्मा दी वार्ता नारी आत्मनिर्भरता अते सशक्तिकरण। हुण सर्वण करदे हां शब्द ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ।

ये शब्द तुसी भाई हरचंद सिंह रागी ते साथियां दियां आवाजां विच सरवण कर रहे सी। मेरा मुझ में किछ नाही, जो किछ है सो तेरा। हुन सरवण करदे आं भाई गोपाल सिंह रागी ते साथियां दियां आवाजां विच ये शब्द।

शब्द तुसी भाई बलविंदर सिंह रंगीला ते साथियां दियां आवाजां विच सरवण कर रहे सी। आस है कि अज दा ए मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा समा खत्म हुंदा है। हुण जसपाल कौर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 10 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल

स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यारी कलेक्शन होती है। मैं जब भी देखती हूँ तुम्हारे पास कुछ कुछ चीजें ना बहुत हटके होती हैं, और
1: हाँ
0: ऐसी कलेक्शन मेरे ख्याल से फितर सभी को ही
1: देखिए,
0: होती
1: सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपका कि आपने ध्यान दिया। हाँ, मुझे शौक है शोभा जी, मुझे बैंगल्स का, मुझे बहुत चीजों का ऐसा शौक है जो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा वो चीजें हम पे इकट्ठी हो
0: हो
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: है। और दोस्तों को भी ऐसे मेरे ख्याल से फितरत होगी ही, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें कलेक्शन होंगे जो उन्हें अच्छे ही लगते
1: जी
0: होंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना पसंद है, कुछ भी पसंद हो सकता है,
0: हाँ,
1: कपड़े हैं
0: शूज
1: आपके
0: हैं,
1: पास, शूज हैं, कुछ भी, जो भी
0: कुछ भी।
1: आपका मन है। किसी किसी को तो ज्वेलरी रखने का शौक होता है, आपके इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, इन सब चीजों का भी
0: हाँ,
1: शौक
0: कोई
1: होता है।
0: किताबें सिक्के पता नहीं क्या क्या नहीं इकट्ठा
1: जी
0: करते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: दोस्त हम भी जानना चाहेंगे जी। हाँ शिल्पा, बिल्कुल।
1: बिल्कुल, हम अपने दोस्तों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या पसंद है, वो क्या इकट्ठा करके रखते हैं।
0: बिल्कुल। और पर उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, और शायद से हमें ये सब भी लिख के देंगे और गाने की फरमाइश भी लिख कर देंगे आप हमें।
1: जी
0: पर कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और प्यारा सा गीत सुनवा लेते हैं ना।
1: बिल्कुल, सबसे पहले यही हो जाए, उसके बाद हम संदेश लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: जी हाँ, बड़े अरमानों से हम आपसे मिलने आए हैं शिल्पा,
1: जी
0: इन 2 दिन
1: बिल्कुल।
0: से।
1: देखिए शोभा जी, हमें भी अपने श्रोताओं का बहुत इंतजार रहता
0: बिल्कुल
1: है
0: रहता
1: ना।
0: है। और देखो मेल आ चुके हैं, अब
1: जी
0: फटाफट ले
1: बिल्कुल
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल, ना देर करते हुए।
0: हाँ देखो, इनका आया शोभा जी और शिल्पा जी नमस्कार, यानी कि हमारे कार्यक्रम के साथ ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और
1: बिल्कुल
0: ये मेल हमें आया है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का। और अगला मैसेज हम देख लेते हैं।
1: अगला जो हमारे पास शोभा जी संदेश आया है, वो आया है लौरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पाराज और ऋषभ मरावी जी का।
0: और ये संदेश हमें आया है पलारी छत्तीसगढ़ से, है नीलेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और पूनम राव देवांगन, कृष्णा देवांगन जी का। और अगला संदेश।
1: अगला जो संदेश आया है हमारे पास आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी का।
0: और ये हमें संदेश मिला है उमाली महाराष्ट्र से, उद्धव पाटिल, अनूप कुमार और इनके साथ है पलसी से विजय शोगोकर और डॉक्टर जयश्री जी। और ये संदेश हमें आया है।
1: देखिए ये जो हम पे संदेश आया है वो आया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी का। और ये हमें लिखते हैं कि अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं, और बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया कैसी है। देखो शोभा जी कितनी गहरी बात कर दी ना
0: बहुत ही
1: इन्होंने,
0: ज्यादा अच्छी बात कही है कि वाकई में ये वक्त ही है ना जो सब कुछ
1: सब
0: बताता
1: कुछ
0: है।
1: बता देता है।
0: और अगला जो संदेश आया वो आया है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति शामाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जी का।
1: अगला संदेश हमारे पास आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा जी का।
0: और ये संदेश आया है हमें सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, नारायण लाल साहू का। और इनके साथ हैं कुलवंती देवी और मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, दीवेंद्र प्रताप। और इन्होंने बहुत ही प्यारी फिल्म जो एक है उसका गीत सुनना चाहा है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है गांव फरासी हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं।
1: ये गीत

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ दोस्तों, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूँ आज आपके साथ शोभा, और मेरे साथ हैं प्यारी प्यारी शिल्पा
5: जी। शोभा जी, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
4: बिल्कुल पूछिए।
5: देखिए, आपने मेरे तो कड़ों पे बहुत निगाह डाली है, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि आपका क्या शौक है, आप किस चीज का कलेक्शन रखते हैं अपने पास?
4: भाई पहनने की बात करते हैं, हमें शूज का बहुत ज्यादा शौक है, बल्कि इतना ज्यादा हम घर में वो रखे हैं ना कि पूरी तरह से पॉपुलर। एक बार ही मेरे पिताजी ने, जब हमने 12th पास की तो हमने कॉलेज जाना था, तो हमने बहुत सारी चप्पले लेके आए थे, इतनी तो ना हमने पूरी जिंदगी में नहीं पहनी जो तुम एक दिन में ले आई हो।
5: हाँ, ये देखिए माँ बाप का होता ही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ना पैसे अपने ऊपर कभी खर्च किए नहीं
4: किए,
5: और हम ये चीज पहले नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ में आती है। चलिए लेते हैं अपने श्रोताओं के संदेश।
4: बिल्कुल, श्रोताओं ने हमारे जवाब नहीं दिया, हम चाहेंगे कि उन्हें किस चीज का कलेक्शन का इंतजार है, जरूर दें, और साथ में मैसेजेस तो दिए हैं, वो तो हम पढ़ ही लेते हैं।
5: हाँ, हमें अच्छा लगेगा कि अगर वो भी बताएं कि उन्हें किस चीज के कलेक्शन का शौक है।
4: हाँ, तो ये जो श्रोता है ये हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी का ये संदेश। और अगला जो संदेश हमें आया है वो आया है,
5: ये आया है हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना जी का। और अगला जो संदेश है वो आया है धानोरा विटाली, तहसील नादुरा, जिला बुढ़डांडा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल जी का।
4: और अगला संदेश हमें आया है, ये जी ये संदेश तो ले चुके हैं तो अगला ही लेते हैं। ये हमें आया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रत्येश संघई का, और इन्हें पूरे संघई परिवार की ओर से इन्होंने संदेश भेजा है
5: जी। अगला संदेश हमारे पास आया है शोभा जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का।
4: और ये हमारे साथ जुड़े हैं अगले श्रोता मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख और कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जी। और अगला संदेश ले लेते हैं जी। हाँ, ये
5: अगला, हाँ अगला संदेश हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून जी का।
4: और ये हमारे साथ जुड़े हैं वारना शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वनी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान जी। और अगला संदेश
5: हमारे पास आया है अम्बा की, अच्छा ये तो इन्होंने गाने का जो फरमाइश की है, इनका संदेश है राजू अग्रवाल, केशव, विवेक चौधरी वास, हिसार से।
4: और अगला संदेश हमें आया है, ये बहुत सारे संदेश हैं, एक एक बारी में आप बदलना पड़ता है क्योंकि हम बार बार ही तो नहीं पढ़ सकते ना। ये अगला संदेश आया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का।
5: अशुभ, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक और उनकी मनपसंद गीत सुनवा दें।
4: बिल्कुल।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और हम आपकी पसंद में आपसे पूछ रहे थे कि आपको किस चीज़ का कलेक्शन पसंद है, क्या इकट्ठा करना आप चाहते हो।
3: जी देखिए शोभा जी, जैसे ही हमने पूछा, हमारे एक श्रोता ने हमें लिखा है कि मुझे तो किताबों का कलेक्शन बहुत प्यारा है। किताबों का कलेक्शन सिर्फ किताबें जमा करना ही नहीं, बल्कि यादों, विचारों और अनुभवों को सहेज कर रखना है। हर किताब अपने भीतर एक नई दुनिया, एक नई कहानी और कुछ नया सीखने का अवसर छुपाई रहती है। देखिए कितना खूब लिखा है ना। और ये संदेश हमें भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
2: वाकई बहुत ही प्यारी बात, और हमारे को लगता है कि दिल से जुड़े हुए हैं ये।
3: जी बिल्कुल।
2: और अगला संदेश ले लेते हैं, आया है राजू अग्रवाल पंकज चौधरी जी का। जी हाँ, इन्होंने

0: अपनी जगह नहीं बताई कि कहाँ से
1: हमें संदेश भेज रहे हैं।
0: अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से, और ये लिख रहे हैं कि शांति दिवस की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, और साथ में ये लिख रहे हैं शोभा और कुसुम जी नहीं, शिल्पा जी दोस्त।
1: हाँ, शायद सुनने में गलती हुई है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कहते, और मैं तो कहूंगी कि आप भी लिख के भेजते कि उन्हें क्या कलेक्शन पसंद है। हाँ, चलिए कोई नहीं, अगला मैसेज
1: देखिए। हाँ, अगला भी देखिए, संदेश कितना प्यारा हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत करता, दोनों बहनों को सदा खुश रहो और खुशियां बांटो, हमारी यही कामना है। प्लीज़ बहन जी मेल ज़रूर देखिए। देखिए शोभा जी, अब ऐसी बात जो हमारे श्रोता करते हैं ना, तो लगता है देखिए क्या बात कर रहे हैं, हम आपका मेल नहीं शामिल करेंगे तो फिर किसका करेंगे,
0: और फिर कार्यक्रम का क्या फ़ायदा।
1: बिल्कुल। अब देखिए, ये संदेश हमारे पास आया है रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार से, और ये लिखते हैं हमें ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से।
0: और अगला जो संदेश हमें आया है, ये आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का, और इनके साथ कालका से जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी।
1: और जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो आया है हीरामन खिराड़े जी का, सारिका खिराड़े, सोनाली, आदर्श, आर्यन, सभी खिराड़े परिवार से। दूसरा जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास अभय खेड़ा, वाशिम, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें,
0: और साथ में इन्होंने ये भी दिया हुआ है उत्तर कि मुझे हाथ पर घड़ियाल यानी वॉच पहनना बहुत पसंद है। तो
1: बाकी ये भी एक अच्छा शौक है। देखिए, समय तो हमें अपने साथ रखना ही चाहिए।
0: और अगला संदेश ले लेते हैं, आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमाक्ष का। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है,
1: ये हमें आया है शास्त्री नगर वीट शहर से, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल जी का। अशोभा जी, अब संदेश लेना बाद में चालू करेंगे।
0: पसंद का गीत,
1: हाँ, पहले इनकी पसंद का गीत सुनवा दें।

0: बहुत ही प्यारा सुरीला सा गीत जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल चुना जिसको सुनने के लिए।
1: जी बिल्कुल। और देखिए शोभा जी, अब अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है खेल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का जी का।
0: और ये संदेश हमें आया है ऊपरकोट चौखंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी की ओर से, और इन्होंने अब्बासी परिवार की ओर से भी ये संदेश हमें भेजा है।
1: देखिए अगला जो संदेश है वो आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का।
0: उत्तर नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी। और ये हमें संदेश आया है, जी हाँ, ये हमारे नियमित श्रोता है, ये है उत्तम नगर दिल्ली से हमारे जुड़े बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी।

0: अगला जो संदेश है वो है शोभा जी, हमारे पास भंवरपुर बसना से राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन और राजू नेहा जगदीश देवांगन का। ये अगला संदेश है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जी का।
1: और ये हमारे साथ जुड़े हैं अगले श्रोता जी हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जालंधर से।
0: अगला संदेश हमारे पास आया है, ये देखिए, ये हमारे पास आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी का।
1: और हमारे साथ जुड़े हैं आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, स्वीटी स्वीट मास्टर निवान शर्मा जी। और अगला संदेश भी ले लेते हैं। और
0: अगला संदेश
1: जी हाँ, ये आया है हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया जी का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
0: जी,

0: आज से पहले इतनी खुशी नहीं मिली, और दोस्तों हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हम आपसे जुड़ते हैं।
1: जी, और आज जब हम आपके संदेश पढ़ते हैं ना, तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं
0: बिल्कुल लगता
1: होता।
0: है कि हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है
1: जी,
0: प्रोग्राम में।
1: देखिए जो संदेश आया है हमारे तक, वो नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से। और जो दूसरा संदेश है वो है संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से।
0: और ये हमारे साथ जुड़े हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधुराज खोरवाल और भानु प्रकाश जी। और ये लिख रहे हैं कि कार्यक्रम का इंतजार मतलब खत्म होने लगा है कार्यक्रम, और आपने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया, बल्कि दोस्त आपके इस मैसेज की वजह से हमने आपको दूसरी बार शामिल किया। आइंदा से इस तरह से मत करिएगा दोस्त, नहीं तो दूसरे श्रोता रह जाएंगे। चलिए अगला ले लेते हैं संदेश।
1: अगला जो संदेश है वो है छत्तीसगढ़ पलारी से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा जी का।
0: और ये हमारे साथ, जी हाँ, वही संदेश बार बार ही आते हैं ना, तो दोस्त बदलना ही पड़ता है क्योंकि और भी तो श्रोता है। चलिए बता देते हैं अगला संदेश हमें आया श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू जी का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं,
1: जो हमारे साथ अब जुड़े हैं वो हैं दत्रेगी भाटापार छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी का।
0: और अगला संदेश हमें आया है जिला मुरादाबाद, ग्राम धोलापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश और राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। और
1: अगला जो संदेश है वो है दत्रेगी।
0: ये भी दोस्त हमारे संदेश है ना, रिपीटेड संदेश आप हमें भेजते हैं, तो दोस्त बहुत अजीब लगता है
1: हाँ,
0: क्योंकि
1: फिर
0: कुछ
1: दूसरे श्रोता रह जाते हैं ना।
0: वो रह जाते हैं
1: जी,
0: हमारे, तो ये संदेश अगला ले लेते हैं।
1: ये आए हरियाणा से अंकित कागड़े जी का, मोनी कागड़े जी, प्रिंस बोट और सीताराम कागड़े जी और साहिल कागड़े जी का।
0: और अगला संदेश देख लेते हैं। ये हमें आया है रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अनविका, तनुश्री गुप्ता का। ये संदेश हमें बहुत ही प्यारा संदेश इन्होंने हमें भेजा, सजा धजा के भेजा हुआ है।
1: जी
0: और अगला संदेश ले लेते हैं।
1: देखिए, ये आया है मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी का।
0: और ये जल्दी जल्दी से संदेश ले लेते हैं। नगर निगम वार्ड 28, नाज मंजिल, महसौल, सीतामढ़ी से, अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा का कलेर बिहार से है, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट परवीन जी हैं। और अगला संदेश दोस्त, जी हाँ, हमें आगे आगे बढ़ाना पड़ता है ना, इसी चक्कर में आगे बढ़ाते हैं।
1: जी देखिए, जो अगला संदेश है वो है मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन जी का।
0: तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: और इसी के साथ हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है आपकी पसंद यही संपन्न होता है। मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाजत, और मेरे साथ हैं
1: और मुझे भी आप इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपके साथ शिल्पा गोस्वामी।
0: तो नमस्कार दोस्तों। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें

0: भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण रुगनाना संबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने की भारतीय टीम ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar Kevariya tomorrow. We have more from a correspondent.
2: Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the 3 juries. The awards are divided into 3 main sections, feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. The 81st session of the UN General Assembly is scheduled to begin from tomorrow and will continue until the 28th of this month. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will flag off the 4th phase of the Nasha Mukt Punjab Yatra from Talwandi Sabo in Bhatinda today. He will be accompanied by Haryana Chief Minister Nayib Singh Saini. The Yatra is focusing on 3 major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. The United States has issued a security alert for its mission in Saudi Arabia, requiring U.S. company employees working in the country to obtain special authorization for all official and personal travel to the cities of Taif and Yanbu. U.S. mission in Saudi Arabia said the restrictions were imposed due to the ongoing security situation and urged American citizens in the kingdom to remain vigilant and follow recommended security measures. The alert comes after Yemen's Houthi group launched attacks towards Saudi Arabia, including a ballistic missile directed at Riyadh. Iran has ruled out reopening the Strait of Hormuz or returning to the previous framework of negotiations with the United States until Washington meets Tehran's conditions. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf said Iran has conveyed its demands to the United States through intermediaries and would not reconsider its position until Tehran's conditions were fulfilled. Ghalibaf's remarks came after Iran's Central Military Command warned that any renewed U.S. military action against Tehran would trigger attacks against American bases and interests across the region. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. Weather agency said that conditions are favorable for further withdrawal of southwest monsoon from some more parts of Rajasthan and some parts of Punjab, Saurashtra, Kutch during the next 2 days. Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jharkhand, Odisha, Rayalaseema, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands for the day. Indian equity markets are trading higher in early trade, supported by gains in realty stocks and a correction in crude oil prices. In early trade, the Sensex was up around 400 points at 74,703.83, while the Nifty gained 33 points to 23,384.35. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhinlaw won the silver medal with a score of 252.4, while Rudrangsh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event. The Indian trio of Himanshu Dhinlaw, Parth Mane and Rudrangsh Patil finished second with a total score of 1,890.1 behind China's score of 1,899.0. In mixed martial arts, Suchika Tarial bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hon To in the women's 60-kilogram traditional semi-final. President Draupadi Murmu has congratulated Rudrangsh Balasaheb Patil, Parth Rakesh Mane and Himanshu Dhinlaw on winning the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event at the Asian Games 2026. And that is the end of this news bulletin.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। श्रोताओ, आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। श्रोताओ, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे आसपास गांव शहरों में बेटियों को लेकर कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं। आजकल ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़के का जन्म हो। हर 100% में से 90% लोगों की उम्मीद लड़कों पर ज्यादा रहती है, पर अगर लड़के के जन्म की जगह लड़की का जन्म हो जाता है तो वह लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। हमारी आज की नई पीढ़ी में बहुत बदलाव आ गया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोग पुरानी अवधारणाओं को मानते हैं। हमारा आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है कि किस तरह एक औरत को गर्भ अवस्था में सारे ससुराल वाले प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं कि उनकी बहू एक बेटे को जन्म देगी और उनका वंश आगे बढ़ाएगी, परंतु जब लड़की का जन्म हो जाता है तो उससे कैसा बुरा बर्ताव करते हैं और वह औरत कैसे साहस के साथ जिंदगी की लड़ाई को लड़कर जीत लेती है और कैसे अपनी बेटी को अकेले जिंदगी में सफल बनाती है। आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: सुमन, सुमन बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? जल्दी दरवाजा खोलो।
2: पिताजी, आ गए आप? क्या हुआ, आप ऐसे जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? सब ठीक तो है ना पिताजी?
1: सब ठीक है बेटा, मेरे लिए जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ क्योंकि फिर मुझे बाजार भी जाना है।
2: पिताजी, अभी तो आप आए हो और फिर दोबारा इतनी जल्दबाजी में बाजार क्यों जा रहे हो?
1: बेटा, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, वो बता रही थी कि तुम्हें देखने के लिए आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। तुम तैयार है ना? मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ।
2: पर पिताजी, माँ के जाने के बाद आपकी और घर की देखरेख मैं ही करती हूँ, पर अगर मैं भी शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा?
1: अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो।
2: ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो।
0: इस प्रकार शाम को सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। उन्हें सुमन बहुत पसंद आती है, सुमन के घर वालों को भी लड़का बहुत पसंद आता है और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद सुमन की शादी हो जाती है और सुमन अपने ससुराल चली जाती है।
3: सुमन बेटा, यहाँ आना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
2: माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ।
4: सुमन, मेरे लिए खाना लगा दो।
2: जी, अभी लाई खाना।
3: सुमन, मेरे कपड़े धो देना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
2: जी दीदी, धो रही हूँ अभी।
3: हे भगवान, इस घर में कोई भी काम समय पे नहीं होता, एक काम करवाने के लिए 4-4 बार बोलना पड़ता है। मैंने कब से चाय के लिए बोला था, पर तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। बड़ी बहू को देखो, घर बच्चे ऑफिस सब कुछ आराम से संभाल लेती है।
2: ये लीजिए माँ, आपकी चाय। वो मैं सुरेश को खाना दे रही थी ना, इसीलिए चाय लाने में देरी हो गई है।
3: ठीक है, जाओ जाकर और काम कर लो।
4: सुमन, यहाँ आओ।
2: जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको?
4: यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल रखी थी और वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है, मुझे मीटिंग में भी जाने के लिए देरी हो रही है।
2: नहीं जी, मैंने तो टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी। आप रुकिए, मैं कमरे में ढूंढती हूँ।
4: रहने दो, तुम क्या फाइल को ढूंढोगी, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं।
2: जी मुझे याद आया, वो बड़ी भाभी के बच्चे सुबह सुबह एक फाइल को लेकर गए थे, मुझे लगा कि शायद बड़ी भाभी ने ऑफिस के काम के लिए मंगवाई होगी।
4: अरे यार, कैसी अनपढ़ औरत पल्ले पड़ गई है, तुमसे ठीक तो भाभी है जो सारे काम को और पूरे ऑफिस को सही ढंग से मैनेज कर लेती है। अगर भाभी को फाइल चाहिए होती तो वो सीधा वो मुझसे मांगती, बच्चों से थोड़ी ना कहती।
2: आप एक बार भाभी से पूछ लीजिए, शायद वो फाइल अपने ऑफिस में लेकर गई होगी।
4: ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
2: एक बार बड़ी भाभी के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद बच्चों ने फाइल वहीं रखी हो। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया? यह फाइल तुम्हारे चाचा जी की थी और तुमने इसे फाड़ दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? बड़ों की चीजों को हाथ नहीं लगाते।
0: शाम को आरती के बच्चे रोते हुए अपनी माँ आरती के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारी सुमन चाची ने हमें बहुत सारा मारा। फिर आरती सुमन के पास आकर उसे बहुत बुरा बर्ताव करती है और गुस्से में उसे यहाँ तक बोलते हैं कि खुद तो शादी को 4 साल हो गए और घर को एक वारिस भी नहीं दे सकी और मेरे बच्चों को देखकर जलती रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन हर समय उदास रहने लग जाती है। वो हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाती है और आखिरकार कुछ महीनों बाद सुमन को माँ बनने की खुशी मिल जाती है और सुमन बहुत खुश होती है। इस तरह सभी खुश होते हैं और सुमन की भी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। डिलीवरी का समय आ जाता है।
3: सुमन बेटा, तुम्हारी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, अब जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दो, अब और इंतजार नहीं होता।
2: पर माँ जी, पोते ही का क्यों? अगर लड़की हुई तो वो भी

0: तो आपके ही बेटे का अंश होगी।
1: देखो सुमन, ऐसी खुशी के मौके पर ये लड़की का नाम मत लो। मुझे देखो, मेरे पास भी दो लड़के हैं, और तुम्हारी बड़ी जेठानी उसको देखो, उसके पास भी दो लड़के हैं, और लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है।
2: हाँ सुमन, मुझे भी मेरा राजकुमार प्यारा सा बेटा चाहिए। मेरे दिल में बेटे को लेकर बहुत सारे अरमान हैं।
0: ठीक है जी, जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी। हाय, मर गई। बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं होता। कोई है क्या? मुझसे सहन नहीं होता दीदी। माँ जी, मेरे पास आओ, मुझे अस्पताल लेकर चलो।
1: सुमन, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो?
0: दीदी, मुझे अस्पताल लेकर चलो, मुझे डिलीवरी का पेन हो रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा।
1: सुमन रुको, मैं अभी देवर जी को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं।
0: जल्दी करो दीदी।
1: हेलो देवर जी, आप जल्दी घर आ जाइए, सुमन को लेकर हॉस्पिटल जाना है।
2: ठीक है भाभी जी, मैं अभी आता हूँ। चलो सुमन, जल्दी अस्पताल चलते हैं।
3: आप सभी में से सुमन के साथ कौन आए हैं?
2: हाँ जी डॉक्टर साहब, बोलिए।
3: क्या आप सुमन के पति हैं?
2: जी।
3: बधाई हो, आपके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है।
2: डॉक्टर साहब, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, सुमन को तो लड़का हुआ होगा ना?
3: आप कैसी बातें करते हो, सुमन को एक प्यारी सी लड़की हुई है।
4: सुमन के ससुराल वालों की चाहत ये थी कि सुमन एक लड़के को जन्म दे, परंतु जब सुमन ने एक लड़की को जन्म दिया तो उनके घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया, और सुमन की सास और उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया, और सुमन की सास ने उससे कहा कि इस मनुज को लेकर मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तू हमारे घर को एक चिराग नहीं दे सकती। इस तरह सुमन ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई, और सुमन को अपने मायके आए हुए अपनी बेटी के साथ 5 साल बीत गए।
3: सुमन बेटा, तुमसे मिलने हमारे गांव के स्कूल के मास्टर जी आए हैं, वो तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं।
0: नमस्ते सर जी, कैसे हो आप?
5: नमस्ते सुमन, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और आपकी बेटियाँ कैसी है?
0: मैं ठीक हूँ सर जी, बस अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती है, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ लिख नहीं सके, अब मेरी बेटी का भविष्य भी पता नहीं कैसा होगा।
5: सुमन बेटा, आपके पापा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और आपके ससुराल की स्थिति के बारे में भी बता दिया है। आप बेफिक्र रहो, आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित है।
0: भविष्य सुरक्षित है, पर कैसे?
5: क्या आपको नहीं पता सरकार लड़कियों के लिए कितनी सुविधा प्रदान कर रही है? अब कोई भी लड़की अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं है।
0: सर जी, आप मुझे विस्तार से इस बारे में समझाइए, ताकि मैं अपनी बेटी का भविष्य को उज्जवल बना सकूं।
5: सुमन बेटा, अब सरकार लड़कियों का जो पढ़ाई का खर्चा है मुफ्त में उठाती है। स्कूल में लड़कियों के लिए मिड डे मील और स्कूल की वर्दी की व्यवस्था की गई है।
0: अच्छा सर जी, सरकार लड़कियों के लिए इतनी व्यवस्था करती है?
5: हाँ बेटा, सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है।
0: धन्यवाद सर जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब मैं अपनी बेटी को बेफिक्र होकर पढ़ाऊंगी और उसके सपनों को पूरा भी करूंगी।
4: इस तरह सुमन अपनी बेटी को बहुत पढ़ाती है, और उसकी बेटी सुहानी पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, और शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में सुहानी की ड्यूटी होती है, और सुमन और उसके पिता इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन सुमन की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, और सुमन की सास को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जिसमें सुहानी की ड्यूटी होती है, पर सुमन के ससुराल वाले इस बात को नहीं जानते थे।
6: हाय, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी बेटा, अब शायद मैं नहीं बचूंगी।
2: अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी।
6: हाँ माँ जी, आप ठीक हो जाओगी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है।

0: डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया। आप प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए।
1: आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: आपकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। अब वो खतरे से बाहर हैं, परंतु अगर उनको यहाँ लाने में थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद हम उनको नहीं बचा पाते।
0: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, सुमन की सास का ट्रीटमेंट होने के बाद जब सुमन की सास खतरे से बाहर आ जाती है, तभी अचानक से सुमन भी वहाँ आ जाती है।
1: माँ, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
0: सुमन, तुम यहाँ? और ये डॉक्टर तुम्हें माँ क्यों बोल रही है?
3: सुरेश, यह मेरी बेटी है जो आज इतनी बड़ी डॉक्टर है।
4: क्या मतलब, ये तुम्हारी वही बेटी है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था?
3: हाँ माँ जी, ये मेरी वही बेटी है जिसको आपने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया था। पर देखिए, आज इस बेटी ने ही आपको नई जिंदगी दी है, आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है।
4: मुझे माफ कर दो सुहानी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा यही समझती थी कि लड़के ही घर का चिराग होते हैं और लड़कों से ही घर रोशन होता है।
1: दादी जी, अगर मेरी माँ मेरा साथ ना देती और मुझे इतना पढ़ाती लिखाती नहीं, तो शायद मैं आज इतनी बड़ी डॉक्टर ना बनती। और मुझे और मेरी माँ को मेरी लड़की होने पर बहुत गर्व है।
0: सुमन, मुझे माफ कर दो, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज तुमने ये साबित कर दिया कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती, बल्कि अगर उनका साथ दिया जाए तो वो घर का चिराग बनकर घर को रोशन करती है।
3: आप ठीक कह रहे हैं, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है।
0: चलो सुमन, हमारी बेटी के साथ घर चलो।
4: हाँ बहू, अब घर चलो।
3: आज मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है।
2: श्रोताओं, बेटियां परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, और यह अनमोल तोहफा किसी किसी को नसीब होता है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आइए अब सुनते हैं सबरस के अंतर्गत संगीता पंत की आवाज में ये गीत।

अभी सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। अगला हमारा कार्यक्रम है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं अभय रुस्तम सोपोरी द्वारा संतूर वादन। राग है बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अकरम खान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभय रुस्तम सपोरी से संतूर वादन, राग था बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद अकरम खान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक

0: बिना किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुन टो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centers are operational in the country, and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 123rd rank in 2014 to 8th rank in providing this data to the WHO. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahmakumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahmakumari's Nadiad on the occasion. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will flag off the 4th phase of the Nasha Mukt Punjab Yatra from Talwandi Sabo in Bathinda today. He will be accompanied by Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini. The Yatra is focusing on 3 major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York in the USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st

घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए मेरे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, साथ ही हमें आप ईमेल भी करते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से शेर के साथ कि दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, बजेंगे आपके दिल के भितार आहिस्ता आहिस्ता। तो दिल के तार जरूर बजेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बजा रही हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी ये खूबसूरत सा गीत आप फिल्म रफू चक्कर से सुन रहे थे, जिसे गाया शैलेंद्र सिंह और गंचन ने। और आज है 21 सितंबर, यानी कि एक ऐसा दिन जो हमें शांति, संवेदना और इंसानियत की याद दिलाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व शांति दिवस है। शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी शांति हो, बातचीत में सम्मान हो और मतभेदों में भी हमारे भीतर इंसानियत बनी रहे। और इसके साथ ही आज एक और दिवस भी है जिसे हम जानते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। अल्जाइमर हमें ये समझाता है कि जब किसी की यादें कमज़ोर पड़ने लगे, तब हमें उनकी याददाश्त नहीं, उनका हाथ थामना है। धैर्य और अपनापन ऐसे समय में बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और आज ही तिथि के अनुसार श्री नारायण गुरु का समाधि दिवस भी है। उन्होंने समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इंसान की जो पहचान होती है उसकी जाति धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होनी चाहिए। आज के इन तीनों अवसरों का संदेश कहीं ना कहीं एक ही है कि दिलों में शांति, रिश्तों में संवेदना और समाज में समानता, यही एक बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सकते हैं। और देखिए ना, इसी बात पे किसी ने एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा है कि सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। श्रोताओं, आज है एक और खास दिन यानी कि विश्व आभार दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आभार जताने से सिर्फ रिश्ते नहीं, जिंदगी भी आसान हो जाती है। कभी किसी ने आपकी मदद की हो, आपका हौसला बढ़ाया हो, या मुश्किल वक्त में बस आपका हाथ थामा हो, तो आज उसे दिल से कहिए धन्यवाद। आभार के लिए बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। सुबह की चाय, परिवार का साथ, दोस्त की मुस्कान, सेहत, काम और जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, इन सब के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। क्योंकि जब हम शिकायतों से ध्यान हटाकर आभार पर लगाते हैं तो तनाव भी कम होता है और रिश्तों में मिठास भी बढ़ती है। साथ ही हमारा जो मन है ना, वो भी बहुत हल्का हल्का सा महसूस करता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। याद रखिए, आभार कोई औपचारिकता नहीं, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने की आदत है। और देखिए ना, कितना प्यारा सा एक शेर है इसी भाव पर कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और आज के इस विशेष अवसर पर आपके लिए एक खास गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोंसले ने। और आइए अब बात करते हैं जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए 20वें एशियन गेम्स की, जो 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जहां एशिया के खिलाड़ी 43 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि एशियन गेम्स के शुरुआती दौर में ही भारतीय महिलाओं ने बता दिया है कि मुकाबला जज्बे से कैसे जीता जाता है। तो शुरुआत करते हैं शूटिंग से, जिसमें एला वेनिल वलारीवान ने कमाल करते हुए 10 मीटर एयर राइफल की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक उन्होंने अपने नाम किया। टीम में उनके साथ सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद भी थी, यानी भारत के शुरुआती दोनों पदक महिलाओं ने दिलाए। वहीं सुचिका तारियाल ने महिलाओं की 60 किलो ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वे इस वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि क्रिकेट में भी शेफाली वर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया है और फाइनल में जगह बना ली है और एक और पदक सुनिश्चित है। साथ ही हॉकी की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने शानदार शुरुआत करी है, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं वो अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन लेकिन लेकिन जो भारतीय बेटियाँ हैं ना, उन्होंने भाई अपने जो इरादे हैं वो साफ कर दिए हैं कि मैदान कोई भी हो, भारतीय बेटियां अनाड़ी नहीं बल्कि असली खिलाड़ी हैं। तो आइए इसी बात पर आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और मन्ना डे ने।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई पढ़ाई के लिए किताब चाहिए होती थी तो लाइब्रेरी तक जाना पड़ता था, लेकिन आज किताबों की एक बड़ी दुनिया आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद है। जी हाँ, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें, अध्ययन सामग्री, शोध सामग्री और शैक्षणिक संसाधन एक जगह पर मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के लिए हर बार महंगी किताबें खरीदना या दूर की लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं। विद्यार्थी अपनी जरूरत और रुचि के अनुसार सामग्री खोज सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ना जो है वो बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर नाउ से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। नाम, ईमेल, पासवर्ड और जो आपकी शैक्षणिक जानकारी जैसी सामान्य जानकारी होती है वो भरनी होती है। और इसको जब आप भरेंगे फॉर्म को, तो भाई आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि निःशुल्क है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NDLI की बहुत सी सामग्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ व्यक्तिगत सुविधाएं और कुछ लाइसेंस प्राप्त सामग्री जो है उसका अतिरिक्त एक्सेस मिल सकता है। तो इससे जो है आपकी अतिरिक्त हेल्प भी हो जाएगी। तो भाई छात्रों से तो यही कहना है कि वो इससे ज़रूर जुड़े, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए भाई, अब हम भी अपना कदम बढ़ाते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ और खुशी खुशी चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप प्यारा सा गीत जो सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से सुन रहे थे और इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। और आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सेहत की। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है, यकीन मानिए। और इसकी शुरुआत हमारी थाली से ही हो सकती है, यानी कि सही खान पान से हम खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही खान पान का मतलब महंगे या मुश्किल डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रोज़ के खाने में थोड़ा सा संतुलन ही तो लाना है। थाली में आपको दाल, हरी सब्जियाँ और जैसे दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं, पनीर है, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को जगह देनी है। और साथ ही बहुत ज़्यादा तला भुना मीठा और पैकेट वाला खाना जो है वो आपको कम करना है या फिर नहीं ही खाइए। और इसका जो असर है वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मूड और एनर्जी पर भी पड़ता है। तो पेट जब हल्का होता है तो काम में भी मन लगता है और दिन भर सुस्ती भी कम महसूस होती है। और एक अच्छी बात पता है क्या है, इसके लिए किसी खास दिन का इंतज़ार नहीं करना, आज की ही जो आपकी अगली थाली है ना उससे ही शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो किसी दवा की दुकान से नहीं बल्कि हमारी रसोई और हमारी थाली से ही होती है। सही खान पान, स्वस्थ तन और सुंदर शरीर, इनका बहुत गहरा संबंध है। और यकीन मानिए जब इनका संतुलन होता है ना तो आपकी जो जिंदगी है ना उसका सफ़र बड़ा ही सुहाना लगता है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से, और ख़ास अंदाज में सुना रहे थे आपको ये गीत किशोर कुमार जी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ शादी ब्याह की, कि भाई देखिए शादी का सीज़न जो है धीरे धीरे आएगा, तो शादी के लिए कई बार जो है वो रिश्ता आता है और परिवार को भी पसंद आ जाता है, लेकिन क्या सिर्फ रिश्ता पसंद आ जाना ही काफ़ी है? जिस व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है उससे कुछ सवाल पूछने भी तो ज़रूरी होते हैं। तो भाई सवाल ऐसे हों कि सामने वाले से जब आप पूछें तो आपकी उसके साथ जो जीवन की यात्रा तय करनी है उससे संबंधित सवाल हों। तो आप शादी के बाद कहाँ और किस तरह रहना चाहते हैं, नौकरी या करियर को लेकर आपकी क्या सोच है, घर के काम और जिम्मेदारियां आप कैसे बांटेंगे, पैसों को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और बच्चों को लेकर आपकी क्या राय है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि भाई मतभेद होने पर आप बातचीत कैसे करते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि बातचीत से समझिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में परिवार रिश्ता ढूंढ सकता है लेकिन एक दूसरे को समझने और जीवन साथ बिताने का जो फैसला होता है वो आखिरकार दो लोगों का ही होता है। इसलिए भी शादी से पहले सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो झिझकिए बिल्कुल भी नहीं, सही सवाल ही रिश्ते की शुरुआत को मजबूती देता है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि भाई आजकल की जो दुनिया है वहाँ पर जो रिश्ते हैं वो मैट्रिमोनियल साइट से कई बार जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सही सही जानकारी आपको हो। तो जो बच्चे हैं यानी भावी जो कपल होने वाले हैं, दंपति होने वाले हैं, उनके जो माता पिता हैं उनको भी आपस में मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानना समझना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही जो लड़का और लड़की हैं भाई उनके लिए भी यही नियम है, उनको भी भले ही वो किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं लेकिन उनको आपस में मिलकर और विभिन्न विषयों पर बातचीत करनी चाहिए कि जीवन को किस तरह से बिताना है, और अच्छी तरह से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इन सब कामों के लिए भाई कभी चाय पर भी मिल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: करेंगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा जो गीत है सुन रहे थे सौतन फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने। और देखिए, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने ईमेल किया है। नवीन भाटिया जी ने कार्यक्रम वो सुन रहे हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की तारीफ भी की है। साथ ही सुदर्शन मुखी जी जो हैं, उनका भी ईमेल आया है तो, और उन्होंने पूरे घर आंगन परिवार को विश्व शांति दिवस की हार्दिक बधाई भी दी है। और उन्होंने लिखा है कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आपने जो विचार है वो दिया है। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सुदर्शन मुखी जी ने एक वाक्य, एक जो कविता जैसी जो पंक्ति है वो हमें भेजी है, तो मेरे मन में भी कुछ भाव आ रहे हैं। तो मैं बस कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ कि वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। कभी बेटी बनकर हंसती है, कभी माँ की आवाज़ है। उसके सपनों का भी आसमान है, उसकी अपनी भी कोई उड़ान है। वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, उसकी अपनी भी कुछ तो पहचान है, उसकी अपनी कुछ तो पहचान है।

दोस्तों ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं सोनाली और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम खून भरी मांग। और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के घर आंगन कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी

किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म फागुन का ये गीत। और देखिए, दिल तो आप हमारा ले जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आपकी मेल समय आनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब हम क्या ही बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि उन सभी मेलों को हम इसका शुमार करेंगे, शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं, हल्का सा आपको पीछे लेके चलती हूँ उस दौर में जब 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी थी। शुरुआत होती है इस फिल्म की बीजन आर बनानी। जी हाँ, ये है इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम। जो हीरो है वो एक जमींदार परिवार का बेटा है और जो हीरोइन है वो एक नर्तकी है। दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन परिवार और सामाजिक फासले इस रिश्ते के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। मोहब्बत अधूरी रह जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अधूरी प्रेम कहानी पुनर्जन्म के साथ फिर लौटती है, जैसे कोई रिश्ता वक्त से कह रहा हो कि अभी उसकी कहानी बाकी है। और अब उसी प्रेम की बेचैनी को आवाज देती एक नगमा है यहाँ पर, एक आवाज है आशा भोसले की। और ये जो नगमा है, इसे आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस गाने का या इस फिल्म का आपके जीवन में कभी कोई असर पड़ा है। तो आपकी ईमेल्स का हम बकायदा यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गीत।

0: इतनी खूबसूरत अगर फरियाद कोई करे, इस तरह से कोई बुलाए, तो खैर कोई कहाँ रह सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन की, जिसमें मधुबाला के साथ है भारत भूषण और हमारे साथ हैं आप सभी। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे दोस्तों की, हमारे श्रोताओं की। तो हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन है। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रकाश वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से, और इनके साथ हैं प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। फिर हमारे साथ हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, और इनके साथ हैं इनकी सभी दोस्त। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, आपके परिवार के सदस्यों का भी स्वागत है। फिर ये हैं धर्मेंद्र छिपा जी, और ये लिख रहे हैं आज की फिल्म है फागुन, आप चर्चा कर रहे हैं अपनी दौर की बेहतरीन फिल्म फागुन की। जी हाँ, निर्माता निर्देशक विभूति मित्रा और इस फिल्म के अभिनय, जैसे हमने आपको बताया कि मधुबाला और भारत भूषण के साथ हैं जीवन महमूद, कुकु मुराद, और गीतकार है जी हाँ कमर जलालाबादी, और ओपी नैयर का म्यूजिक है। देखिए, अब ना कुछ ऐसी मेल्स होते हैं हमारे, कुछ इतनी ज़्यादा जानकार हमारे श्रोता होते हैं कि हमारा सारा काम वो और आसान कर देते हैं जब हम आपको आगे बताने वाले होते हैं। वो सारी बातें हमारी इस मेल के जरिए वो आपको पहले ही बता देते हैं। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र छिपा जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार भी हैं इनके साथ। फिर हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, शुक्रिया। सुदर्शन मुखी जी जुड़े हैं अनिता मुखी, सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से। इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम सुन के, अच्छा लगा, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं ये गीत।
1: जा पुकार

0: जा पुकार।
1: आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अब देखिए इस फिल्म में कुल जमा 7 से 8 गाने हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपको हम सारे गाने सुनाएं। अब दूसरे गाने के पहले आपको जरूर बता दूं इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। जैसे ना फिल्म की खास बात शायद आप भी जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको चौंका दे कि मधुबाला ने इस फिल्म में 3 भूमिकाएं निभाई जबकि भारत भूषण ने 2 भूमिकाएं। यानी एक ही फिल्म में दोनों कलाकारों को अपने किरदारों के अलग अलग रूप और भाव जीने का मौका मिला। मधुबाला के लिए उनके अभिनय के अलग रंग दिखाने का एक बहुत बेहतरीन अवसर था। तो अब हम आपको इस फिल्म में मधुबाला पे फिल्माया एक बहुत ही चंचल सा गाना जरूर यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। तो ये सुनते हैं फिल्म फागुन का ये एक और गीत।

तो प्यारी सी चंचल सी चल बड़ी खूबसूरत दीवा मधुबाला आपकी नज़र के सामने आ गई ना। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म फागुन की और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। देखिए इस फिल्म की हम बात करते हैं तो इसका जो संगीत है वो ओपी नैयर का है और इसका संगीत है उसमें एक अलग ही लय है और एक बहुत अलग सी चंचलता भी है। और फागुन में प्रेम कभी बहुत मासूम है तो कभी शरारती है और कभी रूठने मनाने वाला भी है। और प्रेम में रूठना भी हो तो अपने आप में वो एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है ना। तो बस शर्त इतनी होती है कि अगर आप प्यार में रूठ रहे हो तो कोई आपको मनाने वाला भी हो। तो आप समझ गए होंगे मैं अब फागुन के कौन से गीत की बात कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं फागुन फिल्म का एक और गीत।

ढूंढनी मनानी और प्यार में दर्द का ये जो नगमा था, ये फिल्म फागुन का है जो हमारी आज की फिल्म है। और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्तों की, तो हमारे साथ जुड़े हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर है हमारे साथ वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और है हमारे साथ हैं जो जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, तिशानी और निमित आहूजा। फिर हमारे साथ अजीत भावसार जी हैं, इन्होंने खूब सारी जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार के साथ हैं प्रेमिला भावसार, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और क्षिप्रा गुप्ता। फिर हमारे साथ कौन है जी, ये हैं हर गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शुक्रिया बने रहने के लिए। पूनम गंगनेजा जी, आपका नाम ले चुकी हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर हमारे साथ कौन है ये, जी हाँ ये है बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल है ये, इनके साथ है रेखा देवी, अजय, रिमी, बॉबी, अनविका, तनुश्री, बीके सिन्हा, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। और ये है बसंत लाल सौ, हीरा मोती पन्नालाल सौ, इनका भी मेल है, शुक्रिया। फिर है हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। और देखिए हम बात करते हैं

आप लोगों की मेल्स और भी लूंगी, इसके पहले एक गाना और आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ये जो गाना है इसके बारे में आपसे बात कर रही है, इस फिल्म का संगीत जो है वो ओपन अय्यर और गीतकार है कमर जलालाबादी। इस जोड़ी ने फागुन के लिए कई लोकप्रिय गीत दिए। इसकी धुनों में लोक और शास्त्रीय रंगों की छाप भी सुनाई देती है, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शास्त्रीय रंगों की जो छाप है ना, उसमें कई जो गीत हैं उनमें जिस राग का प्रयोग हुआ है वो है राग पीलू। और यह संगीत जो है फिल्म की कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे यादगार भी बनाता है। तो मतलब संगीत जो है वो इसकी कहानी से गुथा हुआ है। और तो बस चलिए एक और गाना आपको सुनाते हैं। ये आवाज़ इसमें फिर मुख्य स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, जो इस फिल्म के संगीत में भी इन्हीं दोनों की आवाज़ें की थी।

साथियों देखिए घड़ी बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही है कि आपको आगे और इस फिल्म के गाने दो और सुना पाऊँ, लेकिन आपको बता दूँ हमारे साथ जो दोस्त हैं वो हैं ये हैं डीबी राणा जी, ये हैं हमारे साथ नेहरू विहार दिल्ली से, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तायरे, ये हमारे संग नरलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। फिर है हमारे साथ संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ जुड़े हैं जगर राम साहू, माफ कीजिएगा, और ये हैं ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। आपकी मेल हम ले चुके हैं पहले भी, आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको इस फिल्म के बाकी जो दो गाने हैं उनकी हल्की हल्की झलक भी सुनवा के जरूर जाएंगे।

दोस्तों, ये थी 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन, और आज हमने सफर ये तय किया इसी फिल्म का, हमारी आज की ये फिल्म थी। और हम किसी और दिन किसी और मौसम का कोई और रंग लेकर आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मता दिता।
1: भारतीय जनता पार्टी नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके समाप्त कर देगी, यह हमारा संकल्प। हम नशे की जड़ पर चोट करेंगे, हम उस चैनल को ध्वस्त करेंगे। ड्रग माफिया कौन है, और वो भी सावधान हो जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। हम नशे के कारोबारियों को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, ये हमारा संकल्प है। इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं पंजाब की जनता से आज ये विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ, जुड़िए हमारी यात्रा के साथ, समर्थन दीजिए यात्रा को, मिलके हम साथ चलेंगे।
0: श्री चौहान नशे नाल बर्बाद हुए परिवारां नूं भी मिले। यह यात्रा पंजाब नूं दरपेश मौजूदा तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदी नशाखोरी, विगड़दी कानून व्यवस्था अते शासन दे हर पद्धर ते भ्रष्टाचार ते केंद्र है। उधर नशा मुक्त पंजाब यात्रा दा कल अमलो पहुंचण ते इलाका निवासियां ने स्वागत कीता। इस यात्रा की अगवाई कर रहे पार्टी के सूबा जनरल सकत्र परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि यह यात्रा कोई राजनीतिक लाभ लैण लई नहीं, सगों समूहक रूप विच इकट्ठे होकर पंजाब अंदर नशियां नूं ठल पाउण दी है। यह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सेंट है @AIR RNU जलंधर। बीजेपी ने अज साबक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हालिया टिप्पणी नूं लैके कांग्रेस की सख्त आलोचना की है। पार्टी हैडक्वार्टर विखे एक प्रेस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं बीजेपी के बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि श्री अंसारी ने 2019 विच लिखी एक किताब का हवाला दिता सी, जिस विच कहा गया सी कि साबक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू हिंदू राष्ट्रवाद नूं कम्यूनिज्म नालों वड्डा खतरा मानते सन। श्री त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस अज खब्बे पक्षी विचारधारा वल वध गई है, कम्यूनिस्ट विचारधारा तों डूंघी तरह प्रभावित है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केरला दे 18वें अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजी ते शॉर्ट फिल्म उत्सव विच किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग लई मंजूरी देने तों इनकार नहीं किया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के इल्जामां दा जवाब दिंदिआं मंत्रालय ने कहा कि 6 फिल्मां लई वाधू जानकारी मंगी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मंत्रालय ने कहा कि कुछ फिल्मां नूं उन्हां दे विषय कारण समीक्षा लई संबंधित अधिकारी कोल भेजा गया है। श्री थरूर ने इल्जाम लाया सी कि केरला दीआं 31 फिल्मां नूं फेस्टिवल विच दिखाउण दी आग्या नहीं दित्ती गई। पाकिस्तानी हवाई फौज ने अज तड़के अफगानिस्तान के कुनार ते पख्तिका सूबियां विच हवाई हमले कीते ने। इन्हां हमलियां विच 3 लोग मारे गए ते कई होर जख्मी हो गए। अफगान मीडिया अनुसार यह हमला कुनार सूबे के नुरगल जिले विच तड़के 3 बजे के करीब होया। पख्तिका के बरमल जिले विच भी 2 हवाई हमले किए गए। कुनार अते पख्तिका दोवे सूबे पाकिस्तान नाल लगते ने। यह घटना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान विच एक पुलिस ठिकाने ते हुए हमले तो 2 दिन बाद वापरी है, जिस नाल दोहां गुआंढी देशां विचकार तनाव वधन दा डर पैदा हो गया है। आधुनिक जंगी समर्थवां नाल लैस स्वदेशी जहाज INS सहयादरी अते INS कोरा फिलीपींस की सूबे खाड़ी पहुंच गए ने। दोहां जहाजां नूं जल सेना की संचालन तैनाती के हिस्से वजों भेजा गया है। यह समुद्री जंगी जहाज फिलीपींस विच आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग अते संयुक्त सहयोगी गतिविधियों विच हिस्सा लैणगे। इस समागम विच 10 आसियान देशां अते 8 भाईवाल देशां दीआं समुद्री फौजां हिस्सा लै रहीआं ने। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर विच आवारा पशुआं लई आसरा घर बनाउण दे निर्देशां विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय शाहरा अथार्टी NHAI दी पटीशन ते सुनवाई लई एक विशेष बेंच दा गठन करन लई सहमति दित्ती है। शाहरा अथार्टी वलों पेश होए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस विक्रम नाथ दी अगवाई वाले विशेष बेंच ने अथार्टी नूं आसरा घर बनाउण दा निर्देश दित्ता सी, जदों कि यह जिम्मेवारी स्थानक संस्थावां ते प्रशासन दी है। जापान एशियाई खेडां विच भारत ने मर्दां दे 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले विच 2 तमगे जीते ने। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंकां नाल चांदी दा अते रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंकां नाल कांसी दा तमगा जीतिया है। इस तों पहलां भारत ने मर्दां दे 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले विच भी चांदी दा तमगा जीतिया सी। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने अते रुद्रांश पाटिल दूजे स्थान ते रहे। मिक्सड मार्शल आर्ट्स विच सुचिका तारियाल नूं औरतां दे 60 किलोग्राम रवायती मुकाबले दे सैमीफाइनल विच सिंगापुर दी हुई हूंटो तों 0-2 नाल हार के कांसी दे तमगे नाल सबर करना पिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेडां विच तमगा जितने वाले सारे खिडारियों नूं वधाई दित्ती है। नौजवान मामले ते खेडां बारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सुचिका तारियाल नूं एशियाई खेडां विच मिक्सड मार्शल आर्ट्स दे 60 किलोग्राम वर्ग विच कांसी दा तमगा जितने ते वधाई दित्ती है। अंत विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर सुन लो। सेहत अते परिवार भलाई राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाइयां दे बुरे ते प्रतिकूल प्रभावां दी निगरानी मुलांकण ते रोकथाम विच भारत दा सफर आत्म निर्भरता दी एक शानदार मिसाल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 21वें सैशन दी उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान भारतीय वफद दी अगवाई करनगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज बठिंडा दे तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा दे चौथे गेड़ दी शुरुआत कीती। एशियाई खेडां विच भारत ने मर्दां दे 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले विच 2 तमगे जित्ते ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।

0: ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत की इससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। भारत अब तक 6 तमगे हासिल कर चुका है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं के महफूज होने और अद्वियात की निगरानी के शोबे में भारत का सफर गुज़श्ता बरसों में खुद इन्हेसारी की एक काबिल कदर मिसाल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7वें नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही। मोहतरमा पटेल ने कहा कि सरदस्त मुल्क में दवाओं के नामवाफिक असरात की निगरानी करने वाले 1100 से ज्यादा मरकज काम कर रहे हैं और सरकार ये तादाद प्राइमरी हेल्थ सहूलत की सतह तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुल्क अब आलमी सेहत तंजीम के मरीजों से मुतालिक सेफ्टी डेटाबेस के लिए फार्माकोविजिलेंस डेटा फराहम करता है। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने इस बात को उजागर किया कि WHO को ये डेटा फराहम करने के एतबार से भारत अब 8वें मकाम पर आ गया है, जबकि 2014 में 123वीं पोजीशन पर था। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 25 ममालिक भारत की फार्माकोपिया यानी किताबुल अदविया को तस्लीम और कबूल करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो अपने तौर पर किसी भी तरह की दवा लेने से गुरेज करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा खाएं और किसी भी दवा के अचानक या गैर मुतवक्के साइड इफेक्ट्स को भी नजरअंदाज ना करें। आज बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की हालिया रायजनी पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जनाब अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिरका वारियत से बड़ा खतरा हिंदू कौम परस्ती को मानते थे। जनाब त्रिवेदी ने मुबीना तौर पर कहा कि आज कांग्रेस बाएं बाजू की जानिब झुक गई है।

0: पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। यह अवार्ड हर साल इत्तलात व नशरियात की वजारत के तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड्स हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। इशिका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बठिंडा में तलवंडी साबू में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे मरहले का आगाज करेंगे। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी उनके हमराह होंगे। इस यात्रा में उन 3 अहम चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिनका इस वक्त पंजाब को सामना है। ये हैं मनुष्यात की बढ़ती लानत, अमन कानून की खराब होती सूरत हाल और हुक्मरानी की सतह पर बदउनवानी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इस नजरिए को राम मंदिर और तहजीबी बेदारी के अहिया के जरिए किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: साल 2014 में मरकज में सरकार बदलने और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तश्कील के बाद भगवान राम के शहर अयोध्या की कायापलट ने रफ्तार पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के राह हमवार हुई और दीप उत्सव तकरीबा जैसे इकदाम से अयोध्या की खोई हुई सकाफती और मजहबी शान व शौकत बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान राम के इस शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो उन्हें अपने अंदर भगवान राम की अकदार को जगाना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: आज अयोध्या महज आस्था का एक मरकज नहीं बल्कि मजहबी सियाहती कनेक्टिविटी और रोजगार के मौकों के शोबे में नए पैमाने तय कर रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितंबर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अहलकारों ने कहा है कि 1900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अंडमान निकोबार जजायर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लो ने चांदी का जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। हिमांशु ढिल्लो पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल पर मुश्तमिल भारतीय टीम दूसरे मकाम पर रही है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने अब तक 6 तमगे जीते हैं। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीतने पर सुचिका

याल को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रुद्रांश पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों को भी मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फार्मूलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की राय जनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लियामानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand Free Trade Agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance, releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
4: टुडे वी हैव अराउंड 1150
5: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की

0: सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: विच विल मेक अ बिग चेंज इन टाइम्स टू कम।
2: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
0: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
2: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
0: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकोड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
2: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

0: की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता।

0: वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, 23 सितंबर 1943 को मुंबई में एक ऐसी कलाकार ने जन्म लिया जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी मुस्कान, एक्टिंग और मोहक अदा से रोशन किया।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहक कलाकारा तनुजा समर्थ की, जिन्हें दुनिया ने तनुजा के नाम से जाना है। वो जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपनी अनूठी छाप छोड़ी, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आंखों में सपने और दिल में हिम्मत। आज हम इनके करियर और कलरफुल लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म इम्तिहान का ये शानदार सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। श्रोताओं, तनुजा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ पेशा नहीं, लाइफ थी। इनके पिता कुमार सेन समर्थ मराठी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर थे, और माँ शोभना समर्थ हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस। बड़ी बहन नूतन जो पावरफुल एक्ट्रेस थी, तनुजा की इंस्पिरेशन भी थी। छोटी बहन चतुरा और रेशमा, भाई जयदीप, दादी रत्ना बाई और चचेरी बहन नलनी जयवंत, ये सभी सिनेमा से जुड़े थी। एक तरह से तनुजा का परिवार सिनेमा का मंदिर था। स्कूलिंग के दौरान ही तनुजा के ऊपर सिनेमा का जादू चल गया था। महज 7 साल की उम्र में 1950 में इन्होंने हमारी बेटी में बेबी तनुजा के रूप में डेब्यू किया। माँ शोभना की बनाई फिल्म में नूतन लीड रोल में थी। कैमरा के सामने तनुजा का मासूम चेहरा चमक उठा। इसके ठीक 10 साल बाद तनुजा ने 1960 में माँ शोभना की ही फिल्म छबीली में सपोर्टिंग रोल निभाया, नूतन की छोटी बहन का किरदार। इनकी चंचल मुस्कान और सहज अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद तो तनुजा का करियर चल निकला। अब आगे इनकी फिल्मों से जुड़ी और भी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म इजाजत का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, कलाकार तनुजा की, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, फिल्म हमारी याद आएगी से लीड एक्ट्रेस के तौर पर तनुजा जी की शुरुआत हुई। 60 के दशक में तनुजा जी के लिए सुनहरा समय साबित हुआ। मेम दीदी, चांद और सूरज, आज और कल, भूत बंगला, बहारे फिर भी आएंगी जैसी फिल्में इनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी। फिर देवानंद के साथ इनकी फिल्म ज्वेल थीफ ने इनको स्टारडम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तनुजा का चुलबुला अंदाज, रहस्यमयी मुस्कान और ने इन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया। फिल्म फेयर ने इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया। इसके बाद इन्होंने नई रोशनी, जीने की राह, पैसा या प्यार, हाथी मेरा साथी, मेरे जीवन साथी, दो चोर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। तनुजा जी हर किरदार में जान डाल देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, हास्य किरदार हो या एक भावुक पत्नी का। दोस्तों, इनका जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाली फिल्मों में भी इन्होंने तहलका मचा रखा था। हिंदी और बंगाली सिनेमा के बीच का ये पुल इनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक था। आगे इनकी पर्सनल लाइफ और कमबैक के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सुनिए इनकी फिल्म जीने की राह का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। दोस्तों, तनुजा जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका करियर जब पीक पर था तभी इन्होंने 1973 में फिल्म मेकर शोमू मुखर्जी से शादी की। शादी के बाद तनुजा ने लीड भूमिका कम की लेकिन सपोर्टिंग रोल्स में चमकी। इस दौरान इन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली फिल्मों में लगातार काम किया। इतना ही नहीं, इन्होंने खानदान, जुनून और आरंभ जैसी टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इनकी दो बेटियां हैं, काजोल और तनीषा। बेटी काजोल बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और तनीषा भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। काजोल की शादी अजय देवगन से हुई है। इसके अलावा रानी मुखर्जी, मोनीश बहल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी इनके रिश्ते में आते हैं। अब आगे इनके अवार्ड्स की भी बात करेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म मेरे जीवन साथी का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, तनुजा जी ने 2000 के दशक में साथिया, खाकी दीवार और सन ऑफ सरदार फिल्म में सपोर्टिंग रोल किए, जिन्हें फैंस का प्यार मिला। 2008 में जी टीवी के रॉक एंड रोल फैमिली सीरीज में तनुजा बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जज की भूमिका में नजर आई। वहीं 2013 में एक मराठी फिल्म के लिए इन्होंने एक विधवा का रोल भी निभाया, जिसके लिए इन्होंने अपना सिर तक मुड़वा लिया। ये इनका सिनेमा के प्रति डेडिकेशन दिखाता है। अब अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें बेनजीर फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला था। पैसा या प्यार फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें ढेरों अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर हम सुनेंगे अगला गीत, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अपने कुछ श्रोताओं के मेल जो हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, और ये हैं बिहारी कॉलोनी शाद्रा, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु और रिदान, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत। और आगे बढ़ते हैं, ये है कुमार हेंडा सहारनपुर से, सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से एस नाहवाहकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण, सोपान, राजकुमार, आशीष, और ये है शिव गोपा, प्रेम, कपिल, शिवांग, संगीता, लिपि, पश्चिम सिंहभूमि झारखंड से, और ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुंडूर, गुरलाल और अविराज सिंह, और ये हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, और ये हैं अमर रमेश कुमार खत्री, जाफर सादिक सैक, शंकर गुल शर्मा और टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, ये हैं, और ये आगे हैं छत्तीसगढ़ भंवरपुर से चंपा, राधेश्याम और जगदीश जी, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी, और ये है गांव नथाना से हरिजिंदर छिंदा, जयवीर, जस्सी, सीता और गीता पंजाब से, और ये है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती जी हैं, और सदा ये हैं आज़ाद नगर।

श्रोताओं, आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव में। हमारे कुछ श्रोता और जुड़ चुके हैं, उनके नाम भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भारत, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाले चौक जालंधर से, और इनके साथ हैं ये जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ परियारी से, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा जी का है। और ये है, आगे हम चलते हैं, हमारे कुछ श्रोता बहुत बार मेल कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ढूंडी और प्रमोद कुमार ढूंडी, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद और पूना राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे दूसरे श्रोताओं का मेल, और ये हैं हमारे साथ पीटीआई से, ये पीटीआई से नहीं है, ये हैं हमारे श्रोता अजीत भावसार, ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तनुजा जी आज 83 साल की उम्र में भी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और सिनेमा से इनका रिश्ता अटूट है। अब भी ये बहुत से इवेंट्स का हिस्सा बन रही हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही इनकी मुस्कान, इनका जज्बा और इनकी विरासत सदा चमकती रहें। ये एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक युग की पहचान है। तो श्रोताओं, जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं इम्तिहान फिल्म के इस गीत के साथ। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर से वापस आएंगे मैटिनी मेलोडीज़ में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। श्रोताओं, मैटिनी मेलोडीज में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आप सबको जैसे कि पता है कि मैटिनी मेलोडीज में हम पुराने गीतों की बातें करती हैं, तो दोस्तों आज भी हम बहुत ढेर सारे पुराने गीत आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिस गीत में एहसास है कि जब कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान अचानक सामने आ जाता है जिसे हमारी पहली मुलाकात होती है, लेकिन दिल को लगता है जैसे इसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ना कोई पुराना रिश्ता ना कोई पहचान, फिर भी उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसका अंदाज़ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद यही एहसास जब कोई अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। और इसी खूबसूरत एहसास को बड़ी ही सादगी और शरारत के साथ आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। और तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की इस दिलकश आवाज में फिल्म हम सब उस्ताद हैं का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, बट दोस्तों आप हमें जाने पहचाने नहीं लगते, क्योंकि हम और हमारा और आपका जो रिश्ता है बहुत पुराना है और बहुत ही गहरा है। कहते हैं ना, किसी की नज़र में अपने लिए प्यार और अपनापन महसूस होना शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है। कभी कभी सामने वाला कुछ कहता नहीं, बस उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं, और उन्हीं नज़रों में जब हम अपने होने की, अपने प्यार की मंजूरी मिल जाए तो दिल बस यही कह उठता है, अब और क्या चाहिए, मिल गई मंजिल मुझे। इस खूबसूरत एहसास को शब्द दिए हैं राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत से सजाया है मदन मोहन ने, और अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म है अनपढ़, जो 1962 में बनी थी, और गीत है आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैथिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी दिल चाहता है कि इस शोर शराबे से, इस भागती हुई दुनिया से बहुत दूर निकल जाए, जहाँ ना कोई शिकायत हो ना कोई फिक्र, बस खुला आसमान हो, थोड़ी सी धूप हो, ठंडी हवा हो और साथ में कोई अपना हो। एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाए, जहाँ सपनों को खुलकर सांस लेने की जगह मिले। इसी खूबसूरत ख्वाब को आवाज दी है किशोर कुमार ने। फिल्म है दूर गगन की छांव में। इस गीत को लिखा है किशोर कुमार ने ही और संगीत दिया है किशोर कुमार ने ही। तो आइए कुछ पल के लिए उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ आसमान भी अपना है और साथ ही भी अपना। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, नीला आसमान, हल्की सी धूप और उस पर अगर किसी की मीठी सी आवाज़ कानों पे पड़ जाए तो मौसम अपने आप में सुहाना लगने लगता है। 1950 के दशक

गीतों की यही तो खासियत थी, बिना बहुत कुछ कहे कुछ ही शब्दों में पूरा माहौल बना देना। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत है ओपी नैयर का और अपनी बेहद दिलकश आवाज़ दी है गीता दत्त ने। तो आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। कभी कभी दिल में इतनी बातें होती हैं कि उन्हें कहने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते, बस चाहते हैं कि कोई

खामोशी से हमारे दिल की आवाज़ सुन ले, और जब वही अनकही दास्तां किसी गीत का रूप ले ले तो लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात ही कह दी हो। ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली दास्तां है फिल्म जाल का ये खूबसूरत सा गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब, संगीतकार SD बर्मन जी, और अपनी गहरी सुकून भरी आवाज़ में इसे गाया है हेमंत कुमार ने। तो आइए कुछ पल ठहरते हैं और सुनते हैं दिल की वही अनकही दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। तो दोस्तों सुनते रहिए गीत, गुनगुनाते रहिए संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

जी हाँ दोस्तों, सुन जा दिल की दास्तां, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। हवा में जैसे कोई मिठास घुल जाती है और चारों तरफ की रौनक देखकर लगता है आज तो बस इस पल को ही जी लिया जाए। ऐसे ही कुछ रंग हैं इस खूबसूरत नगमे में, जहाँ बहार है, समा है और है एक प्यारा सा रोमांटिक सा एहसास। फिल्म है दिल्ली का ठग, जो 1958 में बनी थी। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है रवि ने और अपनी चुलबुली और दिलकश आवाज़ से सजाया है आशा भोसले ने। तो आइए इस सुहाने मौसम और रंगीन समा के साथ सुनते हैं ये बहार ये समा।

श्रोताओं, आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी से। दोस्तों, हर दिन की तरह आज का दिन भी अपनी कुछ खूबसूरत यादें छोड़कर अब विदा लेने को है। आपके साथ ये सफ़र का पता ही नहीं चलता और फिर एक पल आता है जब सूरज ढलने लगता है, शाम की रोशनी धीमी पड़ती है और दिल कहता है काश ये खूबसूरत पल थोड़ी देर और ठहर जाए। इसी एहसास को गीतों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। फिल्म है हम जोड़ी। तो आज की इस खूबसूरत संगीत यात्रा को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं इस सुहाने एहसास के साथ इस गीत को। तो श्रोताओं, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत और मैं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और गीत, किसी और कहानी और कुछ नई यादों के साथ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

0: उर्दू मजलिस के तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम कहकशां। सामईन, तारीखी शहर किसी भी मुल्क कौम के शानदार माजी, सकाफत और तहजीब के आईनादार होते हैं। उन मकामात की सैर न सिर्फ इंसान को तफरीह का सामान फराहम करती है बल्कि इल्म व हिकमत के नए दरवाजे भी खोलती है। उन जगहों को अगरचे हम जाकर देख नहीं सकते लेकिन पढ़कर या सुनकर उनके बारे में मालूमात तो हासिल कर ही सकते हैं। आइए आपको हम आज हिंदुस्तान के एक शहर पुरी के बारे में सुनवाते हैं। सिलसिला है चमन दर चमन। आपको ये मालूमात फराहम कर रहे हैं डॉक्टर अतीक अनवर सिद्दीकी।
1: हिंदुस्तान के शिमाल मशरकी किनारे पर रियासत ओडिशा का एक तारीखी, मजहबी और तहजीबी रवायात पर मबनी शहर पुरी है। ये शहर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की जानिब वाक़े है, जहां बजरिए रेल और सड़क पहुंचा जा सकता है। पुरी कई एतबार से काबिले जिक्र और लायक तवज्जो है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी मजहबी अहमियत है, क्योंकि ये हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक एक ऐसी ज़ियारतगाह है जिसको जगन्नाथ धाम की हैसियत से जाना जाता है। यहाँ पूरी शहर के मरकज़ में श्री जगन्नाथ मंदिर आसार कदीमा और मजहबी तारीख के लिहाज से बहुत पुराने मंदिरों में से एक शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्णा के बहुत से रूप हैं, उनमें से एक जगन्नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनको लकड़ी की शक्ल में भी देखा जाता है। एक हवाले के मुताबिक पहली सदी ईस्वी में उड़ीसा की सरजमीन पर इसी पुरी में श्री कृष्णा को बालभद्रा या बलराम की शक्ल में एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े की शक्ल में पाया गया था, और ऋग्वेद के एक हवाले के मुताबिक इन्हीं श्री कृष्णा को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। लकड़ी का ये छोटा सा लट्ठा जो समंदर में बहता हुआ बहरहिंद में पुरी के पास देखा गया और पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि बलराम हैं, जिनको जगन्नाथ और पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इस तरह उड़ीसा में पुरी को विष्णु क्षेत्र, कोणार्क को सूर्य क्षेत्र और भुवनेश्वर को हरि क्षेत्र के नाम से पहचाने जाने लगा। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर की तारीख ये है कि इसको कलिंगा राजाओं ने लगभग 10 साल की मुद्दत में 1148 ईस्वी में तामीर करवाया था। यह मंदिर रकबे के लिहाज से तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। फिर राजा अनंग भीमदेव ने सन 1174 से 1198 तक इसको मजीद वसी किया और मंदिर के वस्त में गर्भगृह में श्री जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का एक रूप हैं, उनको लकड़ी की मूर्ति को नसब कर दिया। तब से मुतवातिर पुरी के इस मंदिर में लाखों जायरीन आते रहते हैं। पुरी की दूसरी खसूसियत उसका महल वकू है, क्योंकि ये शहर बहर हिंद यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे वाकई है और समंदरी सतह से बिल्कुल मिला हुआ है। पुरी शहर को 1828 में एक ज़िले का मर्तबा दिया गया। मर्दमशुमारी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1901 में इसकी कुल आबादी 19,334 थी। उसका कुल रकबा 15 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पूरे ज़िले का रकबा 300 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी शहर की अहमियत दो एतबार से काबिल जिक्र है, इसी वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो हिस्सा जो मंदिर और उसके जायरीन से ताल्लुक़ रखता है, जो शहर के बिल्कुल बीच में है और पुराना शहर और घनी आबादी वाला शहर कहलाता है। दूसरा हिस्सा सयाहों यानी टूरिस्ट और आम लोगों की तफरीह का मरकज है, जो बहर हिंद के किनारे आबाद है। इस हिस्से में जदीद अंदाज के होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, रास्ते, समंदर के किनारे छोटे छोटे हट बने हुए हैं, जहां सयाह जाते हैं और कुदरत की करिश्मा साजी का लुत्फ उठाते हैं। पुरी के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पहुंचकर एक सयाह को इस बात का पूरा इख्तियार होता है कि वो मंदिर के करीब किसी होटल में क़याम करना चाहता है, जहां से हर वक्त वो जगन्नाथ मंदिर का दीदार कर सके, या समंदर के किनारे क़याम करके समंदर की दिलफरेब और ठंडी हवाओं का मज़ा ले, क्योंकि लगभग 7 किलोमीटर लंबी समंदरी कतार सयाहों के लिए दिलचस्पी की जगह है। समंदर के किनारे लगभग हर मौसम में लोग बच्चे, बूढ़े और औरतें पानी में नहाते हुए नजर आते हैं। नारियल पानी पीने का मजा भी यहाँ खूब आता है। घोड़े, ऊंट और बग्घी की सवारी भी लोग करते हैं और ठाठे मारता हुआ समंदर का पानी तेजी से दूर किनारे तक चला आता है और फिर वापस चला आता है। कभी कभी ये समंदर रफ भी हो जाता है और समंदर लहरें इस कदर तेजी के साथ आती हैं, लगता है सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगी। कुछ लोगों को इन सरकश समंदरी लहरों में ही खेलने में मज़ा आता है। वो लोग दूर दूर तक पानी में बहते चले जाते हैं और फिर तैरकर किनारे वापस आ जाते हैं। समंदर के किनारे सूरज निकलने और डूबने का मंजर नहायत दिलकश होता है, जिसको देखने ज़्यादातर सयाह समंदर के किनारे किसी होटल में क़याम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। समंदरी सतह पर वाक़ होने की वजह से यहाँ मौसम मोतदिल रहता है। मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री और कम से कम 20 डिग्री हो जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहता है। अलबत्ता बारिश यहाँ काफ़ी मकदार में होती है और 135 सेंटीमीटर तक बारिश पहुँच जाती है। पूरी शहर जिस कदर मजहबी एतबार से अहम है, उसी कदर सयाहों के लिए अपने महल वकूअ के एतबार से भी अहम है। शहर की जबान तो उड़िया है, लेकिन यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, तेलुगु भी बोली जाती है, क्योंकि उड़ीसा के एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तीसरी तरफ झारखंड की रियासतें मौजूद हैं, जहाँ के लोग पूरी आया करते हैं। यहाँ घूमने का अच्छा मौसम तो अक्टूबर से जनवरी तक है, लेकिन जगन्नाथ यात्रा या कार फेस्टिवल देखने के लिए जून और जुलाई के महीनों में भी पूरी जाया जा सकता है। पूरी शहर बराह रास्त हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से बजरिए रेल और रोड जुड़ा हुआ है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से यहाँ बराह रास्त रेलगाड़ियाँ आती और जाती हैं। तहजीबी और सकाफती नुक्ते नज़र से पूरी शहर रवायात का हामिल रहा है। रियासत उड़ीसा के फ़नून लतीफ़ा, दस्तकारी, रेशम के कपड़े और वहाँ का ओडिसी रक्स तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि ओडिसी डांस की इब्तिदा पुरी ही में हुई थी, जो टेंपल डांस की शक्ल में राइज हुआ, जो देवदासियों के जरिए जय देव गीता गोविंदा के सामने पेश किया जाता था, फ़नून लतीफ़ा में शामिल हो गया और आर्ट के नुक्ते नज़र से ओडिसी डांस को पेश किया जाने लगा और 12वीं सदी से लगातार ये रक्स तरक्की करते करते अब रक्स की अहम कड़ी शुमार किया जाता है। पुरी में खाने पीने की चीज़ों को परोसने का तरीका भी निराला है और आज भी असाधारण अंदाज में केले के हरे हरे साफ पत्तों में वहाँ का भोग मशहूर है, जिसमें चावल, दाल, सूखी सब्जी और मछली पेश की जाती हैं। सेहत के एतबार से भी लोग उनको शौक से खाते हैं। वहाँ का आम पहनावा औरतों के लिए साड़ी और मर्दों के लिए धोती है, जो वही दस्तकारी के जरिए बुना जाता है। खाने की मरगूब गिज़ाओं में घी के भगरे हुए चावल, लीमू चावल, रसगुल्ला, दालमा, साग वहाँ आम तौर पर पसंद किया जाता है। इसके अलावा आम लोगों की पसंद के दूसरे खाने भी मिलते हैं। पुरी को मजमूई तौर पर एक पुराना और रवायती शहर कहा जाता है, क्योंकि आज भी ये तहजीबी और कुदरती मनाजिर का शहर है। उसके आसपास कोणार्क शहर है, जो लगभग 20 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ कोणार्क का सूरज मंदिर है, और तकरीबन 7 किलोमीटर पर भुवनेश्वर है।

0: जो राजधानी भी है और मंदिरों का शहर भी कहलाता है। यहाँ लोगों का मिजाज नर्म है, वहाँ की उड़िया जबान में भी नरमी है जिसको ज़रा गौर से सुनने से समझा भी जा सकता है। उर्दू जबान के बोलने वाले यहाँ निस्बतन बहुत कम हैं, इसके बावजूद बाज़ारों में उर्दू जबान बोली और समझी जाती है। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से सयाह मुल्क के दूसरे तफरीही मकामात का दौरा करने के बाद उड़ीसा में जब कदम रखते हैं तो उनका सफ़र पूरी जाए बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ कुदरती मनाजिर, समंदरी हवाओं और मजहबी चहल पहल का एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो सबके लिए काबिल तारीफ है। और कम से कम एक बार पूरी जाकर यहाँ एक दिन क़याम करके हिंदुस्तान के रंगारंग तहजीब और कल्चर का अंदाज़ा लगाना हर सयाह के लिए ज़रूरी है।
1: चमन दर चमन, अभी आपने इस सिलसिले के तहत शहर पुरी के बारे में मालूमात हासिल की। पेश कर रहे थे डॉक्टर अतीक अनवर सिद्दीकी। समीन, हमें मुल्क का हर गोशा बहुत खूबसूरत मालूम होता है क्योंकि हमें वतन से मोहब्बत है। हुब्बुल वतनी से मुराद अपने वतन से सच्ची मोहब्बत, उसकी वफादारी और उसकी तरक्की के लिए तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा है।

0: अभी आप ये नगमा सुन रहे थे जिससे हमारे वतन अजीज की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सामीन, कुछ अल्फाज और जुमले इंसान की जिंदगी का रुख मोड़ने की कुव्वत रखते हैं और ये अंधेरों में रोशनी के मीनार की तरह रहनुमाई करते हैं। इंसान को तारीख, मजहब और बुजुर्गों के अकवाल की सूरत में जो हिकमत मिली है वो उन्हीं चंद अल्फाज या जुमलों में समाई हुई है। जिंदगी में इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच मुस्बत होगी तो हमारी जिंदगी में अच्छाई और तरक्की होगी। मनफी सोच इंसान को पस्ती में धकेल देती है। अल्फाज सिर्फ आवाज़ों का मजमुआ नहीं होते बल्कि उनमें जिंदगी को बदलने की तासीर भी होती है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम हर्फ ताबिंदा।
1: इंसान की इस सरिश्त में दाखिल है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और अक्सर हालतों में अपनी बात मनवाना भी चाहता है। रूमी ने इस ख्वाहिश को हिमाकत का नाम देते हुए कहा है, ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी कैसी हिमाकत है। आखिर इस चीज़ की तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों हो कि कम अज़ कम एक फ़र्द तुम्हारे अंदर झांक सका है। दूसरों से सिर्फ वही बात करो जो उनके लिए अहमियत रखती है। सिर्फ वही बात पूछो जिसके जानने की तुम्हें ज़रूरत है और सिर्फ इसलिए बहस करो कि तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचना है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के दो सीधे तरीके हैं, एक तहरीर है दूसरा तकरीर। तहसील ज़ात के यही तरीके हैं। तहरीर के बारे में कामियों का ख्याल है, लिखना तो खुद एतमादी पैदा करता है। ये खुद एतमादी के तुम्हारे पास कहने को कुछ है और ये कि कुछ कहा जा सकता है। ये खुद एतमादी कि जो कुछ तुम महसूस करते हो, जो कुछ तुम वाकईतन हो, वो मिसाल बन सके, उसकी अहमियत है। ये खुद एतमादी कि कोई दूसरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और ये कि तुम में पूरी तवानाई है। खुद एतमादी से बढ़कर दूसरी तवानाई क्या हो सकती है। तहरीर को गुफ्तगु से ज़्यादा इजहार ज़ात का वसीला कहा जाता है, लेकिन जब किसी के पास बुलंद ख्यालात हों मगर दिल छोटा हो तो ऐसा शख्स बड़े अल्फाज लिखता है और छोटे और नीच काम करता है। बकौल गौतम बुद्ध, वो लोग जो बहुत अच्छी बातें करते हैं मगर उतने अच्छे काम नहीं करते, खूबसूरत रंगीन बेखुशबू फूल की तरह होते हैं। मगर वो लोग जो बातों की तरह अपने कामों में भी अच्छे होते हैं, उन फूलों की तरह हैं जो खुश रंग भी हैं।

0: हसीन भी और खुशबूदार भी। फूलों की खुशबू या संदल की महक हवा की मुखालिफ सम्त में उड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे लोगों की खुशबू हवा की मुखालिफ सम्त में भी पहुंच जाती है। लेकिन शख्सियत इतनी मुकम्मल कब होती है कि जाहिर और बातिन यकसा हों? जबान और दिल में बौध रखा जाता है, इसीलिए लाविस ने कहा है कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं वो जानते नहीं हैं। इसलिए अजब अलमिया है कि जिंदगी में हमें ज्यादा उन लोगों को सुनना पड़ता है जो कुछ जानते नहीं, बोले जाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें मुस्तकिल सुना जाए। रूमी का कहना है कि अगर तुम्हारी आरजू है कि दुनिया के शोर और हंगामे में तुम्हारी आवाज लोग सुन लें, तो तुम्हें अपनी रूह में सिर्फ एक तन्हा ख्याल को जारी और सारी करना होगा। एक और सिर्फ एक ही ख्याल को अपने में समोए रहने वाला शख्स वो होता है जो सियासी और समाजी इनकलाब लाता है, जो सल्तनतें कायम करता है, जो दुनिया को वो कानून देता है जिस पर दुनिया चलती है। जब इसलिए बोला जाए कि दूसरे सुन सकें, तो यकीनन एक नज़रिया और एक ख्याल होना चाहिए जो सुनने वाले को अपील करे। लेकिन जब खुद कलामी मंजूर हो कि ख्यालात की भरमार भी मुमकिन है, क्योंकि आमतौर से तो हम खुद से ही बात करते हैं, जिसके लिए खलील जिब्रान ने कहा है कि हम सिर्फ इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने आप से खिताब कर सकें, मगर बसा औकात आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो जाती है और दूसरे हमें सुन लेते हैं।
1: अभी आप अक़वाले ज़र्री का प्रोग्राम हर्फ़े ताबिंदा सुन रहे थे। आइए अब अव्वाली की तरफ रुख करते हैं। समीन गज़ल या किसी भी कलाम को अव्वाली की सूरत गाया जा सकता है। समाज फरमाइए ये कव्वाली।

अभी आप चांद अफजाल और साथियों की गाई कव्वाली सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कहकशां, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतजार अली सैफी ने। अब आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम खत्म करने की मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए। उर्दू मजलिस के अगले शुमारे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से सेवाओं, निवेश, पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार,

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
0: The Department of Telecommunications has cautioned citizens against fraudulent issuance of SIM cards, misuse of telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers. It has asked citizens not to share or transfer SIM cards issued in their names to others. The department has also advised citizens to refrain from procuring SIM cards through fake documents. The Communication Ministry has advised citizens to regularly verify their mobile connections through the Sanchar Sathi portal and mobile app. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said that currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centers are operational in the country, and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She also said that 25 countries in the world recognize and accept the India Pharmacopeia, and added that the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The minister highlighted that India has risen from the 123rd rank in 2014 to the 8th rank in providing this data to WHO. India achieved this milestone in the year 2025. Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary election, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of the votes, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by 25th of September. United Russia Party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kyiv. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. Tensions between the United States and Iran remain high, with both sides issuing fresh threats to each other, while there are also indications that diplomatic opening might be emerging in the conflict. Iran's military has claimed that it has information about U.S. preparations to resume attacks on Iran and has warned that any new U.S. attack would trigger retaliation against American bases and interests across the West Asia region. IRGC said that they would attack new targets and deploy new weapons if the U.S. launches further attacks on Iran. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial backed the bronze after losing 0-2 to Singapore's Wee Hun Tho in the women's 60-kilogram traditional semi-final. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at NSE ended lower. Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. And India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And that is the end of this news bulletin.
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 4:10 और ये हुए पूरे 16 सेकंड। ये वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का। सबसे पहले जो सूचना है वो है, खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रवीण यादव, पिता का नाम है प्रमोद यादव। इन्हें आखिरी बार 12 जनवरी 2026 को जयस्वरूप मार्केट अहमदाबाद में देखा गया था। इनकी उम्र है 21 वर्ष, पुरुष हैं, शरीर इकहरा है, 5 फीट 4 इंच इनकी हाइट है। और इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी आप उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, थाना बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर को दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है नीलम, पति का नाम चंदन, उम्र 20 वर्ष, ग्राम जनपुरा, पुलिस स्टेशन इकोट्रैक 3 गौतम बुद्ध नगर की निवासी हैं। इन्हें आखिरी बार इनके घर पर देखा गया था। उम्र है 20 वर्ष, महिला है, शरीर की बनावट सामान्य है, ऊंचाई 5 फीट। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी मोनिका चौधरी, जांचकर्ता, थाना इकोट्रैक 3 गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है सुरेश पहाड़िया, पिता का नाम है धर्मा पहाड़िया। इन्हें आखिरी बार 17 जनवरी 2026 को देखा गया था। इनकी उम्र है तकरीबन 46 वर्ष, कद है 5 फीट आधा इंच, पतला शरीर है, रंग गेहुआ है और ये अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गए हैं। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी आप चेतन चौधरी, थाना नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राबिया सैफी, उम्र करीब 27 वर्ष है। इन्हें आखिरी बार इन्हें अपने बच्चों को स्कूल लेते जाते वक्त देखा गया था, उसके बाद से इनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने जैसे आपको बताया, इनकी उम्र है 27 वर्ष, महिला है, इकहरा शरीर है, रंग गोरा है, आंख नाक कान औसत है, कद है 5 फीट 2 इंच और इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वाले को 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। आप इनके बारे में कोई भी जानकारी दे सकते हैं मनेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली दनकौर, गौतम बुद्ध नगर। खोए व्यक्ति का नाम है गोल्डी, महिला है, उम्र है तकरीबन 19 साल, 4 फीट 2 इंच इनकी कद है, शरीर पतला है, रंग गोरा है और इनको आखिरी बार इनके घर पर ही देखा गया था। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में आप ASI गणेश कुमार, थाना बादशाहपुर को दे सकते हैं। कुमारी आमना खातून, ये हैं खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम। पिता का नाम है अब्दुल हसन, इन्हें घर पर ही देखा गया था। 15 वर्ष इनकी उम्र है, महिला है, इकहरा मजबूत जिस्म है, आंख नाक कान औसत है, कद है 4 फीट 1 इंच और ये सामान्य परिस्थिति में घर से बिना बताए कहीं चली गई है। आप इनके बारे में उप निरीक्षक जयवीर सिंह, थाना इकोट्रैक 3 गौतम बुद्ध नगर में दे सकते हैं जानकारी। लापता व्यक्ति का पूरा नाम है अनीता देवी, ये C-110 सेक्टर 3 थाना बिसरख जनपद गौतम बुद्ध नगर की निवासी हैं। इन्हें आखिरी बार 12 जनवरी को देखा गया था 2026 और आप इनके बारे में कोई भी जानकारी दे सकते हैं। इनकी उम्र है 44 वर्ष, महिला है, कद 5 फीट 3 इंच है, शरीर की बनावट दुबली है। आप इनके बारे में जानकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार, थाना बिसरख, गौतम बुद्ध नगर को दे सकते हैं। जितेंद्र कुमार पुत्र मेघराज सिंह, ये हमारे खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है। इन्हें 21 जनवरी 2026 को देखा गया था। पुरुष हैं, उम्र 35 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है। इनके बारे में किसी भी तरह से आप कोई भी जानकारी रखते हैं तो अमित कुमार उप निरीक्षक थाना विजय नगर गौतम बुद्ध नगर में दे सकते हैं। श्रोताओं, ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित जरूरी जानकारी। अब आइए सुनते हैं युवाओं का

0: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक दिन में हम कितनी आवाजें सुनते हैं? अलार्म की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, सड़कों का शोर, दोस्तों की बातें या किसी पसंदीदा गाने की धुन। लेकिन इन सब आवाजों के बीच एक आवाज ऐसी भी है जो शायद इस वक्त आप सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं नीतीश। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर।
0: और मैं हूँ स्मृति। आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ दिलचस्प किस्से और आपकी हेल्थ और आसपास की दुनिया से जुड़ी जरूरी अपडेट्स।
1: तो दोस्तों, जरा आवाज बढ़ा लीजिए और अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा पॉज लाइए,
0: क्योंकि अगले कुछ पल आपके लिए थोड़े खास होने वाले हैं।
1: तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं एक बेहतरीन गीत, जाने क्यों।

0: दोस्तों, आजकल मौसम बहुत बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ हमें अपने हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।
1: बिल्कुल स्मृति, इसलिए आज की बात में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा, H1N1।
0: और आपको यह भी बताएंगे कि H1N1 आखिर है क्या? क्या इस वायरस से हमें घबराना चाहिए? और अगर नहीं, तो इससे जुड़ी किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए?
1: दोस्तों, आपको बता दूं कि H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है जो सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है।
0: अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई बार नॉर्मल फ्लू समझकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे फीवर, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक और बहुत ज्यादा थकान।
1: स्मृति, आपने जो सिम्टम बताए अक्सर हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर को कल दिखा लेंगे, बिना सलाह लिए दवाई ले लेते हैं। ये गलत है। हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ।

0: बिल्कुल नीतीश, H1N1 और दूसरे फ्लू वायरसेस आमतौर पर खांसने, छींकने या बात करने के दौरान निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से फैल सकते हैं।
1: इसीलिए दोस्तों, बचाव के लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बीमार व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाएं, खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकिए, ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचिए और अपने हाथ को निरंतर साफ रखिए।
0: और अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेने में हिचकिचाइए मत।
1: दोस्तों, हमारे पुरखों ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर ही समृद्धि का रास्ता खोलता है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है और सफलता को प्राप्त करने में सहायक बन सकता है।
0: बिल्कुल, यह तो हो गई हेल्थ की बात। अब माहौल को थोड़ा म्यूजिकल करते हैं और सुनते हैं पंजाबी वेडिंग सॉन्ग।

0: अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, मन से माइक्रोफोन, जिसमें हम सभी सुनेंगे हितेश्वर शर्मा जी की सक्सेस स्टोरी, जिनसे बात की है हमारी साथी आंचल पुंडीर ने।
1: हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक। टैलेंट और लक सक्सेस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। वेल, लेट्स एक्सप्लोर दिस थ्रू अ कॉन्वर्सेशन विद समवन हु हैज बीन अ सीबीएसई टॉपर, बिकेम अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड नाउ अ लॉ स्टूडेंट। Today we have with us Hiteshwar Sharma. So welcome Hiteshwar. How have you been?
2: Hi, it's an honor to be here. Mera saubhagya hai aapse baat karna.
1: Hiteshwar, 2000

0: 21 में आप सीबीएसई क्लास 12 के टॉपर थे, आज 5 साल बाद आप खुद को देखते कहाँ हैं उस एक अचीवमेंट के बाद?
1: अगर मैं 2021 की उस अचीवमेंट की बात करूं तो वो मेरे लिए बेहद खास थी, क्योंकि उसको 5 वर्ष हो गए हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं उसको भूल पाया हूँ या जो उसकी लर्निंग्स है मैं उसको पूरी तरह से भूला हूँ। वो एक माइलस्टोन था जिसने मुझे प्रेरित किया आगे मेहनत करने के लिए। उसके बाद मैं कॉलेज गया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की, अब मैं कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो एक ऐसा पल है मेरे जीवन का, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, टीचर्स बहुत प्राउड थे, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आगे निरंतर मेहनत करता जाऊँ। और आज भी वही मेहनत चल रही है, आज भी वो राह खोज रहे हैं जो भी एक बेस्ट ऑप्शन होगा एक स्टूडेंट के लिए या क्या करियर ऑप्शन बेस्ट है। आज मैं भी आम स्टूडेंट्स की तरह, सभी स्टूडेंट्स की तरह मैं अपने आप को स्थिति में पाता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये जो 5 साल पहले के जो पल हैं आज भी मेरे लिए बहुत खास है और आज भी बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए।
0: अच्छा एक बात बताइए, उस टाइम आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या था जब आपको ये सारी अचीवमेंट्स मिली, और आज सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है?
1: उस समय मैं कुछ 18 साल का था। अगर हम बात करें सक्सेस की, कामयाब होने की, तो किसी मटेरियल फॉर्म में या किसी रैंक के फॉर्म में मैंने सक्सेस इमेजिन नहीं की थी। उस टाइम पे मेरा जो टास्क था, मेरा जो कार्य था, मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे कहा था कि इतनी मेहनत करते रहिए, ये अगर आप कर लें, आज एक दिन का काम दिया है मुझे, कहा है कल तक आपसे ये उम्मीद है आप इतने अंक ले लें या टॉपिक समझ पाए, एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए, इन जनरल एक अच्छा इंसान बन पाए, मॉरल वैल्यूज भी सिखाना स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के AI के दौर में हम देख रहे हैं कैन AI रिप्लेस टीचर्स, तो बिल्कुल नहीं होता, मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरे टीचर्स ने जो मुझे उस समय सिखाया आज भी काम आ रहा है। तो हम उसको एक रैंक की तरह ना देखें, बल्कि एक जर्नी थी जो उस समय मेरे एज अ स्कूल स्टूडेंट विच टर्न्ड इनटू अ कॉलेज स्टूडेंट वाज वेरी वेरी स्पेशल, और आज भी उसी चीज को सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सक्सेस का उस समय भी मेरे दिमाग में आइडिया था वो यही था, एक अच्छा इंसान बने, सीखते रहें, शिक्षकों की माता पिता की इज्जत करें, टेक वन डे एट अ टाइम एंड कीप लर्निंग, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी।
0: I assure you, our listeners are going to learn so much after this. As we have known about you that you have played with Haryana cricket as well. आप ये बताएं कि आपने sports, student politics, cricket इन सब के साथ ये manage कैसे किया?
1: तो मैं जब स्कूल में था, स्कूल में मेरे जो mentors थे जिन्होंने मुझे guide किया, उन्होंने मुझे कभी भी एक field पे limit नहीं किया। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे शिक्षकों ने मुझे ये भी कहा कि खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। मैं स्टेज प्लेस करता था, थिएटर में मैं बहुत एक्टिव था, स्कूल में भी मैं स्टूडेंट लीडरशिप में रुचि रखता था। तो क्योंकि मेरे गाइड करने वाले लोग मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में इतने अच्छे थे कि वो मुझे प्रेरित करते गए कि आप अलग अलग फील्ड में सक्रिय हो जाइए। एक फील्ड को पकड़ना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, अच्छे कार्य करने में व्यस्त रख सकते हैं, चाहे वो खेल है, चाहे वो सोशल वर्क है, किसी भी चीज में अगर आप एक्टिव रहकर अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे हरियाणा अंडर 14 और अंडर 17 से खेलने का उस समय मौका मिला। पंचकुला से मैं आता हूँ, मुझे अपने शहर की कप्तानी करने का मौका मिला। तो भगवान ने चाहा और मेरी मेहनत थी, मेरे दोस्तों का जो साथ था और मेरे जो कोचेस थे उनके हार्डवर्क की वजह से दैट इज वेयर आई रीच्ड। एंड इवन कॉलेज में भी आफ्टर कोविड पैंडमिक मैं काफी समय तक क्रिकेट खेला नहीं था, तो वहां भी जो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री के थे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था या मैं क्लास में रेगुलर था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। तो मैंने उनको बताया कि सर कोविड पैंडेमिक हो गया, मैंने प्लस टू में ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप किया है, तो मुझे लग रहा है क्रिकेट पीछे छूट गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं आपसे क्लास में बात नहीं करूंगा अगर आपने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुरंत क्रिकेट खेलना शुरू करो, कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो अभी भी क्रिकेट खेलना चल रहा है पढ़ाई के साथ साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खेल के, सोशल मीडिया से और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर यदि आप खेलकूद में समय बिताएं तो आपको पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। और पढ़ाई, खेल, ये सभी चीजें मैं नहीं मानता वॉटर टाइट कंपार्टमेंट है, अलग अलग चलती हैं। मेरा मानना है सभी साथ में चलती हैं और सबके लिए समय निकाला जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द विल पावर।
0: जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आपके साथ रहे हैं, यू हैव मेंशन योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, तो आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था?
1: सबसे बड़ा रोल अगर मैं अपने आगे बढ़ने में बताऊं तो वो मेरे परिवार का है, मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, मेरी दादी। 2 महीने पहले ही माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगर मैं उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन को आज बैठकर याद करता हूँ तो मैं शुरू से लेकर अपने जीवन में, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक, मेरी फैमिली ही है जो मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी रही, और वो आज भी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। मेरे परिवार के बाद जो मेरे अध्यापक रहे हैं, चाहे वो स्कूल में रहे हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बेस्ट लोगों से गाइड होता चला गया हूँ। मैं मानता हूँ मेरी किस्मत अच्छी थी, अपने आप को लकी मानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के जो बच्चे हैं उसी तरह से अपने शिक्षकों की, अपने माता पिता की इज्जत करें, उन्हें भी उसी तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसी तरह के मेंटोर्स मिले जैसे मुझे मिले थे। तो वहां पे लक ने मेरी बहुत सहायता की, क्योंकि मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे टीचर्स मिले।
0: बिल्कुल हितेश्वर, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है, क्या आप भी थे, और अगर थे तो किस तरीके से, अगर नहीं थे तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा संभल के रहें, नहीं रहें?
1: आज भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ, पहला सवाल जो मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं, कोई भी पूछता है, वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंस्टाग्राम पे आज भी नहीं हूँ। मैं 23 वर्ष का हो गया हूँ, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं इतना करता हूँ। हाँ, मैंने ट्विटर अकाउंट जरूर बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि कोई अगर किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक ऑफिस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मेंशन किया जाता है। तो फॉर दैट पर्पस आई डिड यूज अ ट्विटर अकाउंट। मेरे लिए बिना सोशल मीडिया यूज किए मेरा काम चला है। और मैं व्यक्ति भी उस तरह का हूँ जो इन प्रेजेंट जीना प्रेफर करता है ओवर थिंकिंग इन फ्यूचर। और वो रील्स को स्क्रॉल करना टाइमलेसली आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले बात भी कही कि मैं व्यस्त इतना रहता था क्रिकेट खेलने में या अपनी पढ़ाई करने में कि समय नहीं मिलता था। जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि हम जब फ्री टाइम में बैठते हैं तो हम वो कल्चर भूल चुके हैं। हम पेरेंट्स के साथ बात करना, दोस्तों को मिलने की जगह कॉल करना हम आसान समझते हैं, तो वो ह्यूमन टच में सो जाता है लोगों का। इवन हम कॉलेज में बैठे हैं, कॉलेज के एक हॉस्टल के दूसरे कमरे में कोई आपका मित्र बैठा है, उसके रूम तक चलने में भी 2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन आप फोन करना प्रेफर कर रहे हैं। तो एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। तो मैं एज ए यंग स्टूडेंट ये मानता हूँ कि हाँ, आज के दौर में सोशल मीडिया जरूरी है। एक पॉइंट के बाद आपको भी अगर अपना कोई स्किल है, कोई आर्ट है, कोई सिंगर अच्छा है, जैसे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी को लगता है मैं फ्यूचर में जर्नलिज्म में अपना फ्यूचर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है टू यूज टूवर्ड्स द करियर। बट अगर हम फ्री बैठे हैं, हम और कोई एक्टिविटी पिकअप नहीं कर रहे और हमें लग रहा है कि ये खाली समय में हम सोशल मीडिया यूज करके, या एक जस्ट फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त यूज करते हैं तो मैं भी करूं, मेरे दोस्त रील्स डाल रहे हैं देख रहे हैं तो मैं भी देखूं, वो देखा देखी में अपना समय बेकार नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा जस्ट फोकस ऑन द ह्यूमन कनेक्शन, नेचर से कनेक्ट कीजिए। बिल्कुल यूज कीजिए सोशल मीडिया। मैंने यूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो वी शुड यूज सोशल मीडिया बट फॉर प्रोडक्टिव वर्क। ओकेजनली यूज करना चाहिए, इट शुड नॉट बिकम द सेंटर पीस ऑफ आर पर्सनैलिटी और लाइफ। और इसी तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट ओवर, बट वॉट यू डू आउट ऑफ सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। और मैं होप करता हूँ कि इंडिया का जो यूथ है प्रोडक्टिवली सोशल मीडिया को यूज करेगा।
0: Right, Hitesh, well, that's really incredible. Now that we are heading towards the end of this interview, just one last question. See, there are many students out there जो बहुत talented हैं, बहुत hardworking हैं, लेकिन अपनी direction को लेकर बहुत confused हैं। एक कोई ऐसा suggestion या advice जो आपने देना चाहते हैं before we end the interview?
1: आपने शुरुआत की थी ये पूछकर कि talent matter करता है या luck? मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूँ, talent, luck, hard work, तीन चीजों पे बात करते हैं। जो प्रतिभा है, टैलेंट, प्रतिभा आपको एक दरवाजे तक लेकर जा सकती है, और शायद किस्मत, तकदीर जो है, एंड प्रतिभा, ये दोनों चीजें मिलकर शायद वो अपॉर्चुनिटी को पॉसिबल बना सकती हैं, या उस एक उपलब्धि को पॉसिबल बना सकती है। आपको लग सकता है कि हाँ, ये चीज हो सकती है, हकीकत में ये चीज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रतिभा होना, कहाँ पैदा हुए, क्या स्किल आपने डेवलप किया, और इनफैक्ट लक होना, किस्मत होना, कि किस्मत मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, मैं आगे क्या करूंगा, क्या ये चीज संभव है या नहीं है। ये दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वो है मेहनत, हार्डवर्क। सो इवन इफ लक मेक्स यू रीच अ पर्टिकुलर डोर, इट इज योर हार्डवर्क दैट हेल्प्स यू एंटर दैट डोर एंड रीच योर डेस्टिनेशन। तो मैं यही मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेहनत करना। हमें सपने बड़े रखने चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, टीचर्स से सीख लेनी चाहिए। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित अगर हम रहेंगे, बड़े सपने देखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है।
0: थैंक यू सो मच हितेश्वर फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज रियली एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड विद यू। एंड फॉर यंग लिसनर्स, दिस वाज हितेश्वर शर्मा इन कॉन्वर्सेशन विद आंचल पुंडीर साइनिंग ऑफ।
2: अभी आपने सुनी हितेश्वर शर्मा जी की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना, जमे रहो, फ्रॉम द मूवी तारे जमीन पर।

0: तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, टुडे इन हिस्ट्री। इसमें हम आपको बताएंगे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के साथ साथ कुछ रोचक, दिलचस्प और जरूरी बातें।
1: नीतीश, क्या आपको लगता है कि हमारी मेमोरीज हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं?
0: बिल्कुल स्मृति, हमारी यादों में ही तो हमारे बचपन के पल, हमारे अपने लोग और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कई खूबसूरत बातें होती हैं।
1: लेकिन दोस्तों, सोचिए अगर किसी इंसान को धीरे धीरे अपनी ही मेमोरीज याद रहना बंद हो जाए तो कैसा लगेगा?
0: बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम अल्जाइमर्स डिजीज की बात कर रही हो?
1: हाँ नीतीश, क्योंकि आज यानी 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है।
0: अगर हम इस बीमारी की बात करें तो अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी की याद रखने और सोचने समझने की एबिलिटी पर असर पड़ता है।
1: किंतु इसके कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए जिससे हम इस बीमारी को पहचान सके, जैसे बार बार चीजें भूलना, हाल की बातें याद रखने में परेशानी होना, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होना या फेमिलियर चीजों और जगह को पहचानने में परेशानी होना।
0: और दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिए कि हर छोटी से छोटी चीजें भूल जाने का मतलब अल्जाइमर्स नहीं होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में लगातार ऐसी बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, अवेयरनेस इसलिए जरूरी है ताकि समय पर सही मेडिकल एडवाइस ली जा सके और उस व्यक्ति और उसके परिवार को सही सपोर्ट मिल सके।
0: और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इसका नाम अल्जाइमर्स क्यों पड़ा, तो इसका नाम जर्मन डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इस बीमारी से जुड़ी शुरुआती मेडिकल ऑब्जर्वेशन किए थे।
1: इसलिए मेंटल हेल्थ को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। मेंटल हेल्थ से याद आया, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी है,
0: यानी शांति और भाईचारे की बात करने का दिन। और पीस की शुरुआत हमेशा किसी बड़े लेवल से ही हो, ये जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल नीतीश, अपने आसपास के लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, किसी की बात सुनना और छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी लड़ाई से बचना भी पीस की तरफ एक कदम उठाना हो सकता है। इसी के साथ सुनते हैं सॉन्ग एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे।

0: और अब चलते हैं भारत के इतिहास की ओर और बात करते हैं भारत के पहले स्वतंत्रता विद्रोह की। 1857 की रिवोल्ट के दौरान 21 सितंबर को ब्रिटिश फोर्सेस ने दिल्ली पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने हुमायूं टूंब में ब्रिटिश फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया।
1: और मीडिया हिस्ट्री में भी आज का दिन इंटरेस्टिंग है। 21 सितंबर 1948 को रॉयटर्स और इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स सोसाइटी के बीच अग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने की राह बनी। और अब बात करते हैं केरला से जुड़ी एक खास पर्सनैलिटी की, श्री नारायण गुरु जी की।
0: आज केरला में उनका समाधि डे मनाया जाता है। श्री नारायण गुरु ने सोसाइटी में बराबरी और शिक्षा की बात की और लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाने का मैसेज दिया। उनका एक बहुत फेमस मैसेज था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी हर इंसान को बराबर समझना और सम्मान देना।
1: तो दोस्तों, 21 सितंबर हमें कई अलग अलग बातें याद दिलाता है, हेल्थ का ध्यान रखना और पीस को महत्व देना और हिस्ट्री की घटनाओं से हमेशा सीखते रहना।
0: और अब सुनते हैं बहका मैं बहका फिल्म।

0: दोस्तों अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट क्विक बज का।
1: हम आपको बताते हैं सेवा संकल्प अभियान।
0: सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह एक महीने का देशव्यापी जनसंपर्क और जनसेवा अभियान है।
1: यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सेवा और सामाजिक कार्यों से जोड़ना है। विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर चित्रकला प्रतियोगिता, स्वास्थ्य शिविर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
0: और दोस्तों, संस्कृत का एक सुप्रसिद्ध वाक्य है कि सेवा परमो धर्म, अर्थात दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ सुप्रसिद्ध कवि रमाधार त्यागी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वे लिखते हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं।
1: बिल्कुल नीतीश, हमें अपनी मातृभूमि के हित के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। और सुनते हैं एक सुंदर गाना रॉक एंड रोल सोनिए फिल्म कभी अलविदा ना कहना से।

0: दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने हेल्थ से जुड़ी जरूरी बातें की और हिस्ट्री से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर किए।
1: उम्मीद है आज की ये बातें आपको कुछ नया जानने और अपने आसपास की चीजों को एक अलग नजर से देखने का मौका देंगी।
0: लेकिन जाने से पहले हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपके सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com पर, yuvanifeedback@gmail.com पर। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति। मैं स्मृति।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
3: ये रणनीति

0: एक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
2: Today we have around 1150.
3: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
2: Which will make a big change in times to come.
1: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उधर भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
5: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans.
5: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
4: A delegation from Fujifilm India, led by its managing director Koji Varda, today called on Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda in New Delhi. During the interaction, Mr. Nadda appreciated Fujifilm India for dedicating its first serial numbered Made in India endoscopy system to the nation through AIIMS New Delhi. The delegation highlighted the growing role of advanced medical technologies, including flexible endoscopy and minimally invasive treatment, while supporting improved patient outcomes and shorter recovery periods. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centers are operational in the country. She also said that 25 countries in the world recognize and accept the Indian pharmacopoeia, and added the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The Department of Telecommunications has cautioned citizens against fraudulent issuance of SIM cards, misuse of telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers. It has asked citizens not to share or transfer SIM cards issued in their name to others. The department has also advised citizens to refrain from procuring SIM cards through fake documents. Tensions between United States and Iran remain high, with both sides issuing fresh threats to each other, while there are also indications that diplomatic opening might be emerging in the conflict. Iran's military has claimed that it has information about U.S. preparations to resume attacks on Iran and has warned that any new U.S. attack would trigger retaliation against American bases and interests across the West Asia region. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Vice President of UAE, Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve society will be cherished by generations to come. At the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event at Nagoya in Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil clinched the bronze. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial bagged the bronze medal in the women's 60kg traditional semi-final. In badminton, Indian men's team defeated Bangladesh 3-0 to reach the quarterfinals today. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex surged 564 points to close at 74,859. And that is the end of this news bulletin.

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए साहिद भाई, हम अपने भाइयों के लिए रागिनी, उपदेश, लोकगीत और ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास लोकगीत भरपूर हैं, वो सब लेकर आते हैं हर दिन रोज नया। और आज हम कुछ ऐसे ही मिले जुले लोकगीत लेकर आए हैं, तो आइए सुनते हैं बड़ा प्यारा सा एक लोकगीत ऋषिपाल खदाना और साथियों की आवाज में।

0: मैं उठे भाई मनियो ना जामन ने हो रहा से
1: अपनी राही जामू रख बे मतलब टाइम क्यों हो रहा से
0: दूर मैन का जिसा हुस्न विश्वामित्र ने मोहरा से
1: चला जा नहीं दुनिया में पिट जागा।

यार स्वर्गी जोड़ी लागे इंद्र संग इंद्राणी सी राजा द्रौपदी की जाई लागे पांडवा की रानी सी।

0: तेरी परियों जैसी चाल। ये ऋषिपाल खदाना और साथियों की आवाज़ में दो गाना आपने सुना। और बहनों भाइयों, अब ले चलते हैं अगले गाने की तरफ।
1: यहाँ
0: और
1: लोकगीत जो हमारे होते हैं, शाहिद भाई कहते हैं ना कि हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसको ही हम गाकर लोकगीत बना लेते हैं।
0: हाँ, वही यही
1: और
0: तो खासियत है कि
1: जी,
0: लोकगीत में परंपरा होती है, संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं। और
1: और
0: जो
1: इसमें ये भी नहीं है शाहिद भाई कि भाई जो मैंने गाया तो मेरा ही गाना है। वो लोकगीत का मतलब है कोई भी गा सकता है, कभी भी
0: उसमें
1: गा सकता
0: सब कुछ,
1: है।
0: हाँ, लोकगीत की यही तो खासियत है कि उसमें सारी चीजें समाहित होती हैं ना, उठना बैठना, काम धाम, खेती बाड़ी, वो सारी चीजें परंपरागत जो भी चली आ रही हैं,
1: जी हाँ, खेतों
0: सबका
1: में
0: वर्णन
1: बैठ
0: मिलता
1: के
0: है।
1: गाना बना लेती
0: बिल्कुल,
1: हैं महिलाएं
0: नोक झोंक
1: हमारी।
0: भी होता
1: और
0: है, हाँ,
1: बिल्कुल
0: हर मौके के लिए होता है, ये बड़ी चीज है।
1: वो
0: तो
1: है
0: चलिए अगला लोकगीत सुनवाते हैं, पुष्पा गोसाई की आवाज में।
1: जी।

0: भाई देखिए, हमारी जो ये पुष्पा गोसाई बहन है और ततैया की बात कर रही है, तो एक छोटी सी कहावत है, जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे जब ततैया काट लिया करता था तो स्वेलिंग आ जाती थी, तो हमारी दादी नानी कहती थी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तनक मनक तुम ओढ़ बड़े, हम करत खिलाड़ी तुम रो पड़े, तो छोटा सा ततैया है और काट लिया और तुम रोने लगे, तुम तो इतने बड़े हो, मार दो
1: हाँ,
0: इसको।
1: लेकिन बंदा बहन ततैया जो है ना, दो तरह के होते हैं
0: हाँ
1: ना। एक तो कहीं कहीं जो है कि ये जो बर्रे है इसको भी ततैया बोलते हैं, और
0: जी
1: एक ततैया जो इस मौसम में ना उड़ते रहते हैं, उसके चार पंखे दिखते हैं और लंबी सी पूंछ जैसी होती है ना।
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: दरअसल ये हमारी खेती बाड़ी में बड़े काम की है,
0: बिल्कुल
1: ये परागण और इस तरह की बहुत सारी जो है कि क्रियाविधि है जो कि खेती को ना बढ़ाने का काम करती है, उसमें
0: बिल्कुल
1: बहुत फायदे की है।
0: बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला लोकगीत सुनवाते हैं गोपाल सिंह बर्मन की आवाज में।

हर रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने सहना, हर रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने सहना, हर रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने।

0: शायद भाई देखिए, पानी की भी बहुत ज़रूरत रहती है हमेशा, और हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है,
1: भाई
0: खाना पीना
1: पानी जो
0: नहाना
1: है
0: धोना
1: ना,
0: सब कुछ।
1: नहाना धोना सबसे, और सबसे बड़ी चीज़ ना जिंदगी की डोर जो है, वो जो हमारी खेती है, अर्थ की डोर है, जिंदगी की डोर है, वो सब कुछ बिना पानी
0: बेकार
1: बेकार है, बिन पानी सब सून।
0: जी, बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब थोड़े दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद शादियों का मौसम भी आ जाएगा, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो तैयारी करनी शुरू कर देती हैं कि श्राद्धों से पहले तैयारी कर लेते हैं, जो तुरंत एकदम शादी में पहन
1: हाँ
0: लें।
1: बिल्कुल सही कह
0: तो
1: रही,
0: आइए
1: ये
0: इस तरह का
1: सावन के
0: ही
1: बाद ये मौसम आने वाला है शादियों का ही।
0: जी, तो आइए सुनते हैं एक और लोकगीत, ऋषि पाल का दाना और अनुराधा की आवाज में।

0: और अभी हमारे भाई सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना अनुराधा शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत। और इसी के साथ हमारा आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: तो अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे खेल जगत का कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी में। खेल खिलाड़ी एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताता है खेलों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। और आज आपके साथ जुड़ी हूं मैं विदुषी वत्स, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांश। नमस्कार शिवांश। आज हमारे पास क्या क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, हम उन्हें बता देते हैं। आज हमारे पास है, सबसे पहले एशियन गेम्स के बारे में है। आज

0: हमारे पास है जापान और इंडिया के बीच में मैत्रेयी क्रिकेट का होने वाला T20 मैच के बारे में, आज हमारे पास है चेस, आज हमारे पास है अंडर 19 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स में आज का दिन बहुत ही धमाकेदार रहा है। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या योगदान रहा उसके बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। एशियन गेम्स 2026 में आज यानी 21 सितंबर सोमवार को भारतीय दल के लिए एक्शन से भरपूर दिन रहा। भारत ने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत ने अपना पहला एशियन गेम्स मेडल जीता, जबकि हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और वुशू में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। आईची नागोया में चल रहे इन एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन कई अलग अलग खेलों में रहा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आज भारत के लिए दिन कैसा रहा। सबसे पहले रुख करते हैं शूटिंग की तरफ, जहां आज भारत के लिए सबसे बड़ी मेडल हॉल देखने को मिली। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने ने टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। भारतीय टीम ने कुल 1890.1 अंक हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन के बाद शीर्ष खिलाड़ियों को इंडिविजुअल फाइनल में जगह मिलती है, जबकि टीम कंपटीशन में एक देश के 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को जोड़कर टीम का स्कोर तय किया जाता है। एशियन गेम्स में शूटिंग में इंडिविजुअल और टीम दोनों फॉर्मेट्स में मेडल दिए जाते हैं, इसलिए एक ही डिसिप्लिन से एक से अधिक मेडल अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यही खत्म नहीं हुई। इंडिविजुअल फाइनल में भी भारत ने 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं। हिमांशु ढिल्लो ने सिल्वर यानी रजत पदक जीता है, जबकि रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। यानी सिर्फ पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में आज भारत ने कुल 3 मेडल हासिल किए, एक टीम सिल्वर, एक इंडिविजुअल सिल्वर और एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीम सिल्वर तीनों खिलाड़ियों यानी हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने ने मिलकर जीता है। इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन में हिमांशु सिल्वर और रुद्रांश ब्रॉन्ज लेकर लौटे। हमारे सहयोगी शाहिद आजमी जी ने बात करी थी हिमांशु और पार्थ दोनों से ही उनके एशियन गेम्स में जाने से पहले। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिमांशु की तैयारी कैसी थी एशियन गेम्स से पहले।
1: ट्रेनिंग पे कॉन्फिडेंस है और कोचिज पे भी वो है कि अच्छा होगा, अच्छे साथ देंगे हमारा और अच्छा ही होगा सर हमारा जो कुछ भी होगा। अभी तो ट्रेनिंग पे ही फोकस है, बिलीव है सब हर एक चीज पे, तो बस वही हमारा कि अच्छा ही होगा हमारा।
0: इसी के साथ आइए सुनते हैं कि पार्थ ने एशियन गेम्स में जाने से पहले कौन से मेंटल एलिमेंट की तैयारी की बात की थी।
2: ट्रेनिंग का प्लान बना हुआ है, बोथ मेंटल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड हमें उतना भरोसा है ट्रेनिंग पे हमारे कि अभी कोई भी कंपटीशन आ जाए वी आर रेडी फॉर इट मेंटली ऑल्सो, बिकॉज एशियन गेम्स इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स मोर लाइक हाउ यू आर परफॉर्मिंग वेल मेंटली। टेक्निकली तो एवरी वन इज गुड हियर, बट द डे बिलोंग्स टू हिम, वो परफॉर्म्स, वो गिव्स हिज मेंटल ट्रेनिंग एट इट्स बेस्ट।
0: अब शूटिंग की दूसरी स्पर्धाओं की तरफ चलते हैं। पुरुषों की स्कीट में आज कंपटीशन का पहला दिन था। स्कीट में खिलाड़ी टारगेट्स को हिट करने के लिए अलग अलग स्टेशन से कम्पीट करते हैं और क्वालिफिकेशन कई स्टेजेस में आगे बढ़ती है। आज के परफॉर्मेंस के बाद फाइनल स्टैंडिंग्स अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है, क्योंकि कंपटीशन आगे भी जारी रहेगा और 2 दिन। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने 47 यानी 47 अंक हासिल किए और 21वें स्थान पर रहे। मायराज अहमद खान ने 45 अंक के साथ 26वां स्थान हासिल किया, जबकि भवतेग सिंह गिल ने 44 अंक के साथ 27वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। तीनों भारतीय शूटर्स का कंबाइंड स्कोर 136 रहा और भारतीय टीम स्टैंडिंग्स 6 स्थान पर रही। वहीं अगर महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में चलें तो भारत की 3 खिलाड़ी मैदान में थी। रायजा ढिल्लो ने 46 अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया, परिनास धलीवाल ने 44 अंक के साथ 14वां स्थान हासिल किया, जबकि महेश्वरी चौहान ने 42 अंक के साथ 16वां स्थान हासिल किया। तीनों भारतीय खिलाड़ियों का कम्बाइंड स्कोर 132 रहा, जिसके साथ भारतीय टीम स्टैंडिंग्स 3रे स्थान पर रही। आइए अब चलते हैं स्विमिंग की।

तरफ। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज ने हीट्स में हिस्सा लिया। श्रीहरि ने हीट्स में 25.37 सेकंड का समय निकालकर फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। फाइनल में श्रीहरि नटराज ने 25.52 सेकंड का समय निकाला और 10वें यानी अंतिम स्थान पर रहे। उनका नेशनल रिकॉर्ड और पर्सनल बेस्ट 25.18 सेकंड का रहा है। वहीं अगर ऋषभ दास की बात करें तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट्स में 11वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। अब अगर फ्री स्टाइल स्पर्धा की ओर चले तो पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में आकाश मानी और हीर गितेश शाह ने हिस्सा लिया, लेकिन दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में धनुष सुरेश भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में सजन प्रकाश, अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार भी भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। रिले में 4 स्विमर्स बारी बारी से निर्धारित दूरी पूरी करते हैं और पूरी टीम का कम्बाइंड टाइम तय करता है कि टीम आगे क्वालिफाई करेगी या नहीं। अब बात करते हैं वुमेन्स हॉकी की, जहां भारत ने एक और बड़ी जीत दर्ज की है। इंडिया ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया। हाफ टाइम तक इंडिया 9-0 से आगे था और दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने अपना अटैकिंग प्रेशर बनाए रखा। हॉकी में एक टीम के 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। मुकाबला 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है। टीम का लक्ष्य ओपोनेंट से ज्यादा गोल्स करना होता है और आज भारत ने पूरे मुकाबले में इसी अटैकिंग अप्रोच को बनाए रखा है। इंडिया की ओर से नवनीत कौर, ऋतुजा पिसाल और दीपिका सहरावत ने हैट्रिक्स दर्ज करी आज, यानी तीनों खिलाड़ियों ने 3-3 गोल्स किए। यह इंडिया के टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले इंडिया ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। अब इंडिया का अगला मुकाबला 23 सितंबर को थाईलैंड के साथ होगा। आइए सभी खेलों के बारे में बात करते हुए अब चलते हैं बैडमिंटन की ओर। मेंस यानी पुरुष के टीम इवेंट के फर्स्ट राउंड में इंडिया का सामना बांग्लादेश से हुआ और इंडियन टीम ने मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया। पहले मुकाबले में लक्ष्य सेन ने आयमान जमान को 21-4 और 21-12 से हराया। दूसरे मुकाबले में आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4 और 21-13 से हराया। तीसरे मुकाबले में किदंबी श्रीकांत ने अल अमीन जुमार को 21-15 और 21-12 से हराकर इंडिया को 3-0 की जीत दिला दी। बैडमिंटन टीम इवेंट में अलग अलग सिंगल्स और डबल्स मैचेस के रिजल्ट्स मिलकर पूरी टीम टाई का फैसला करते हैं। इंडिया ने आज तीनों मैचेस जीतकर बांग्लादेश को एक भी मैच जीतने का मौका नहीं दिया। इसी रोमांच को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां आज इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला और पुरुष दोनों टीम इवेंट्स में जीत दर्ज की है। सबसे पहले वुमेन्स टीम इवेंट की बात करेंगे, यानी महिला हॉकी यानी महिला टेबल टेनिस टीम की बात करी जाएगी, जिसने पाकिस्तान को 3-0 से हराया है। सुतीर्था मुखर्जी ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रही सिंड्रेला दास ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना मुकाबला जीता। उनके जीतने के बाद भारत की बढ़त 2-0 हो गई। इसके बाद श्रीजा अकुला ने तीसरा मुकाबला जीतकर भारत को 3-0 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप एफ में अपनी पोजीशन और मजबूत। और अब आते हैं मेंस टीम इवेंट यानी पुरुषों की टेबल टेनिस टीम के इवेंट के पास, जहां उन्होंने भी पाकिस्तान को 3-0 से हराया। रोमांच बहुत ही भरपूर रहा जब पहले मुकाबले में हरमीत देसाई का सामना मोहम्मद खान से हुआ। हरमीत ने शुरुआत से ही शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने पहला गेम 11-4, 11-3 और 11-5 से अपने नाम करा। इस तरह हरमीत ने इंडिया को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद साथियान का सामना अब्बास खान से हुआ। साथियान ने पहला गेम 11-1 से जीता। दूसरे गेम में अब्बास खान ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन साथियान ने फिर से कंट्रोल हासिल करते हुए 11-8 से जीत दर्ज करी। गेम का मुकाबला काफी क्लोज रहा, लेकिन साथियान ने प्रेशर के मोमेंट्स में संयम बनाए रखा और 11-9 से गेम जीत कर अपने नाम किया। अब इंडिया 2-0 से आगे था।
तीसरे मुकाबले में पायस जैन ने मोहम्मद खान के खिलाफ शानदार शुरुआत की। उन्होंने पहला गेम 11-2 और दूसरा गेम 11-5 से

अपने नाम बनाया और दबदबा कायम रखा। तीसरे गेम में भी पायस ने मुकाबले पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और 11-5 से गेम जीतकर इंडिया को पूरी टीम टाई में 3-0 की जीत दिला दी। यानी वुमेन्स और मेन्स, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरीज में भारत ने आज पाकिस्तान के खिलाफ टेबल टेनिस टीम टाई जीती है। अब चलते हैं कबड्डी की ओर। मेंस ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने जापान को 49-24 से हराया। हाफ टाइम तक भारत का स्कोर 31-9 से आगे था। दूसरे हाफ में पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार को भी कोर्ट पर उतारा गया ताकि उन्हें आगे के अहम मुकाबलों से पहले गेम टाइम मिल सके। कबड्डी में एक समय पर एक टीम के 7 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं। रेड और ओपोनेंट हाफ में जाकर पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि डिफेंडर्स उसे रोककर टैकल पॉइंट्स हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गेम में रेड और डिफेंस दोनों का बैलेंस बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत ने जापान के खिलाफ शुरुआत से ही बड़ा एडवांटेज इसी को बनाया और अंत में 49-24 से मुकाबला अपने नाम किया। अब वुमेन्स कबड्डी की तरफ आते हैं, जहां इंडिया का ग्रुप ए मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ रहा और मैच के शुरू से ही भारत ने अपना दबदबा बनाया रखा और एक अर्ली लीड ली गेम में 12-3 से। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु में अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। ताउलो इवेंट्स में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को जजेस द्वारा स्कोरिंग के आधार पर असेस किया जाता है, जबकि सांडा कॉम्बैट फॉर्मेट है। महिलाओं के चोंगक्वान फाइनल में नियमान वांगसू ने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। महिलाओं के 60 किलो सांडा राउंड ऑफ 16 में रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की शिखा खातून से हुआ। रोशिबिना ने पॉइंट डिफरेंस के आधार पर मुकाबला जीत लिया और अगले राउंड में अपनी जगह बना ली। वहीं पुरुषों की बात करें तो सांडा राउंड ऑफ 16 में आर्यन ने अफगानिस्तान के शहजादा साफी को 2-0 से हराया और इस जीत के साथ आर्यन ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। पुरुषों के 70 किलो राउंड ऑफ 32 में सुमित का सामना थाईलैंड की सिंसिरी से हुआ। सुमित ने मुकाबला 5-0 से जीत लिया और अगले दौर में पहुंच गए हैं। बॉक्सिंग के बारे में आपको बताएं तो एथलीट्स अलग अलग वेट कैटेगरीज में कम्पीट करते हैं और जजेस पूरे बाउट के दौरान उनकी पंचिंग, उनका डिफेंस, उनका कंट्रोल और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर स्कोरिंग करते हैं। सुमित ने आज सभी जजेस का डिसीजन अपने पक्ष में किया। और इसी के साथ साथ अगर बात करें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA की, वहां आज भारत ने हिस्ट्री बनाई है, इतिहास रचा है। वुमेन्स ट्रेडिशनल 60 किलो सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल का मुकाबला सिंगापुर की त्यो हुई हुन से हुआ। मुकाबला काफी करीबी रहा और एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेकिन अंत में सुचिका को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण उनका ब्रॉन्ज मेडल पहले ही सुनिश्चित हो चुका था। इस तरह सुचिका तरियाल ने एशियन गेम्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला मेडल जीता है। MMA के बारे में अगर आपको बताएं तो अलग अलग कॉम्बैट डिसिप्लिन्स के टेक्निक्स को एक कॉम्पिटिटिव रूल सेट के तहत मिलता है और मुकाबले में वेट कैटेगरीज भी होती हैं। एशियन गेम्स में MMA की यह पहली अपीयरेंस है, इसलिए सुचिका का ब्रॉन्ज मेडल भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब अगर बात करें पुरुषों के टीम रीगू ग्रुप बी में, जहां भारत का सामना जापान से हुआ, इंडियन टीम को जापान के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस खेल में खिलाड़ी बॉल को मुख्य रूप से अपने पैरों और शरीर के अनुमत हिस्सों पर कंट्रोल करके नेट के ऊपर ओपोनेंट के कोर्ट में भेजते हैं। टीम रीगू में कोऑर्डिनेशन और क्विक रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ आइए बात करते हैं सॉफ्ट टेनिस की, जहां मिक्स डबल्स ग्रुप बी में जय मीना और आध्या तिवारी के इंडियन पेयर ने कंबोडिया और मंगोलिया के खिलाफ अपने शुरुआती दोनों ग्रुप मैचेस जीते। कंबोडिया के खिलाफ इन दोनों ने 5-0 से जीत दर्ज करी, जबकि मंगोलिया के खिलाफ भी 5-0 से ही जीत दर्ज करी। इसके बाद इनका सामना साउथ कोरिया से हुआ, जिनके खिलाफ भारत को 1-5 से हार मिली। नॉकआउट स्टेज में भारत का सामना फिलीपींस की शेरविन नुगुविट और क्रिस्टी के पेयर से हुआ। इस मुकाबले में भारत

0: की जोड़ी को 2-5 से हार मिली और वे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह नहीं बना सके। अब जय मीना और आध्या तिवारी की नजर 22 सितंबर को होने वाले सिंगल्स कॉम्पिटिशन पर रहेगी। और अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी भारत की मेडल टैली पर। आज के 3 शूटिंग मेडल्स और सूचिका तरियाल की हिस्टोरिक ऐतिहासिक एमएमए ब्रॉन्ज के बाद भारत के पास कुल 6 मेडल्स हैं। इनमें 4 मेडल्स सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। शूटिंग से इंडिया के कुल 5 मेडल्स आए हैं, इनमें 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इन 5 शूटिंग मेडल्स में ओपनिंग डे पर एल्वानिल के 2 सिल्वर मेडल्स शामिल हैं। इसके बाद आज मेंस पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने ने सिल्वर मेडल जीता। इंडिविजुअल इवेंट में हिमांशु ढिल्लो ने सिल्वर और रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी शूटिंग से ही भारत के खाते में 5 मेडल्स आए हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी, सूचिका तरियाल ने ऐतिहासिक तरीके से एमएमए में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का मेडल टैली 6 तक पहुंचाया है। इंडिया के इस मेडल टैली के साथ साथ मेडल टैली में सबसे ऊपर अगर बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके बाद जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। भारत इस समय 12वें स्थान पर है और इसी मेडल टैली के आसपास एशियन गेम्स से जुड़ा एक ओवरऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको बता देते हैं। टाइफून दुजुआन के असर के कारण आयोजकों ने इक्वेस्टेरियन इवेंट्स यानी घुड़सवारी से जुड़े जो भी इवेंट्स हैं उनके स्केड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। मौसम के हालातों को देखते हुए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के चलते कॉम्पिटिशन प्रभावित हुआ है और कुछ इवेंट्स को बाद के लिए रखा गया है, स्थगित करा गया है, पोस्टपोन करा गया है। अंतर्गत कुल मिलाकर इंडिया की मेडल टैली अब 6 मेडल्स तक पहुंच चुकी है और एशियन गेम्स में इंडियन कैंपेन आगे भी जारी है और अब नजर रहेगी आने वाले मुकाबलों और अगले मेडल अपॉर्चुनिटीज पर।
1: जी विदुषी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल शिवांश, अब चलते हैं आपकी रिपोर्ट जो लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस जापान T20 मैच के ऊपर।
1: क्रिकेट को दुनिया के नए हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिशों के बीच भारत और जापान की टीमें अब एक ऐसे मुकाबले के लिए तैयार हैं जो दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार दर्ज होने जा रहा है। 22 सितंबर को होने वाले इस मुकाबले पर एक नजर डालते हैं। भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों देशों के बीच पहला पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इस मुकाबले की एक खास वजह दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होना भी है। मैच को इस अवसर से जोड़कर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे जबकि जापान की कप्तानी कैंडल काडोवाकी फ्लेमिंग के हाथों में होगी। भारत की टीम में संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल है। जापान की टीम भी अपने प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। कप्तान काडोवाकी फ्लेमिंग जापान के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके अलावा इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लान सुजुकी की भी टीम का हिस्सा है। भारत के लिए ये मुकाबला एशियाई खेलों से पहले तैयारी का भी मौका है। दोनों टीमें एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में शुरुआत करनी है जबकि जापान को पहला ग्रुप चरण में खेलना होगा। भारतीय टीम ने इस साल T20 विश्व कप भी जीता है और अब एशियाई खेलों की तैयारी उसके सामने है। ऐसे में जापान के खिलाफ ये मुकाबला टीम संयोजन और खिलाड़ियों को मैदान पर समय देने के लिहाज से भी अहम रहेगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 22 सितंबर की सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनेगा। तो भारत और जापान के बीच यह सिर्फ एक T20 मुकाबला नहीं बल्कि जापान में क्रिकेट को एक नई पहचान देने की दिशा में भी एक खास मौका है। अब देखना होगा इस ऐतिहासिक मुकाबले में दोनों टीमें मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है।
0: क्रिकेट के ही अब एक चलते हैं अहम अपडेट पर, जहां राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए दूसरे यूथ ओडीआई में इंडिया अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 102 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर 19 ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 341 रन बनाए। यशवर्धन चौहान ने शानदार 122 रन की पारी खेली जबकि वीके विनीत ने और आयरावीर सहवाग ने रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से थॉमस वैसो ने 3 विकेट लिए। जवाब में

0: ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने 41.1 ओवर में 238 रन पर ऑल आउट हुए। जैक कॉजनैक ने और मैथ्यू लॉ ने उनकी तरफ से रन्स बनाए, जबकि ब्लेक केटल ने भी योगदान दिया। इंडिया के लिए सी वेंकाटा ने 3 विकेट्स लिए। इंडिया ने यह मुकाबला 102 रन से जीता और सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल करी। यशवर्धन चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब चलते हैं शिवांश की ओर, जो लेकर आए हैं हमारे लिए एक और अपडेट।
1: शतरंज की दुनिया से बड़ी खबरें समरकंद से हैं, जहां 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड चल रहा है। पांचवें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज की, जबकि गत चैंपियन भारतीय महिला टीम को पोलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोनों वर्गों के पांचवें दौर के नतीजों और ताजा स्थिति पर एक नजर। सबसे पहले बात भारतीय पुरुष टीम की। पांचवें दौर में भारत ने नेदरलैंड्स को 3-1 से हराया। भारत की जीत में आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने अहम भूमिका निभाई। प्रज्ञानंदा ने नेदरलैंड्स के शीर्ष खिलाड़ी अनीश गिरी को हराया, जबकि गुकेश ने एरविन को मात दी। अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरिन के मुकाबले ड्रॉ रहे। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने पांच दौर में पांच जीत दर्ज कर ली है और उसके खाते में 10 मैच अंक है। भारत के साथ जर्मनी और उज्बेकिस्तान भी 10-10 अंकों के साथ शीर्ष पर है। पांचवें दौर में जर्मनी ने अमेरिका को 2.5 और 1.5 से हराया, जबकि उज्बेकिस्तान ने हंगरी को 4-0 से मात दी। अब बात महिला वर्ग की। गत चैंपियन भारतीय महिला टीम को पांचवें दौर में पोलैंड के हाथों 1.5 और 2.5 से हार मिली। पहली बोर्ड पर कोनेरू हम्पी और ओलिविया की बाजी ड्रॉ रही। दूसरी बोर्ड पर वैशाली रमेश बाबू को अलेक्जेंड्रा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बोर्ड पर दिव्या देशमुख और क्लॉडिया की बाजी ड्रॉ रही, जबकि चौथी बोर्ड पर वंतिका अग्रवाल और मोनिका सोको के बीच मुकाबला भी बराबरी पर खत्म हुआ। इस तरह भारत को एक हार और 3 ड्रॉ के साथ 1.5 अंक मिले और पोलैंड ने 2.5 अंक हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पांचवें दौर के बाद भारतीय महिला टीम के खाते में 8 मैच अंक है। इससे पहले टीम ने लगातार 4 मुकाबले जीते थे, इसलिए ये टूर्नामेंट में उसकी पहली हार रही। महिला टीम में सविता श्री भी शामिल है। उन्होंने शुरुआती 4 दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों बाजियां जीती थी। पांचवें दौर में उनकी जगह वंतिका अग्रवाल को उतारा गया। अब छठे दौर में भारतीय पुरुष टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए उतरेगी, जबकि महिला टीम भी पोलैंड के खिलाफ मिली हार से वापसी की कोशिश करेगी। महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कुल 11 दौर खेले जाने हैं। 5 दौर पूरे हो चुके हैं और अब प्रतियोगिता अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। तो पांचवें दौर के बाद भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 जीत के साथ शीर्ष समूह में बनी हुई है, जबकि महिला टीम को पहली हार के बाद अब अगले दौर में वापसी का मौका मिलेगा। समरकंद में शतरंज की यह बाजी अभी बाकी है और आने वाले दौर बेहद अहम रहने वाले हैं। फुटबॉल में नॉकआउट मुकाबलों का रोमांच कुछ अलग ही होता है। एक तरफ जीत की खुशी और दूसरी तरफ अगले मुकाबले की चुनौती। 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 बॉयज वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले पूरे हो चुके हैं और अब 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। आइए जानते हैं क्वार्टर फाइनल के नतीजे और सेमीफाइनल में किन टीमों की भिड़ंत होगी। 21 सितंबर को खेले गए चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में रोमांच देखने को मिला। पहले क्वार्टर फाइनल में CBSE और असम आमने सामने थे। निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में असम ने 3-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे क्वार्टर फाइनल में CISCE ने चंडीगढ़ को 8-1 से हराया। CISCE ने शानदार आक्रामक खेल दिखाते हुए बड़ी जीत के साथ अंतिम 4 में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में केरल ने मणिपुर को 3-1 से मात दी, जबकि चौथे मुकाबले में आर्मी बॉयज कॉर्प्स ने पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इस तरह अंडर 17 बॉयज वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में अब असम का सामना CISCE से, जबकि केरल की भिड़ंत आर्मी बॉयज कॉर्प्स से होगी। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 22 सितंबर को सुबह 7:30 से खेले जाएंगे। असम और CISCE के बीच मुकाबला सुब्रतो पार्क फुटबॉल ग्राउंड पर होगा, जबकि केरल और आर्मी बॉयज कॉर्प्स के बीच मैच पिंटो पार्क फुटबॉल ग्राउंड पालम में खेला जाएगा। तो अब सुब्रतो कप के अंडर 17 बॉयज वर्ग में मुकाबला अंतिम 4 तक पहुंच चुका है। असम, CISCE, केरल और आर्मी बॉयज कॉर्प्स की निगाहें अब फाइनल में जगह बनाने पर होगी। देखना दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल की इन दो भिड़ंतों के बाद खिताबी मुकाबले में कौन सी दो टीमें आमने सामने आती हैं। तो श्रोताओं, एशियन खेलों में

0: खास तौर से आज की हम बात करते हैं तो आज भारतीय कंटेंजेंट ने हमें 3 मेडल्स अभी तक लाकर दिए हैं, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और 1 हमारा रहा ब्रॉन्ज। 2 सिल्वर जो खास तौर से आए वो थे शूटिंग के अंदर, जिसमें टीनेजर हिमांशु ढिल्लो वन द सिल्वर एंड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल क्लेम्ड द ब्रॉन्ज इन द मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट। देयर पोडियम फिनिशेस केम बेयरली एन आवर आफ्टर द डुओ अलॉन्ग विद पार्थ मानी who had helped India win silver in the team event. यानी 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आज हमारे लिए शूटिंग कंटेंजेंट लेकर आया। लेकिन उसके साथ साथ सबसे अच्छी खबर जो आई थी वो ये थी कि आज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल, she got India the bronze in the women's traditional 60 kilogram MMA event, जिसके अंदर ऐसा पहली बार हुआ। And it's a proud moment for us because this was the country's first ever Asian Games medal in this discipline, which is making, especially for a girl, who made India proud. Now, a moment to shine. कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पल था जो वो काफी भावुक हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से निर्णय लिया गया और इस कंक्लूजन पर आया गया कि भारत को ब्रॉन्ज मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है किसी भी खिलाड़ी, किसी भी प्लेयर के लिए। लेकिन अंत में वो हमारे देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, जो अपने आप में काबिले तारीफ बात है। एंड दैट इन इट सेल्फ कॉल्स फॉर अप्लॉड। अगर बात करें कि आज वो इतनी भावुक क्यों हो गई थी, जो हमने देखा उनको होते हुए, वो इस वजह से था कि जब मैच में अवार्ड किया गया था सिंगापुर फाइटर को, तो इंडियन कैंप ने प्रोटेस्ट किया था और इवेंचुअली उस मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था। तो हुआ क्या उसके बाद कि इन केसेस इन सिनेरियोज में जहां पर एक इवेंट को ड्रॉ की तरह से घोषित कर दिया जाता है, उसमें रूल ये कहता है कि जो भी खिलाड़ी का वजन कम होगा उसके नाम मेडल चला जाएगा। यानी हुएवर इज लाइटर इन वेट विल बी गिवन द मेडल। हमारे केस में ये चीज वर्क क्यों नहीं करी, यानी सुचिका के केस में, क्योंकि सुचिका का जो वजन उस वक्त लिया गया वो था 700 ग्राम ज्यादा उनके सिंगापुर के अपोनेंट से, और उसकी वजह से सुचिका तारियाल को आज ब्रॉन्ज के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ी। कहानी कुछ और हो सकती थी, इससे भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि भारत को इस कैटेगरी, इस इवेंट के अंदर एक ब्रॉन्ज पदक दिया गया है। द बिग न्यूज, द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे वाज ऑल ऑफ दिस इन द रैप टुडे।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़ने के लिए।
2: जी हाँ श्रोताओं, अब आपके लिए जिमनास्टिक्स की ओर से भी एक शानदार अपडेट है कि इजिप्ट में आयोजित फारवास कप 2026 में इंडिया की करिश्मा राजपूत ने वुमेन्स आर्टिस्टिक जिमनास्टिक के फ्लोर एक्सरसाइज फाइनल में 12.066 पॉइंट हासिल करते हुए सिल्वर मेडल यानी रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही फारवास कप 2026 में भारत का अभियान 3 पदकों पर समाप्त हुआ है, जिसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।
1: तो घड़ी का इशारा आ रहा है कि अब हम दोनों को आपसे लेना पड़ेगा इजाजत। चलते चलते आपको बता दें, हमारे प्रोड्यूसर है शाहनवाज खान। तो इसी के साथ मुझे यानी शिवांश
2: और मुझे विदुषी वत्स को
1: दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में

2 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और फ्रीक्वेंसी है 819 किलोहर्ट्स। समय है 6:10 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अब आप सुनेंगे संस्कृत सौरभम वार्ता गीता में भक्ति योग। वार्ताकार डॉक्टर ए सुधा देवी आचार्य आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम, वार्ता गीता में भक्ति योग। वार्ताकार डॉक्टर ए सुधा देवी, आचार्य आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ, और अब घड़ी में समाचार का समय होने जा रहा है। 6:20 होने को है। लीजिए सुनते हैं अब संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ता। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते इति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संसूचितवान्। केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूची मान्यतां ददति इत्येतत् भारतस्य स्वावलंबनस्य महत्वपूर्णा यात्रा प्रदर्शयति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणं प्रकाशितवती। भाजपेति दलेन उक्तं यत् कांग्रेस दलं साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः अस्ति। सहैव पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तस्य वक्तव्यस्य निन्दा कृता। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्च

0: स्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रसिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति, अपि च जापान देशस्य इचिनोमिया नगरपालिका व्यायामशालायां अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्राग उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातः शुल्क मुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। असौ उक्तवान् यत् एषा रणनीतिक सहमतिः उभयोः देशयोः मध्ये सहकारम् अधिकं सुदृढीकर्तुं विद्यमानानां प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति, अपि च आगामी 4-5 वर्षेषु वस्तूनां सेवासु च द्विपक्षीय व्यापारस्य मूल्यं प्रायः 35,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः मुक्त व्यापार संधेः प्रवर्तनेन एतत् लक्ष्यं सुदृढार्थिक परिणामेषु परिवर्तितं भविष्यति।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैंड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता अस्ति।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: अयं संधि भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्य वस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलंबनस्य महत्वपूर्णं उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,00,000 प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000,000 वर्षे 23,000,000 आसीत्, यत् स्थानं 25,000,000 वर्षे

0: विवर्ध्य अष्टमं जातम्।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारी वर्यः 21-20-2000 वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरूवर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्रीत्रिवेदीवर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेसदलं वाममतानुपथे गतम्, साम्यवादविचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेसदलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेशमंत्री अस्य मासस्य 26 दिनांके संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें उच्चस्तरीय सत्रं संबोधयिष्यति। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर विविधेषु बहुपक्षीयेषु द्विपक्षीयेषु च उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं यूनाइटेड रशिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन प्रकाशित प्रारंभिक परिणामानुसारेण अनेन दलेन प्रायः 15.75% मतानि प्राप्तानि, यदा तु मतदान प्रतिशतम् आहत्य 66.55% आसीत्। अंतिम परिणाम सितंबर मासस्य 25 दिनांके यावत् आगमिष्यति इति संभाव्यते। पूर्वस्मिन् निर्वाचने यूनाइटेड रशिया दलेन 24-300 आसनानि विजितानि आसन्। यूक्रेन देशेन सह प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तथा कीव पक्षतः रात्रौ कृतस्य बृहद् ड्रोन आक्रमणस्य मध्ये एतद् निर्वाचनम् अभवत्। रूस देशस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अस्मिन् आक्रमणे 19 ड्रोन विमानाः सम्मिलिताः आसन्। आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्, अथ च एकस्य तैलशोधनालयस्य क्षतिः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकल तेलंगाना चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। जापान देशस्य इची नोमिया नगरपालिका व्यायामशालायां अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 6:30 और ये समय है कार्यक्रम ग्राम संसार का, जिसे लेकर आपके साथ हैं वंदना और शाहिद परवेज़।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम। वंदना बहन,
0: जी साहिद भाई।
1: आज देखिए एक बड़ा ख़ास दिन है। दुनिया जिस शांति की बात करती है, जिस व्यवस्था की बात करती है।

0: और ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि विकास वो है जो शांति की तरफ ले जाए, तो
1: बिल्कुल
0: उस शांति को समर्पित है एक दिन जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस।
1: जी बिल्कुल। और ये हर साल 21 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व भर के जो देश हैं और उनके नागरिक हैं उनके बीच शांति, सद्भावना और अहिंसा की भावना को बढ़ाना और बढ़ावा देना है। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न तरह के युद्धों से, आतंकवाद से और आपसी तनाव से जूझ रही है
0: जी
1: शाहिद
0: हाँ,
1: भाई, तो इस दिन की अधिकता और बढ़ जाती है
0: इसकी
1: कि
0: महत्ता वाकई बढ़ जाती है।
1: जी
0: और
1: कि
0: बड़ी
1: हम
0: चीज़ ये है कि वाकई दुनिया चांद पे जा रही है, मंगल की यात्रा कर रही, बहुत तरह की जो है कि तलाश और खोज जारी है,
1: जी बिल्कुल
0: इसीलिए कि हम ऐसी तरक्की पा जाएं कि एक शांति ना, भूतपूर्व शांति मिले।
1: बिल्कुल
0: लेकिन वास्तव में जिस शांति की तलाश हो रही है वो हमें आपस में खोजना होगा।
1: बिल्कुल। और कहते हैं इसका इतिहास एक अलग ही है कि जब ये इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में की गई थी।
0: हाँ, ये शुरुआत की गई थी कि दुनिया में, चूंकि उसके पहले ना प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके
1: जी
0: थे
1: हाँ
0: और कई चीज़ें, कई तरह की लड़ाइयाँ झेलने के बाद ये संकल्प लिया गया कि अधिक से अधिक शांति स्थापित की जाए और कम से कम मानव स्तर पे जो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, कई तरह की जो है द्वंद्व होते हैं, उनसे जो है ना मुक्ति पाई जाए। और ख़ास तौर से ये जो शांति का संकल्प है इसको बार बार दोहराया जाए।
1: बिल्कुल। और पहली बार इसको 1982 में मनाया गया और शुरुआत में इसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं थी। इसको सितंबर के तीसरे सप्ताह में मनाने का
0: हाँ,
1: ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में ये तारीख
0: इसकी
1: निश्चित
0: एक
1: कर
0: और
1: दिया। जी
0: खासियत है मतलब बहन कि इस दिवस में ना, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिस दिन आता है ना, दुनिया के किसी भी हिस्से में कैसी भी लड़ाई चल रही हो, उस दिन 24 घंटे के लिए सीज
1: बिल्कुल।
0: फायर करना पड़ता है, विराम देना पड़ता है,
1: और
0: ये इसकी एक बड़ी महत्ता है।
1: जी बिल्कुल और 12 बजे 1 मिनट का मौन भी रखा जाता है। और इस दिन जो इस साल की थीम है वो है शांति में निवेश करें, हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि शांति का कोई रास्ता नहीं होता,
0: हाँ,
1: शांति स्वयं ही एक रास्ता होती है।
0: वाकई शांति एक ऐसा पथ है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को, जिसके ज़रिए से सारी मंजिलों की तलाश कर लेते हैं, बस
1: जी
0: उस पे सच्ची नियत और निष्ठा से आपको चलते रहना होगा।
1: बिल्कुल। तो हमारा भी यही संकल्प है और हमारे भाइयों से भी यही उम्मीद है कि वो भी शांति की तरफ बढ़ेंगे, अपने गांव, मोहल्ले, गली। जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे ना शाहिद भाई, तभी पूरा समाज शांति की ओर
0: जी
1: बढ़ेगा।
0: हाँ,
1: तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी भी है हमारे पास हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और जो हमारे युवा साथी हैं किसान भाई,
0: जी
1: उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है कि वो किस तरह से नई तकनीक को अपनाकर अपने खेतों में जान डाल सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कीटों से, पतंगों से इनसे बचा सकते हैं और कम लागत लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते
0: ये
1: हैं।
0: बहुत बड़ी बात है कि
1: जी
0: कम लागत में ना अधिक उत्पादन करेंगे, लाभ कमाएंगे, और बड़ी चीज़ यह है कि इसमें तकनीक का समावेश होगा।
1: जी बिल्कुल। तो
0: ठीक है, तो
1: जानकारी
0: आइए
1: का
0: अब
1: विषय
0: ये
1: है हमारा।
0: जानकारी हम देते हैं ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन सेवा उद्यम। ये जानकारी डॉक्टर शंकर गोयनका दे रहे हैं, जो कि प्रबंध निदेशक ड्रोन फरीदा से हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं PS भाटी।
1: जी तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान बहनों भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने में जो नई नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं उसकी अहम भूमिका है। जैसा कि आप देखते हैं, करते भी हैं, कटाई से लेकर बुआई तक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब खेत में चाहे सब्जी की तुड़ाई की बात हो, चाहे आलू निकालने की बात हो, चाहे बुआई की बात हो, सब मशीनों से किया जा रहा है और उससे किसान को भी आसानी हो रही है और पैसा भी बच रहा है और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। हमारे देश में नई तकनीक आई है ड्रोन, जिसका खेती में बहुत बड़ा योगदान है। किसान किस तरह का योगदान है, किस तरह की समय बचत होगी, किस तरह की लागत कम होगी। आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार सर।
2: डॉक्टर शंकर गोयनका जी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ड्रोन के भी ये विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले हमने विदेशों में सुनते थे कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव होता है, ये होता है, वो होता है, तो आज हमारे भारत में जो सपना साकार हुआ है, इसका हमारे किसान भाई फायदा कैसे उठा सकते हैं?
3: 2021 का जो समय आया सर, वहां से जितने भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं वो नैनो में लिक्विड के फॉर्म में क्रिएट होने लगे। तो जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है, इसका सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो छिड़कने की है, क्योंकि एक एकड़ में जो कंपनी है वो कहती है 150 से 200 लीटर पानी लगता है। अब 150 से 200 लीटर पानी छिड़कने के लिए 15 से जो 20 लीटर की टंकी है वो करीब 10 से 12 टंकी के साथ में काम होता है। और आप देखते हैं कि सर, जो किसान हाथ से छिड़क रहा है उसका 4-5 साल में राइट का हिस्सा पैरालिटिक हो जाता है, क्योंकि उसका वंग काम नहीं कर लेता। और सबसे बड़ी बात है, जब वो छिड़कता है तो दवाइयां सूंघता है, सूंघने से बीमार होता है। और भारत में 58,000 किसान सांप के काटने से मरते हैं और 4,00,000 लोग दवाई सूंघने से बीमार होते हैं। वहां पर ड्रोन का क्षेत्र आया और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं मोदी साहब ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे लाएं जिससे कि इनपुट कॉस्ट घटे और आउटपुट बढ़े, वहां से ड्रोन का शुरुआत हुआ। और हमने पहली बार 27 अगस्त 2021 में इफ्को फर्टिलाइजर्स के साथ मिलकर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सवाई माधोपुर के अंदर, पहली बार ड्रोन से डेमो करा, जो कि बहुत अच्छा गया। उसके बाद में हमारे जो फर्टिलाइजर मंत्री थे उस समय मनसुख भाई मांडविया जी, उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 में अगेन इफ्को के साथ मिलकर हमने पालीताना भावनगर के पास में हमने ड्रोन का स्प्रे किया, जो बहुत ही सराहा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में मन की बात में इसका जिक्र किया 7 अक्टूबर को। वहां से ड्रोन की यात्रा भारत में शुरू हुई
2: जी।
3: तो ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है सर कि एक एकड़ में छिड़कने के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन में खाली 10 लीटर में एक काम होता है, क्योंकि जब आप हाथ से छिड़कते हैं तो उसकी जो बूंद निकलती है वो 500 माइक्रोन की है, ड्रोन की बूंद जो खाली 50 से 70 माइक्रोन की है जिससे कि वो छिड़काव करता है। तो सबसे पहली बात, पानी बचा। मैं बिहार गया तो वहां का आदमी कहता है जी पानी तो फ्री है, पर 200 लीटर पानी के लिए मशीन चाहिए, साधन चाहिए, आदमी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो पानी बचा। दूसरी बात है, जब आप हाथ से छिड़कते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं एक एकड़ को ढंग से छिड़कने में, ड्रोन वो काम 5 से 8 मिनट में करता है। जितना बड़ा क्रॉप है उसके हिसाब से मिनिमम 5 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम 8 मिनट लगते हैं, तो 5 घंटे का काम 5 मिनट में हुआ। तो पानी बचा, समय बचा, 30% दवाई कम लगती है सर। तो भारत में एवरेज दवाई 2,000 से 25,000 रुपए की है, यदि 2,000 की भी हम दवाई पकड़े तो 600 रुपए पर एकड़ आपकी दवाई बचती है। तो पानी बचा, समय बचा, दवाई बची। तीसरी बात है सर, जब आदमी पैदल से छिड़कता है तो करीब 15 से 18% फसल नष्ट होती है पांव के चलने से, तो बचता है। 8 से 12% प्रोडक्शन ज्यादा आता है, क्योंकि इससे पत्ते पत्ते पर छिड़काव होता है। तो ये सारी बातों का फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात है सर कि मैंने जैसे कहा कि सांप के काटने से, जीव जंतु के काटने से बचता है। भारत में सर यदि एक आदमी बीमार हुआ तो एक नहीं होता, उसका पूरा परिवार बीमार होता है
2: जी।
3: तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सुपरविजन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा, जहां पर कोई भी युवा जो 10वीं पास है
2: जी,
3: वो ड्रोन हमसे ले सकता है। कृषि विमान के अंदर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हम ड्रोन देते हैं और ड्रोन लेने के लिए पैसा देते हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज के ऊपर 6% ब्याज पे उसको पैसा मिलता है।
2: अच्छा।
3: और वो अपने गांव में जाकर हम उसको काम भी देते हैं, तो वो कृषि विमान ड्रोन ले लेकर अपने गांव में जाए, हम उसको 8,00,000 से 12,00,000 का काम देते हैं ताकि वो अपने गांव में रहकर अपना जीवन सुखी से व्यापन कर सके।
2: यानी कि एक तरह गांव के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है।
3: बहुत बड़ा अवसर है सर। आज मैं कहता हूं कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद में 15 से 25,000 की नौकरी मिलती है। ड्रोन की ट्रेनिंग आप 1 हफ्ते की 15 दिन की कंपनी में ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में 1-2 महीने आप ग्राउंड पे काम करिए। जैसे आप ग्राउंड में काम करके आपका हाथ साफ होगा, आपको पहले दिन से 15-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। हमारे कुछ कुछ लोग तो महीने के 80-80 हजार रुपए कमा रहे हैं
2: जी।
3: तो मेरा सभी युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं कि आप आइए, इस मिशन से जुड़िए। सर, मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहता हूं कि इस समय लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, मैं कहता हूं लोग ही नहीं है। आजकल कोई काम के लिए आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, हरियाणा में इस साल 28% फसल नष्ट हुई क्योंकि छिड़काव टाइम पे नहीं हुआ। जैसे लोग से ट्रैक्टर लेते हैं तो क्या करते हैं, अपना खेत जोतते हैं और बाकी दूसरों का भी खेत जोतते हैं। तो ड्रोन ऐसे ही टेक्नोलॉजी है, आइए इसको सीखने के बाद में, और ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में क्रांति के रूप में काम कर रहा है। और भारत में सर इतना बड़ा खेती क्षेत्र है, आज भी 70% लोग जो है खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है ये गांव देहात के लिए, शहर के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा और लोगों को लाभान्वित करेगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर गोविंदकार जी आपने सही

0: का, अब मैं देखता हूँ कि बागों में छिड़काव करना है, कोई बीमारी या कीट आ गए हैं तो उसके लिए छिड़कना तो बहुत मुश्किल है, तो ड्रोन से तो पूरे बाग को छिड़काव आसानी से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सर, जितने भी बड़े क्रॉप हैं, कोई भी क्रॉप हो जो 4 फुट से ऊंची हो, उसको ड्रोन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं कि छिड़का जाए। तो इस साल हमने मलियाबाद में किया, हमने सहारनपुर में किया, मुजफ्फरनगर में किया, इधर हापुड़ में किया, उधर हैदराबाद में किया, फिर भारत में जो सबसे लंबा पेड़ होता है कर्नाटक में, सुपारी का होता है
0: जी,
1: अराकनट बोलते जिसे बोलते हैं वहां पर, वहां की भाषा में, जो कि 60-65 फुट का पेड़ होता है, उसके ऊपर भी किया। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप खड़े हैं वहां से 1.5 किलोमीटर दूर तक आप छिड़क सकते हैं, और ऊपर में करीब 65 मीटर यानी 200 फुट की हाइट तक आप ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। भारत में लंबे से लंबा पेड़ 60 से 70 फुट का है जिसको आप ड्रोन से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक बात और जो मैंने सीखी है सर गांव में सब जगह जाकर, कि 30% दवाई जब आदमी बीज डालता है उसके साथ चाहिए, जिसे बॉटम ड्रेसिंग बोलते हैं, और 70% दवाई जो है वो पौधों को ऊपर से यदि आप छिड़केंगे तो उसके साथ में इसका अच्छा बनेगा और उसकी फसल बेटर आएगी और उसका आउटपुट भी अच्छा होगा। क्योंकि ये क्या होता है, ड्रोन से जब छिड़कते हैं तो ऊपर से पत्तों में छिड़कते हैं, तो जब पत्तों में छिड़केगा तो पत्ता एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पत्ते के पेट में दवाई जमा हो जाएगी, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस करके स्टोमेटा में जमा हो जाएगी, और जैसे जैसे पौधे को लगेगी वैसे वैसे जो है उसको खाद मिलेगा और पौधे का हेल्थ बेटर होगा, हेल्थ बेटर होगा तो उसका प्रोडक्शन बेटर होगा।
0: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने जिक्र किया था युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, तो कुछ युवा जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो ट्रेनिंग में कोई पैसा देना पड़ता है या कितने दिन की ट्रेनिंग है, विस्तार से थोड़ा बताएं।
1: जब आप ड्रोन लेते हैं तो ड्रोन की कॉस्ट में ही आपका ट्रेनिंग का पैसा है।
0: अच्छा,
1: तो आपको ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसा नहीं देना है, और ड्रोन भी जो हम दे रहे हैं आपको बहुत उचित मूल्य पे दे रहे हैं। ड्रोन देना कोई खास बात नहीं है सर, मेन बात तो है कि आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए 10वीं पास जरूरी है। आपने पहले लाइसेंस लिया, जिसकी ट्रेनिंग 5 दिन की है, 5 दिन की हम उनको और एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसको कि हम प्रो पायलट ट्रेनिंग बोलते हैं या OEM ट्रेनिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग बोलते हैं, ताकि उसको कैसे पार्ट को जोड़ना है, तोड़ना है, रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, ताकि वो हम पे डिपेंड नहीं रहे और वहां पर अपने गांव में जाके सुरक्षित तरीके से काम करे। तो उसको ड्रोन देना, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसका रिपेयर मेंटेनेंस सिखाना, उसके स्पेयर पार्ट देना, और वो युवा अपने यहाँ पे काम कर सकता है और अपना रोजगार बहुत अच्छे से कमा के अपने माँ बाप के साथ रह सकता है।
0: डॉक्टर गोविंदा जी, हमारा देश कई परिस्थितियों में है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग दशा है, कहीं पहाड़ी है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, उन लोगों के लिए ड्रोन की क्या उपयोगिता रहेगी?
1: ड्रोन की सबसे खास बात क्या है कि जब भी ड्रोन खेत में जाता है तो पायलट क्या करता है, एक मैप खोलता है उसके अंदर, और वो बता देता है साहब ये मेरा खेत है, तो उसके ऊपर वो निशान लगा देता है।
0: अच्छा,
1: फोन के ऊपर। तो जब वो निशान लगा देता है तो वो जो ड्रोन है वो उसको वैसे ही प्रोग्राम कर लेता है, और उसके अंदर क्या सेंसर लगे हुए हैं, समझो आपने 3 फुट की क्रॉप है और ये 3 फुट ऊपर से छिड़कता है, तो जब ड्रोन चलता है तो क्रॉप यदि 4 फुट की होगी तो 7 फुट पे चला जाएगा, क्रॉप 5 फुट की होगी तो 8 फुट पे चला जाएगा,
0: ऑटोमेटिकली
1: जाएगा। दूसरी बात क्या है कि समझो आप छिड़काव कर रहे हो और पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे स्टेप फार्मिंग है, तो ये क्या करेगा, छिड़काव करेगा, रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर छिड़काव करेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे से छिड़काव करेगा, तो ये क्या करता है कि जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको वो मैप करता है, स्कैन करता है, और वो AI के माध्यम से अंदर डाल लेता है, और फिर वो यदि ऊंचा है तो ऊपर जाएगा, नीचा है तो नीचे आएगा, और समान तरीके से पत्ते पत्ते पर छिड़काव करता है, और यही कृषि विमान की खास बात है।
0: और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे खेत की जोत लगातार घटती जा रही है, छोटी छोटी खेत हैं लोगों पे।
1: जी सर।
0: तो ड्रोन तो एकदम जोर से चलता है, तो उनके लिए किस तरह प्रयोग में आ सकता है?
1: इसकी यही विशेषता है सर कि वो क्या करेगा, चाहे आपका खेत 1 बीघे का हो चाहे 5 एकड़ का हो, वो क्या करेगा, जब आपके पास मोबाइल आता है तो आप देखकर बताते हैं कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, यदि 1 बीघे में रहा तो 1 बीघे में छिड़काव करेगा, 2 एकड़ में रहा तो 2 एकड़ में छिड़काव करेगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने की वजह से, कई लोग शुरू में कहते हैं साहब मेरा खेत छोड़ के मेड़ है, उसके बाद में बाजू वाले के खेत में दवाई चले जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस भ्रांति पे मत जाइए, जो आपका खेत है उसी खेत में छिड़काव करेगा, और आपकी एक बूंद दवाई भी दूसरे के खेत में नहीं जा सकती है, आपकी दवाई आपके ही खेत में छिड़की जाएगी, चाहे वो 1 बीघे का हो चाहे 10 एकड़ का हो।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा हो रही है कि भाई जब हम दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
1: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है।
0: जी।
1: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं, तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर बाल्टी में एक 10 लीटर पानी लेना चाहिए,

0: दवाई डाल देनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से घोलकर उसका जो टैंक है उसमें डाल दीजिए
1: जी,
0: फिर वो ऑटोमेटिक उड़ के ऑटोमेटिक तरीके से छिड़काव करके आ जाएगा।
1: मतलब जितने इसको दवा डालनी है वो 10-12 लीटर का जो टैंक है
0: हाँ,
1: उसके हिसाब से वो एक एकड़ के लिए है।
0: 10 लीटर पानी से ज्यादा आपको नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब 20 लीटर का दो, 50 लीटर का दो, आपको कोई जरूरत नहीं। खेत के लिए आपको 10 लीटर का टैंक चाहिए जिसके अंदर पानी डले, एक एकड़ के लिए 10 लीटर ही पानी चाहिए, न 11 चाहिए न 9 चाहिए, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है, उसके हिसाब से दवाई अच्छे से मिलाकर घोलकर आप उसके टैंक में डाल दीजिए। कई खेतों में ऐसा भी होता है कि एक के साथ दो तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
1: आखिर में डॉक्टर गोविंदा जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
0: जब भी नई तकनीक आती है दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है। जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था, आज एक साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी के साथ है। मुझे लगता है जो आज की लीडरशिप है जो ड्रोन को लेकर आई, इससे बड़ा विजन नहीं हो सकता। आने वाले समय में भारत में 6,38,000 गांव हैं, हर गांव में 10 ड्रोन चाहिए कम से कम, ताकि एरिया पूरा तरीके से कवर हो। एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका खर्चा घटेगा ना कि आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, समय भी कम लगेगा। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कृषि विमान ड्रोन बनाते हैं
1: जी,
0: और वागो ग्रीन के माध्यम से काम करते हैं, तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आपको जो भी ड्रोन के बारे में भ्रांति है या आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे कृषिविमान.com के जा सकते हैं। सारे YouTube पे हमने वीडियोस लगा रखे हैं। उसके अलावा हम भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर सप्ताह एक क्लास लेते हैं जहां के ऊपर अलग अलग राज्य के लोग जुड़ते हैं और हम उनको ड्रोन के बारे में जानकारी देते हैं।
1: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी भाई खेती में उत्पादन बढ़ाएंगे, और भाई जिसने मोबाइल चलाना सीख लिया वो तो पायलट बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर गोविंदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शायद भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन सेवा उद्यम। डॉक्टर शंकर गोयनका जो प्रबंधन निदेशक ड्रोन फरीदाबाद से हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे PS बाटी, तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारे युवा भाइयों के लिए।
3: जी सही कह रही बंदना बहन, ये बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जो बताया कि इसमें दवाई की खपत कम होती है, समय बचता है, लेबर बचता है, और इस तरीके से बड़ी बचत हो जाती है,
2: और सबसे बड़ी बात रोजगार मिलता है।
3: ये एक बड़ी चीज कही आपने
2: जी। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अपने भाइयों को एक रागिनी पूरनमल की आवाज में, और किस्सा है राजा
3: उतनापात
2: का, जो कि ध्रुव के पिता थे। तो आइए सुनते हैं ये किस्सा।
4: माया ब्रह्म कर्म की

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये किस्सा पूर्णमल की आवाज में। और देखिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में।
1: ना बहन, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है,
0: जी
1: ये हमारे बहनों भाइयों के लिए रोज़गार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ना कारोबार करने के लिए सरकार की बहुत बढ़िया योजना है, जिसमें उनको वित्तीय सहायता दी जाती है।
0: जी
1: और इसमें ये सहायता जो है कि तीन चार तरह से दी जाती है, अलग अलग श्रेणी में कह सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। रेड़ी पटरी वाले हुए हमारे, जो थोड़े से ऊपर दुकान वाले हुए और जिनकी दुकानें हैं उनके लिए, और जो बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, तो मतलब स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते
1: नहीं,
0: हैं,
1: असल
0: इनके लिए
1: इस
0: अलग अलग तरीके से
1: हाँ
0: लोन
1: हाँ
0: दिए
1: हाँ
0: जाएंगे। जो रेड़ी पटरी वाले हैं उनको शिशु लोन दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का, और जो किशोर लोन जो दिया जाता है वो 50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। जैसे दुकान में आप सामान भरना होता है, आपको किसी तरह की बड़ी दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो इस तरह आप लोन ले सकते हैं। और जो तरुण लोन की व्यवस्था है वो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है, और वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक तो है, और उसमें तरुण प्लस भी है एक, जो
1: हाँ
0: कि 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते
1: दरअसल
0: हैं।
1: इसकी इसका जो हाइपोथेसिस है ना, इसकी जो संकल्पना है वो इस तरह से है कि आप जब काम शुरू करते हैं तो छोटे बजट की ज़रूरत होती है, ठीक
0: जी
1: है, कम बजट में आप काम शुरू करें। फिर जब कारोबार शिशु अवस्था में होता है तो थोड़ी रकम दी जाती है, फिर उससे और आगे बढ़ा तो
0: बिल्कुल।
1: किशोर स्तर पे, ऐसा ना समझा जाए कि वो बच्चे के लिए है या किशोर के
0: नहीं
1: लिए।
0: नहीं नहीं
1: ये
0: ये
1: बिजनेस
0: इनके बिजनेस
1: बिजनेस
0: के
1: जैसे जैसे
0: बढ़ता
1: बढ़ता है
0: है।
1: उसके स्तर से, तो किशोर होता है, फिर तरुण हो

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे इंद्रपाल सिंह की आवाज में रागनी, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, प्रस्तुत किया वंदना रानी और शाहिद परवेज ने। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय हो चला है हिंदी में समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव

0: राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपये और बहराखेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपये की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:05, और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसे लेकर आपके साथ हैं वंदना रानी और शाहिद परवेज।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। साहिद भाई, देखिए हमारे जो किसान भाई बहन है अपनी खेती को लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं,
1: बिल्कुल कभी बहुत सजग रहते हैं।
0: बिल्कुल, चाहे अगर बरसात हो जाती है तो उनको चिंता हो जाती है कि हमारी बेल वाली सब्जियां गल जाएंगी, और सर्दियों में बरसात हो जाती है तो ये रहता है गेहूं की फसल अगर कटी खड़ी है तो वो गिर जाएगी,
1: बन्ना बहन बड़ी
0: गर्मियों
1: बात
0: में
1: यह
0: हो
1: है ना कि
0: जाती है तो
1: किसान हो चाहे गोपालक हो, वो अपने पशु की, अपनी खेती की, अपने फसल की ना बच्चे की तरह देखभाल करता है।
0: बिल्कुल, मतलब हर मौसम में उनको चिंता ही लगी रहती
1: जी
0: है कि
1: हाँ
0: बरसात आ गई तो हमारी फसल को क्या
1: भाई,
0: नुकसान
1: ये
0: होगा।
1: परंपरा रही है कि खेत की मेड़ पे बैठ के ना फसल को निहारना सुबह शाम,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये परंपरा रही है और इसको किसान की उपासना कहा जाता है। और ये माना जाता है कि एक किसान अपनी फसल से बातचीत कर रहा है।
0: बिल्कुल, और करता भी है क्योंकि वो सुबह शाम अगर जाता है तो अपने फसल

0: को देखता है उसको देख के खुश होता
1: जी हाँ
0: है, और जब उसकी फसल बाई चांस किसी वजह से बरसात में या किसी वजह से खराब हो जाती है, उससे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हमारे जो भाई हैं अपने जल को संचय कर लें, या तो संचय कर लें अगर वो पानी ज्यादा भर गया,
1: हाँ आप सिंचाई की बात कर रही हैं
0: बिल्कुल, क्योंकि उसे अगर इकट्ठा कर लेंगे तो बाद में काम आ जाएगा।
1: जी।
0: और सिंचाई योजना के माध्यम से अगर हम उतनी ही सिंचाई करें जितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्यूबवेल चला के सो जाते हैं और पानी भर जाता है,
1: हाँ मतलब है ना
0: ये बहुत
1: उसमें
0: गलत
1: उसमें
0: है।
1: नहीं, एक तो पानी जो है ना जो जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं अति दोहन हुआ, दूसरे बड़ा नुकसान ये होता है कि मिट्टी में जो खाद पानी हमने दिया है वो रिस्क के पताल में चला जाता है।
0: बिल्कुल, और ये जब वो पानी बेकार हो जाता है, खेती की भी फसल में भी पानी भर जाता है और फसल भी बेकार हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है पानी ज्यादा भर जाता है।
1: इसलिए वही करना चाहिए जो कि कहा जाता है जितनी ज़रूरत है मिट्टी में जो है कि केमिकल की खाद और इस तरह के
0: पानी
1: तत्वों
0: की
1: की
0: बिल्कुल
1: उतना ही दीजिए और पानी भी उतना ही दीजिए कि वो जड़ों तक जाए।
0: बिल्कुल, और देखिए जो हमारी ये है प्रति बूंद अधिक लाभ या अधिक फसल, तो
1: हाँ
0: ये बहुत बढ़िया योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की। इस योजना का हमारे किसान भाई अगर लाभ उठाएं तो उतना ही पानी हमारी फसलों को लगेगा जितनी उसको जरूरत है, ड्रोन
1: हाँ
0: के माध्यम से या टपक
1: स्प्रिंकल
0: सिंचाई के
1: है, टपक
0: माध्यम। जी
1: विधि है
0: बिल्कुल
1: ना, स्प्रिंकल विधि है, तो इस तरह से इसमें जो है कि कम से कम पानी की खपत होती है और अधिक से अधिक सिंचाई होती है। और बड़ी खासियत इसकी यह है वंदना बहन कि इसमें एक तो 40% तक करीब करीब बचत हो जाती है पानी की, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरकार सहायता देती है।
0: बिल्कुल सब्सिडी देती है, और इस योजना के तहत जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको सूक्ष्म सिंचाई यंत्र लगाने के लिए 55% तक और अन्य किसानों को 45% तक अनुदान राशि दी
1: ये
0: जाती है।
1: बड़ी बात है, बड़ी
0: जी
1: मदद है।
0: बिल्कुल, तो इसलिए जल की बचत करें और अपने खेतों को हरा भरा बनाएं। और आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवाते हैं, जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकर, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: हमारे किसान भाई और बहन जब भी कृषि के बारे में बात करते हैं तो सभी आपस में यही बात करते हैं कि इस समय उन्होंने अपने खेतों में क्या लगाया हुआ है। और कुछ भाई जब एक दूसरे को कहते हैं वाह भाई तू तो बड़ा स्मार्ट है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन किसान भाइयों ने जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाया है। ये क्या है इसके बारे में हम इस बातचीत में जानेंगे। आज की जो बातचीत का विषय है वो रखा है जलवायु स्मार्ट कृषि, बदलती जलवायु के अनुरूप कैसे बनाएं सक्षम। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रशंसा वर्मा को, जो रिसर्च स्कॉलर हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: थैंक यू मैम।
2: जब हम बात करते हैं जलवायु की या जलवायु परिवर्तन की, तो जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो कैसे समझे कि जलवायु और जलवायु परिवर्तन में क्या फर्क है?
3: हम सब पिछले कुछ वर्षों से महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी समय पे बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, कभी अचानक तेज वर्षा हो जाती है, कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, और कभी फसल के पकने के समय बेमौसम वर्षा हो जाती है। यही बदलता हुआ मौसम और लंबे समय में होने वाले परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है, क्योंकि खेती प्राकृतिक परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
2: आपने अभी बात की कि जब हमारा जलवायु परिवर्तन होता है या तापमान बदलता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ता है, तो ये प्रभाव हमारी कृषि पर कैसे पड़ता है ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे।
3: जी, तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, लंबे समय तक गर्मी होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना और कभी कभी ओलावृष्टि जैसी घटनाएं फसल की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ रही है। कुछ परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर परिस्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। जब अधिक तापमान, अनियमित वर्षा और बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ प्रभाव डालते हैं तो फसल की प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम सोयाबीन को ही ले लें। मध्य भारत में विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है
2: जी।
3: यदि फूल आने और फली बनने की अवस्था के आसपास तापमान बढ़ जाता है तो फसल की वृद्धि और दाना बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार बुवाई का समय बदलने से पौधे की ऊंचाई, फैलाव और दाने के वजन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
2: जो हमारे किसान भाई उत्पादन लेना चाहते हैं, क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है?
3: जी, इसलिए आजकल आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं है, बल्कि ऐसी कृषि पद्धति की है जो बदलती जलवायु के बीच भी उत्पादन बनाए रख सकते हैं, जोखिम कम कर सके और पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों का भी सही उपयोग कर सके।
2: जी, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें ये तो पता चल गया है कि जलवायु स्मार्ट कृषि किसको कहते हैं, लेकिन जब जलवायु स्मार्ट कृषि की बात आती है और हम ये भी बात करते हैं कि हमें फसलें भी उतनी ही चाहिए, उसी मात्रा में हमें उत्पादन भी चाहिए, तो क्या हमें जो किस्में हैं वो हमें चेंज करनी होगी डॉक्टर साहब?
3: जलवायु स्मार्ट कृषि के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखना या बढ़ाना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति खेती को अधिक सक्षम और सहनशील बनाना। और तीसरा है कृषि से होने वाली हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
2: जी,
3: इसके लिए हम कुछ सरल और व्यवहारिक उपाय अपना सकते हैं
2: जी।
3: जैसे कि पहला उपाय है, बुवाई के समय में हम बदलाव कर सकते हैं। बदलती जलवायु में बुवाई का समय सही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर बुवाई का समय थोड़ा आगे या पीछे किया जा सके तो फसल को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक वर्षा जैसी परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि गेहूं में स्थानीय परिस्थितियों और कृषि सलाह के अनुसार समय पर या कुछ परिस्थितियों में अपेक्षित जल्दी बुवाई करने से फसल को पकने के समय आने वाली अधिक गर्मी से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार धान में भी स्थानीय मौसम और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर रोपाई का समय निर्धारित किया जा सकता है
2: जी। ये तो आपने हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें समय समय पर अलग अलग जलवायु परिवर्तन की स्थितियां देखनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे किसान भाई है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
3: हम उपयुक्त और सहनशील किस्मों का चयन भी कर सकते हैं
2: जी।
3: जैसे कि किसान ऐसी किस्मों का चयन करे जो स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर सके, जैसे सूखा, अधिक तापमान या कम अवधि जैसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन जलवायु जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके केवल अधिक उत्पादन देने वाली किस्म ही नहीं बल्कि बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन देने वाली किस्म भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हरियाणा के किसान भाई गेहूं की किस्में जैसे कि HD 3046, WH 1270 का प्रयोग कर सकते हैं, और मध्य भारत के किसान भाई पूसा तेजस या पूसा अनमोल जैसे किस्मों को भी उगा सकते हैं।
2: जब हम बदलती जलवायु की बात करते हैं तो जब हम किसान भाइयों को सलाह दें कि वो अपना जो खेत है उसकी कैसे पहले तैयारी करें, या उनकी तैयारी करने से पहले उनको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल का आधार है। मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ बनाए रखना, संतुलित उर्वरक का उपयोग करना, अनावश्यक जुताई को कम करना और फसल अवशेषों को जलाने से बचाना बहुत जरूरी है। फसल अवशेषों को खेत में उचित तरीके से मिलाने या उनका उपयोग करने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और नमी संरक्षण में सहायता मिलती है। हमें ये समझना होगा कि मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी कृषि व्यवस्था की नींव है।
2: अगर हमने अपने सहनशील किस्में लगाई हैं लेकिन उसके बाद भी जलवायु परिवर्तन ने उनके अनुरूप अगर उत्पादन नहीं दिया तो आगे के लिए हम अपने किसानों को कैसे सचेत कर सकते हैं?
3: जी, इसका भी कुछ उपाय हो सकते हैं। जैसे पानी का हम बेहतर प्रबंधन करें। हमारे लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों में से एक है। जहां संभव हो वहां हम बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, खेत में मेड़बंदी, वर्षा जल का संग्रहण और खेत में नमी बनाए रखने के उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई से लगभग 3-70% पानी की बचत होती है और फव्वारा सिंचाई से लगभग 30-50% पानी की बचत होती है। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के लिए खारा पानी उपलब्ध है तो टपकन या बूंद बूंद सिंचाई सबसे उत्तम और प्रभावी माना जा सकता है, और अगर उनकी भूमि असमतल होती है तो सबसे उपयुक्त सिंचाई फव्वारा सिंचाई को मानते हैं
2: जी। हमारे किसान भाई बहुत ही स्मार्ट होते चले जाएंगे यदि वो जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, कि जैसे कि हमने जो किस्में लगाई हैं और हर क्षेत्र की अलग अलग किस्में होती हैं, आज मैंने जो किस्म लगाई है क्या उसका बीज बनाकर अगले साल मैं उसी किस्म को लूं, या दोबारा से मुझे उन किस्मों को बाहर से लेना होगा?
3: हम दोनों ही तरीके से चल सकते हैं। और फसल की विविधीकरण, यदि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहता है तो किसी एक मौसम की विपरीत परिस्थितियों से पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए फसल विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दलहनी फसल, तिलहनी फसल और अन्य उपयुक्त फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता और कृषि जोखिम दोनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं के साथ चना जैसी फसल को फसल चक्र में शामिल करना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।
2: जब कृषि अनुसंधान होते हैं तब आप भी ये लोग सोचकर अनुसंधान करते हैं कि जो खेतों में हमारे किसान हैं उनको इन चीजों से क्या फायदा होगा, तो कुछ ऐसी और स्मार्ट कृषि के लिए आप लोगों ने कुछ और चयन किया है तो वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
3: जैसे कि आजकल मौसम की जानकारी का उपयोग भी किसान कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम सलाह के आधार पर किसान बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग तथा कीट और रोग प्रबंधन से जुड़े निर्णय बेहतर तरीके से ले सकता है। मेघदूत, किसान सुविधा और किसान कॉल सेंटर जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551। ये सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। किसान भाई केवल मौसम देखकर ही निर्णय ना लें, बल्कि अपने क्षेत्र के लिए जारी की गई कृषि फसल सलाह को भी ध्यान से देखें।
2: बदलती जलवायु के अनुरूप जब हम सक्षम बनने का प्रयास करते हैं तो ऐसे और कौन कौन से उपाय आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
3: आज वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भविष्य में तापमान, वर्षा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बदलाव होता है तो हमारी फसलें किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगी। इसके लिए कुछ मॉडल्स यूज किया जाता है, जैसे कि डीसेट, क्रॉप ग्रो और एक्वाग्राफ जैसे फसल अनुकरण मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इन मॉडलों में बेसिकली मिट्टी, मौसम, फसल की किस्म और कृषि प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके बाद मॉडल यह अनुमान लगाने में सहायता करता है कि अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में फसल की वृद्धि, उत्पादन और पानी की उत्पादकता कैसे हो सकती है। इसके सबसे बड़ा लाभ ये है कि वैज्ञानिक अलग अलग जलवायु परिस्थितियों और कृषि प्रबंधन विकल्पों का अध्ययन बिना हर परिस्थिति में नया प्रयोग किए कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है और भविष्य की कृषि रणनीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है।
2: कभी भी मौसम बदलता है और उस मौसम के बदलाव के अनुरूप हमारे किसान भाई कार्य करते हैं तो हरेक के मन में एक डर भी रहता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप अनुसंधान करते हैं तो उन अनुसंधान के बल पर उनका वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
3: मैं यही बोलना चाहूंगी, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किसान अकेले जिम्मेदार नहीं है
2: जी।
3: कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, मौसम विभाग और कृषि विस्तार संस्था मिलकर किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के लिए फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएं, मिट्टी की जांच और मौसम आधारित कृषि सलाह जैसी व्यवस्थाएं भी जोखिम कम करने में सहायता करती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या किसी भी वजह से फसल खराब होती है तो किसानों को कुछ प्रतिशत प्रीमियम मिलता है। अगर वह फसल खरीफ सीजन की है तो उसके लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% तक की प्रीमियम प्रोवाइड की जाती है किसानों को
2: जी।
3: लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी खेती को बदलते मौसम के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। सही समय पर बुवाई करें, उपयुक्त किस्मों का चयन करें, पानी का कुशल उपयोग करें, फसल विविधीकरण अपनाएं, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मौसम की वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कृषि निर्णय लें।
2: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान मित्रों को इतनी सटीक और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप जानकारी सुन रहे थे जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा जो कि वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली की, और उनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल।
0: तो ये तो थी जानकारी, और अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं सूबे सिंह कपासिया की आवाज़ में ये उपदेश।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश कुसुम गौर की आवाज में। और देखिए आगे बढ़ते हैं और बता

0: सकते हैं अपनी चुनिंदा मंडियों के कुछ भाव। बाजरा का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो है 2205 रुपये प्रति कुंटल, और धान का जो रेट चल रहा है वो है 4090 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। ये हरियाणा की मंडियों के कुछ भाव हैं। और गेहूं का इस वक्त जो भाव चल रहा है वो 2425 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और प्याज का भाव है कि 6500 गुड़गांव में, और रेवड़ी में है 5500। सेब का भाव है 15000, और रोहतक में है 8000 रुपये प्रति कुंटल, और अनार का भाव है 12000, और हंसी में और गुड़गांव में है 7500 रुपये प्रति कुंटल। और कुछ और हमारे पास भाव आए हुए हैं, रेट हैं हमारे पास। सरसों का जो भाव है हिसार की मंडी में है 7200 रुपये से 7800 रुपये प्रति कुंटल तक, और कपास का जो भाव है वो है 8931 रुपये से 8975 रुपये प्रति कुंटल तक। तो ये तो थे हरियाणा की मंडियों के कुछ चुनिंदा चीज़ों के रेट।
1: जी वंदना बहन, और एक बार फिर से अपने हम बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं जगदीश नागर की आवाज़ में ये
0: उपदेश।
1: उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जगदीश नागर की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया वंदना रानी और शाहिद परवेज ने। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गजल और कवाली का। और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से।
1: हुजूर आपका भी

और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। और लीजिए अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में ये गजल।

0: और इन्हीं चंद लाइनों के साथ कार्यक्रम को मैं विराम दूंगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दीजिए इजाजत कुसुम को अपने साथ, यहीं तक था आपके आपका और हमारा साथ। तो अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 लगभग हो ही चुके हैं। लीजिए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। और दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति

0: निवेदिता, अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश तथा संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 19 सितंबर को इन सातों की नियुक्ति की घोषणा की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के चेयरमैन पद की शपथ ली। परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी प्रवेश साहिब सिंह ने शपथ दिलाई। नगरपालिका ने कहा कि ये अवसर NDMC के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कुशल नागरिक सेवाओं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और नई दिल्ली के विकास पर निरंतर जोर दिया जाएगा। दिल्ली भाजपा ने आज एक प्रदेश संयोजक और 3 प्रदेश सह संयोजक के नामों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार महेंद्र नागपाल राजधानी में पार्टी के संयोजक होंगे। इसके साथ ही मीरा अग्रवाल, कैलाश सांकला और रोशन कंसल को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज जनता दर्शन में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि संवाद के दौरान उन्होंने नागरिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस बुधवार राजधानी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन नामक कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली वासी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण solar.dilli.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर अपना CA नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप सरकार बिना किसी लागत के लगा कर देगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार 78,000 रुपए और दिल्ली सरकार 78,000 रुपए

0: की सहायता देगी।
1: दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं और 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी, जिसमें 78,000 जो रुपीस है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। और हमने भी केंद्र सरकार जितना पैसा दे रही है उतना दिल्ली राज्य की ओर से भी 78,000 हम देंगे।
0: दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक दिल्ली के 2,30,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे एक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत करने का अवसर मिलेगा। रिशु जायसवाल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शकलैन अख्तर।
2: दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि बस डिपो और चार्जिंग ढांचा विकसित किया जा रहा है, ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य साफ सुथरी और ग्रीन क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजधानी में 40 बस डिपो से लगभग 5,088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा 3 और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के दौराला और झुलझुली में भी 2 नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी और वे दिल्ली की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और रेलवे आवासीय कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जल भंडारण और फिल्ट्रेशन टैंकों की व्यापक सफाई तथा अवसंरचना उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। इसमें यमुना को न केवल जीवन देने वाली नदी के रूप में, बल्कि यादों, संस्कृति, इतिहास और कल्पना की एक जीवंत धारा के रूप में भी देखा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने आज एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोन में 44 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन इलाकों में आज इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसमें गांधीनगर, मंडावली, फजलपुर, न्यू अशोकनगर, ईस्ट विनोद नगर, नारायणा, न्यू मोतीनगर, इंद्रपुरी और शालीमार बाग जैसे इलाके शामिल हैं। निगम ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की तक की जेल और

0: 9890944044 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनके फोकस और अनुशासन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को और पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। उन्होंने भविष्य में इन खिलाड़ियों के लिए और भी जीत की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुचिका तारियाल को महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एमएमए में ये भारत के लिए पहला एशियन गेम्स पदक है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष द्विवेदी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम गीत मालिका का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी है बेहद खूबसूरत गीत के साथ, अलका याग्निक की आवाज़। और इस गीत को लिखा नुसरत पत्र ने और आदेश श्रीवास्तव ने इस गीत को संगीत दिया। आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपको बता दें कि मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना, और रहेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ कुछ मिनटों तक, ढेर सारी खूबसूरत नगमों का आनंद लेंगे। इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है ना। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम इंतजार की बातें कुछ करेंगे। हालांकि इंतजार का नाम सुनते ही ना हमारे दिल में कुछ दुख दुख सी होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है कि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी का इंतजार, किसी व्यक्ति का इंतजार हो या फिर आपकी फेवरेट डिश का, किसी भी चीज़ का इंतजार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की खूबसूरत आवाज के साथ। फिल्म रही आदमी खिलौना है, नदीम श्रवण ने इस गीत को संगीत दिया। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे। गीत मालिका से आप जुड़े हुए हैं, मैं हूँ आपके साथ चेतना।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि इंतज़ार, वाकई में इंतज़ार शब्द जो है ना कहीं तकलीफ देता है सुनने में भी। लेकिन किसी चीज़ का, किसी इंसान का हम इंतज़ार करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि शायद वो आज मिल जाएगा। इंतज़ार भी खूबसूरत लगने लगता है जब उम्मीद ये रहती है कि हाँ, ये उम्मीद पूरी होगी। और किसी ने खूब ही तो लिखा है, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता है जनाब, कभी कभी इंतज़ार होता है एक अच्छी खबर का, एक नई शुरुआत का, या फिर खुद से मिलने का।

जी हाँ, श्रोता, अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ के साथ ये जख्म फिल्म से गीत रहा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल से और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना, आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका। हम सभी सुन रहे हैं और समय रात्रि के 8:19 हो चुके हैं। इंतजार की घड़ियां भले ही लंबी हो पर दीदार का मजा तो कुछ और ही होता है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां भले ही बहुत लंबी हो लेकिन इंतजार तब मुकम्मल हो जाता है जब हम अपने पसंदीदा शख्स के सामने होते हैं या फिर किसी भी वस्तु चीज के, जो तड़प कर मिले इस दिल को तो उस प्यार का मजा ना कुछ और ही होता है। इंतजार भी खूबसूरत होता है, कभी कभी बहुत खराब लगता है लेकिन इंतजार खूबसूरत होता है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना और फिल्म थी ये जुबेदा। अब जुबेदा फिल्म से गीत को सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस खूबसूरत गीत को संगीत दिया था AR रहमान ने। ढलती शाम का मंजर भी कितना सुहाना होता है ना, जब इंतजार में किसी की यादों का कोई ठिकाना सा होता है। वक्त ठहर जाता है उस लम्हे में आकर जहाँ दिल को किसी के लौट के आने का गुमा होता है। हम उसकी यादों में इतना खो जाते हैं कि बस लगता है ये सफ़र कभी खत्म ना हो इंतज़ार का।

कुमार सानू की आवाज़ और साथ में अलका याग्निक, फिल्म रंग से अभी आपने गीत को सुना। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर हैं। जी हाँ, इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं और सुनते हैं मनोरंजक कार्यक्रम। समय आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। श्रोताओं, इंतज़ार की हम बात कर रहे थे तो इंतज़ार तो भाई तब हुआ करता था जब हम गर्मी के मौसम में छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। इंतज़ार उसे कहते हैं जब कागज़ की नाव बनाकर हम बारिश के आने का इंतज़ार करते थे। और इंतज़ार तो वो होता है जब हम घंटों खड़े होकर अपनी पसंदीदा शख्स की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। इंतज़ार हमें सब्र सिखाता है। ये बताता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। इंतज़ार हमें बताता है कि इतनी देर बाद अगर कोई चीज़ मिली है तो भाई वो बहुत अनमोल है, उसे संभाल कर रखना चाहिए।

0: मैंने
1: जी हाँ, दिल का रिश्ता अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दिल का रिश्ता से ही अभी आपने गीत सुना। बेहद खूबसूरत और वाकई में दिल के रिश्ते कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन समय जो है ना, जो घड़ी की सुइयां हैं वो तेज़ी से भाग रही हैं मेरे सामने और कह रही हैं कि भाई अब इस कार्यक्रम से मुझे जाना होगा। लेकिन इंतज़ार आपका थोड़ा सा और रहेगा क्योंकि 11:10 पर मिलूंगी आपसे लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आप ही अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कोई इंसान है या फिर खुशी या फिर कोई एक नया मौका, तो याद रखिए हर इंतज़ार का एक अंत ज़रूर होता है। फिलहाल आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, कुमार सानू की आवाज़ और अलका याग्निक के साथ। अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे आपसे 11:10 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीएनएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। ठीक है, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs

0: पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित

0: 73वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुँच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग

0: मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities.
2: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
1: The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and

0: भारत और न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे MSMEs में रोज़गार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फ़ायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदे के लिए तेज़ी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराओं के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फ़रोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमिर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने शूटिंग में 3 तमगे जीते हैं। बैडमिंटन में मर्दों की टीम बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदा FTA विजयदशमी के मौके पर इस बरस 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इस माहिदे से 100% भारतीय बरामदकारों को न्यूजीलैंड तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि कलीदी शराकत दारी इस तआवुन को मजीद मजबूत करने और सामान और खिदमात के शोबे में बाहमी तजारत को दुगना करके अगले 4 से 5 बरस के दौरान तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के उमंगों से भरे हदफ की मुश्तरका ख्वाहिश को जाहिर करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदे का नाफिजुल अमल होना इस हदफ को एक ठोस इक्तसादी माहसल के तौर पर जाहिर करता है।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: जनाब गोयल ने कहा कि इस माहिदे से भारत के MSMEs, किसानों, दस्तकारों और हैंडलूम के कारीगरों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने FTA के तहत गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी के तौर पर भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: इस माहिदे से भारतीय बरामदकारों के लिए नए मौके खुलेंगे, जिसमें टेक्सटाइल और मलबूसात, लेदर और फुटवियर, इंजीनियरिंग का साजो सामान, अदवियात, ज़राती साजो सामान और डिब्बा बंद गजाई मसनूआत शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ के गोश्त और खाम चमड़े के लिए भारतीय मार्केट तक बहुत ज़्यादा रसाई हासिल होगी। इस माहिदे से खिदमात, सरमायाकारी और पेशे तलबा और नौजवानों की आमदोरफ्त के नए मौके पैदा होंगे, जिसमें भारतीय पेशेवर अफराद और तलबा के लिए आमदोरफ्त के ज़्यादा मौके शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड के तवील अरसे से और करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जिनकी बुनियाद अवाम के अवाम से मजबूत रवाबित, तजारत और सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, खेलकूद, टेक्नोलॉजी और दीगर कई शोबों में वसी तर तआवुन पर कायम है। आज़ाद तजारती माहिदा इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है और इससे दोनों मुल्कों में कारोबारी अफराद और मुआशरे के लिए नए मौके पैदा होंगे। भारत और कनाडा ने जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदे के लिए तेज़ी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि बाहमी ताल्लुकात में अगले 90 दिन एक अहम दौरानिया साबित होंगे। जनाब गोयल ने बताया कि मुजवजा तजारती माहिदे के सिलसिले में कनाडा के उनके हम मनसब के साथ चौथे दौर के मुजाकरात पिछले हफ्ते मुंबई में हुए थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने मुजाकरात रफ्तार को तेज करने से इत्तफाक किया था। लिंड से ओग्राहम रूस और ईरान पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक एक्ट 2026 के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि इस एक्ट की मजीद तफसीलात अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनका मुताला करेगा और मुनासिब वक्त पर इस मामले पर तबादले ख्याल करेगा। वजारत दिफा ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्जिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। इस माहदे पर महकमा दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के शहर पुणे में कायम इंजीनियरिंग और मैनुफैक्चरिंग की एक भारतीय फर्म है। ऑक्जिलियर पावर यूनिट APUs आग को कंट्रोल करने के निजाम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और टैंक के दीगर आलात के लिए बिजली पैदा करने का एक मुतबादिल वसीला है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उसूलियाबी के सिलसिले में यह मुआहदा मुसल्ला प्लेटफॉर्म्स के लिए कलीदी नौयत के ज़ैली निजामों की मुल्क में ही तैयारी की जानिब एक अहम कदम है और यह सनत की क़यादत वाली तहकीक तरक्की के मेक टू को जाहिर करता है। मुल्क में ही तैयार APUs की शमूलियत भारतीय फौज की मैकेनिकल तश्कील की कार्रवाई पर मबनी तैयारी, भरोसेमंदी और पायदारी को मजीद मुस्तहकम करेगी। इससे निज़ाम की मुल्की इख्तिरात को पैदावार और शमूलियत में तब्दील करने की असर पजीरी का इजहार होता है। ये माहदा हुकूमत के विकसित भारत 2047 के विजन से वाबस्ता है और दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता की हुसूलियाबी की जानिब एक काबिल जिक्र संग मील है। साथ ही ये एक मुजाहिमत खुदकफील और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय दिफाई सनत की तश्कील की जानिब भी एक अहम संगे मील है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: भारत की कौमी शाहराओं की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज़ रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं की मनसूबाबंदी और डिज़ाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक़ आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज़ रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज़ रफ्तार कौमी शाहराओं की राजधानी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में यकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहरा के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। वजारत ने कहा कि यह रहनुमा खतूत हुकूमत के तवील मुद्दती कलीदी लाहे अमल से मुताबिकत रखते हैं, जिसके तहत विकसित भारत 2047 के तहत रसाई को कंट्रोल करने वाले इंतहाई तेज रफ्तार 50,000 किलोमीटर राहदारी की तैयारी की

0: कही गई है, जिससे कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के भाई थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे की खिदमत अंजाम देने के लिए उनकी कोशिशों को आने वाली नस्लें हमेशा सराहेंगी। वजीर आजम ने दुबई के शाही खानदान और आवाम से ताज़ियत का भी इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत दुबई के शाही खानदान और आवाम के इस गम में शरीक है। ये आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के ज़रिए यह अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दील ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खुसूसी सीरीज के तहत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के जरिए लाई गई तब्दीली का जायजा पेश किया जा रहा है।
1: डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा मुल्कों के हुक्मरानी लेन देन और खिदमात की फराहमी के तरीक़ेकार को नई शक्ल दे रहा है। भारत डिजिटल सिस्टम के सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले से लेकर आबादी के तनासुब के मुताबिक डिजिटल आर्किटेक्चर के मेमार के तौर पर उभरा है। भारत ने मुश्तरक डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 सतहें तश्कील दी हैं और हर सतह को दूसरों के जरिए तामीर के लिए खुला रखा है। इसके तहत पहली सतह आधार है, जो काबिल तस्दीक शनाख्त फराहम करता है। वहीं UPI रकम की 2 बैंक खातों के दरमियान फौरी मुंतकली को मुमकिन बनाता है और अदायगी करने वाले शख्स पर किसी तरह का चार्ज आयद नहीं होता। इसी तरह अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शहरी को अपने मालियाती रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कर्ज देने वाले या बीमा करने वाले के साथ साझा करने की भी इजाज़त देता है। मुंबई में इस महीने मुनक़िद हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने UPI के 10 साल काबिल ज़िक्र सफ़र और उसकी बढ़ती आलमी पहुँच को नुमाया किया था। डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ भारत का सफ़र डिजिटल दौर में तरक्की और हुक्मरानी की जानिब बड़े पैमाने पर मुंतकली को ज़ाहिर करता है। जो कभी मालियाती शमूलियत और पहचान तक रसाई के लिए शुरू हुआ था, वो आज जामे और इंटर ऑपरेबल तरीक़ाकार बन गया है, जो इकतसादी सरगर्मी, अवामी खिदमत की फराहमी और इदारा जाती सलाहियत को मुमकिन बना रहा है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए ज़मीर रज़वी।
0: रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरीन 90 स्टेट दूमा के लिए हुए इंतखाबात में बरसरे इख्तदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतीजे सदर व्लादिमिर पुतिन को इख्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मॉस्को में आज अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन की चेयरपर्सन एला पामफिलोवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है, जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है, जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 59% रायदही हुई, जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 रोज़ा दौरे पर आज गुजरात पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया केवड़िया के एकता नगर और वडोदरा में अहम तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म इनामात अता करेंगी। एकता नगर इन बावकार इनामात की पहली मरतबा मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इत्तला-ओ नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्मों की गुनागुनियत को जश्न मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के तहत मुल्क के आला तरीन फिल्म इनामात अता किए जाने की तकरीब को कौमी राजधानी से आगे ले जाते हुए दूसरे मकाम पर मुनक़द करने का तारीखी फैसला लिया है। भारत ने जापान के एची नागोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इनफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کل ایلاوینل ولاریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس طرح نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ سوچیکا تریل نے مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتا، جو بھارت کی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلن کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے آج جاپان کے ایچی نومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ لکش سین نے ایمن ابن کو 21-4, 21-12 سے، آیو شیٹی نے گورب سنگھا کو 21-4, 21-13 سے، اور کدامبی شری کانت نے زمار الامن کو 21-15 اور 21-9 سے شکست دی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا۔ این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک اسپیک۔

0: नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, या कहिए कुछ अंतराल के बाद, सरकार का ये कदम जो है वो देश के संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जा रहा है। अब तक जो कर्मचारी एक निश्चित सैलरी ब्रैकेट से बाहर होने के चलते पीएफ और पेंशन के फायदों से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। लेकिन इस वेज सीलिंग के बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा? आपकी कंपनी के योगदान में अचानक क्या कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है? जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं, और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 0112331048। अगला नंबर है 2371717 2371710 6 और 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं, एनसीआर के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का, और हम आपको फिर से

0: विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
1: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीलिंग रेजिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड ईपीएफ का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी आप रमा शंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
1: तो इससे इनके ईपीएफ का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, ईपीएफ का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, ईपीएफ के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
1: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
1: रहेगा
0: रमाशंकर जी का? जी सर,
2: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्रीय सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं। हर महीने हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था। और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास, उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, यह आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
0: तो रमा शंकर जी, आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं और बहुत तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते, कि ये जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है, इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर ये कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा?
2: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब यह है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कंट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा, ये 3,000, जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000, टोटल 6,000 रुपये कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीलिंग पे था। अब

0: बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर 20,000 कमा रहे थे तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। दे ये वॉलंट्री अपना वॉलंट्री
1: जी
0: स्वेच्छा की
1: हाँ
0: तरह से अगर कंट्रीब्यूट करें तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था। अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
1: जी हाँ और देखिए एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर, राशिद अहमद खान। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका, बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
1: नमस्कार। नमस्कार
2: आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को बड़े उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत
2: जी
1: बधाई।
2: सर, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है, एक कंपनी में काम कर रहा है, तो बाय द वे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है, तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका, यह चेंज हो जाता है? एक बात। दूसरी बात, जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी, 12% नियोक्ता, ये तो क्या इसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, या मतलब फिक्स है ये नियम, ये बताना सर प्लीज। थैंक
0: हाँ, धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें यह बताना चाहूँगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको यूएएन बोलते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपना यूएएन वो दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है पीएफ काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है? नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है आप अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं, आपका और आपके नियोक्ता का ज्वाइंट कंसेंट के साथ, मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
1: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
0: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग, वेज सीलिंग था,
1: जी
0: तब आपका जो 12% है वो 1,800 था। अब
1: जी
0: जब 25,000 हो गया तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 पीएफ का वेजेस है, तो पहले वो 1,200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1,200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली, जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं तो उनका जो है, पहले अगर वो वॉलंटरी स्वेच्छा अपने इच्छा से ज़्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे और जो पहले पीएफ के बाहर थे कंप्लीटली, जो जिनका पीएफ कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका पीएफ कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपये वेतन रहा तो उसको 2,400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2,400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 24,000 20,000 है, 20,000 में से अगर 2,400 आपका डिडक्शन हो जाता है तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2,400 है ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके पीएफ के खाते में जमा हो रहा है। और पीएफ के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे किसी भी कारणवश अगर आपको ज़रूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये पीएफ के अकाउंट में है और पीएफ का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये

0: प्राय ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं, या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
1: देखिए, हमारे जो जो प्रावधान है, दो दो दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस, या
0: जी
1: जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पीएफ खाता है उसमें से 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है दोनों को मिला के, जो भी आपका उसमें आपके बैंक अकाउंट पीएफ अकाउंट में जो खाता में जो राशि है वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ के वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए या किसी भी वजह से आपको चाहिए, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया,
0: जी
1: तो आप 1 साल से जॉब से वंचित हैं, तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप 1 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये
0: उसमें शर्त यह
1: रिटायरमेंट
0: है
1: तक
0: कि
1: वेट करने
0: यदि
1: की
0: एक
1: जरूरत नहीं
0: वर्ष
1: है।
0: हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश, तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं।
1: जरूर
0: जबकि सामान्य तौर पर, जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उससे पहले 75% तक निकाल सकते हैं। और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं। पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है, और या आप
1: हाउसिंग
0: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे
1: या
0: हैं,
1: बीमारी, कोई भी
0: या
1: बीमारी।
0: कोई रोग है, तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं, MSME, जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे?
1: देखिए, ईपीएफ में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफ गार्ड यहाँ पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर
0: जी
1: कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये पीएफ वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट, अभी तो जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो
0: जिम्मेदारियां
1: एजुकेशन
0: बढ़ जाती
1: एजुके
0: हैं।
1: हाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो पीएफ एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं।
0: जी
1: एक समझ लीजिए, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना, उससे अगर 6,000 रुपया आपका, 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,000, 6 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो
0: जी
1: 1 साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000।
0: 72,000
1: और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना बिना विड्रॉल के आप जमा करते
0: जारी रखते
1: हैं
0: हैं।
1: 30-35 साल
0: जी
1: तक,
0: जी
1: तो करीबन करीबन आपके 7% कम भी आप लेके इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूँगा कि अभी इमिडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1,200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले पीएफ में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था, अब 25,000 रुपये कटवाना है तो 1,200 रुपये का एडिशनल उसको
0: जी
1: कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये

0: एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूँगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग-अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना,
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: यहीं पे लगा रहेगा। तो ये एक एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि
1: जी
0: आप
1: जी
0: अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: कि
1: जी जी
0: आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहें, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे
1: लाभ दे सकते
0: लाभ दे
1: हैं,
0: सकते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: फिर
1: उसका
0: उतना
1: जरिया।
0: आपके साथ वो जुड़ के काम करेगा।
1: जी हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं, सासाराम बिहार से अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए।
2: जी नमस्कार। मेरा
1: नमस्कार।
2: ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए पीएफ अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर और फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो पीएफ अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको क्या कैसे उसको हम लोग वो यूज कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी भोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, एक उसमें होता है पीपीएफ अकाउंट, जो पीएफ और पीपीएफ में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
1: जी
0: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ईपीएफ में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैसा है 55 साल तक, जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है, तब तक आप अपना सेविंग्स से पीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, इसमें से जब चाहे जैसे मैंने कहा अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है, नोटिफाई किया है, उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश, मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी और रीज़न से भी आपको निकालना है पैसा, तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 ईयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा, आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है, तो इसमें बैंक से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा।
1: जी
0: सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं, इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफ़ी कम मिलता है आपको, और ये हर 5 साल, पहले 15 साल तो रहता है, उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता जो हैं वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिफरेंस है।
1: जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं, और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी, और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला, कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है, क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है, या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं, ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। पैसा जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है, जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं, उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है, जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो, या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो, या स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो, इसमें हम निवेश करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है, इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है, और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस, मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है, ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं, अगर कम ब्याज मिला हमको, कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है, ज़्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है, और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है, और इसका जो भी राशि है आपका PF बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं, और लोग परिश्रम, अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है, तो वो कई बार होता है कि दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसकी व्यवस्था है, तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा, या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
0: ज़रूर, ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह कुछ काम कर लेते हैं, शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं, तो अगर दोनों जगह से उसका PF अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा, दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा। इसमें कोई भी हमारे तरफ से EPF कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है, ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये जमा हो सकता है।
1: ये नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कि यदि उन्हें ये आपत्ति नहीं है कि आप दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते, और वो लेकिन स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो वो वही रहेगा, लेकिन
0: वो UAN नंबर एक आदमी का हमेशा वो परमानेंट है, वो UAN नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको UAN नंबर देना है।
1: जी जी जी, और इसमें एक और जो प्राय एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है काम करते हुए और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफ़ी जटिल हो जाती है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए।
0: तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ तो उससे ना ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और EDLI दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा। तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था, इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था, वो ही वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में पेंशन खाते में चला जाता है। अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि EDLI जो हम बोलते हैं एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट EDLI में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।

0: समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें ज़रूर मिले होंगे। और दोस्तों, अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाईजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। यह दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कलाकार रहे श्रुति सरगम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम राग रंजन। सुनते हैं शुभम कुमार का राग रागेश्री में गायन।

की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 10:59 और पूरे 40 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 11 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक

जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60 kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुनते हैं। इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं और सुनते हैं हमारे मनोरंजन कार्यक्रम। 11:10 हो चुके हैं और समय है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश का। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। रात के 11 बज चुके हैं और शहर की तेज रफ्तार अब थम सी गई है। खिड़की के बाहर देखिए जनाब, सड़क के किनारे जलती हुई वो स्ट्रीट लाइट्स मानो बताती हूँ कि बस अब सुकून का समय शुरू हो चुका है।

0: रहना।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आपने की सुना फिल्म तुमसा नहीं देखा, और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथ में आशा भोसले। हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी इस खूबसूरत गीत के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने गीत को पसंद किया होगा। और रात हो चुकी है, और रात का जो सफ़र रहता है, जो समय रहता है, वो रहता है खामोशी का। रात की खामोशी में एक अजीब सा शोर है, बाहर सन्नाटा है पर दिल में कुछ और है। गुजर गया वो दिन तो छोड़ आइए, जो हुआ वो भूल आइए। ये रात आपकी अपनी है जनाब, थोड़ा सा मुस्कुराइए। समय 11:15 हो चुके हैं, और आप जुड़े हुए कार्यक्रम फिल्म संगीत से। मैं हूं आपके साथ चेतना।

जी हाँ दोस्तों, आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है और आपके गीतों की रिक्वेस्ट भी हम तक पहुंच चुकी है और मैसेजेस की इतनी बड़ी लाइन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप कितनी शिद्दत से हमारा इंतज़ार करते हैं कार्यक्रम में, अपने नाम का, अपने गीतों का। तो आज के कार्यक्रम में हम जितने भी गीत प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पसंद के ही हैं और बहुत मुश्किल होता है सभी लोगों का नाम लेना। हम हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत में यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ही मैसेज भेजें, एक ही गीत के साथ, एक ही पसंद के साथ भेजें, तो हम सभी रिक्वेस्ट को लेना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए।

जाएगा। दिलावर खान जी रघुवीर नगर से हमें सुन रहे हैं। अलीजा हसीना बानो, अलीजा नायाब हमारे साथ हैं। मोहम्मद फरीद अंसारी जी ने हमसे एक निवेदन किया है और ये निवेदन जो है बहुत सारा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं कहना चाहूँगी कि आप इस प्रोग्राम को थोड़ा और समय बढ़ाइए और गीतों के साथ में हमारे प्लीज़ नाम लिया कीजिए। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं मोहम्मद, ये हैं फरीद अंसारी जी असालपुरा मुरादाबाद से हमें सुन रहे हैं। शुक्रिया आपने फीडबैक दिया कार्यक्रम से संबंधित, हम इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आगे ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, साथ में रज़िया बेगम, मोहम्मद साहिद अंसारी हैं बहादुरगंज काजीपुर से, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हरजिंदर शिंडा जी हमें पंजाब से सुनते हैं। सोमदत्त जी ने पटियाला से हमको मैसेज भेजा है। कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर भी हैं इनके साथ में। फागुराम यादव जी ने भी एक गीत की रिक्वेस्ट के साथ अपने संदेश को हम तक पहुंचाया है। हमेशा की तरह छोटे अंसारी जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, साथ में इनके आरिफ अंसारी, असद अंसारी हैं। मैसेज भेजने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जीतू प्रसाद जी, हिमकेश्वर साहू जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। सतीश अनेजा जी ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुँचाया है और साथ में लिखा है कि अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं और बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया कैसी है। बहुत खूब, शुक्रिया। और इसी तरीके के मैसेजेस जो होते हैं कि आपके गीत की रिक्वेस्ट भी होती है, साथ में कोई ना कोई ऐसा संदेश जो किसी के लिए मोटिवेशन बन सकता है, तो ये होना भी ज़रूरी है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, शुक्रिया आप सभी का कि आप कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं हमेशा की तरह हर रोज़, और कार्यक्रम को पसंद भी करते हैं अपने गीतों के साथ, अपनी बातों के साथ। इसके लिए वाकई में शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं यहाँ पर जो बिल्कुल नए नाम हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग तकरीबन 10:30 से ही हमसे जुड़ जाते हैं, और मतलब इंतज़ार रहता है आपको 11:10 का। और बहुत सारे नए नाम भी जुड़ रहे हैं। छोटे अंसारी जी ने लिखा है कि चेतना जी आप सब खैरियत है, बिल्कुल मैं खुश हूँ, और अच्छा लगता है आपका संदेश आता है और आप अपनी दुआएं हम तक पहुँचाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ नीरज कुमार जी ने भी अपनी बात हम तक लिख के पहुँचाई। लिखते हैं कि मेरा ये सुझाव है कि पसंदीदा गाने सुनाएं। तो बिल्कुल हम नीरज जी, ये जितने भी गीत इस वक्त प्ले हो रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी ही पसंद में से हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस जो हैं वो शुरुआत में ही आने शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास एकदम से किसी गाने को सर्च करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम सर्च करके रखते हैं आपकी पसंद को पहले से, जैसे आपके संदेश आते हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी पसंद के साथ ही अपने नाम को सुनना चाहते हैं, तो वो भी पूरी हो जाती है उनकी रिक्वेस्ट। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से गाने की फरमाइश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, ये हमें नीरज कुमार दल्लू पूरा दिल्ली से संदेश भेज रहे हैं, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी नीरज जी। लेकिन हमारे पास जो इतने सारे संदेश आ चुके हैं, देखिए घड़ी जो है वो हमें बता रही है कि 11:30 हो चुके हैं, समय का पता ही नहीं चलता है, समय बहुत कम होता है, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, आपके गीत होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ सकते हैं। और किशन सपकाल जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना नमस्कार हम तक पहुंचा रहे हैं। सतीश नेचा जी ने कुछ पंक्तियां हम तक पहुंचाई हैं। जब थम जाता है शोर जहां तक और थक जाती है दौड़ यहां की, तब उतरती है आंगन में चुपचाप एक चादर रात की खामोशी की। बहुत खूब। अब देखिए कितनी सारी लाइंस के साथ भी वक्त इतना कम होता है कि हम पूरी संदेश को पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके संदेश, आपके गीत जो हैं वो भी ज़रूरी है कार्यक्रम में, तो हमें गीतों को भी इस कार्यक्रम में इस घंटे में पूरा करना है, आपके संदेशों को भी लेना है, तो इस वजह से हम सारे संदेशों को लेना

थोड़ा शॉर्ट में पसंद करते हैं। पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा टिल्लू मधु नायक कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। नारायण खर्चे जी हमेशा की तरह मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजते हैं। भारती नागनपुरे जी भी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हमें सुन रही है। जाकिर जी ने अपना नमस्कार हम तक पहुंचाया है और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम को सुन रहे हैं बाजार रोग मुंगीसापुर से, ये हमें सुनते हैं। आरजू वोल और इनके साथ में हैं अली जबा अयान मसूरी, यश मंसूरी, शुक्रिया, बहुत सारे नाम हैं। स्वर्ण सिंह जी कार्यक्रम जुड़ गए हैं और साथ में एक नए लिसनर हैं हमारे, शायद ये एस चंद्र बजाज हैं और ये हमें सेक्टर 67 से सुनते हैं, चंडीगढ़ से। अहमद फूल वाले जी हमेशा की तरह कार्यक्रम में हैं और फिल्म पाकिजा से गीत की रिक्वेस्ट भेजी इन्होंने। और छोटी बलिया मुंबई करजसी हमें सुनते हैं। किशन सपकाल जी, आर कुमार और बहुत सारे संदेश जो हैं बहुत रिपीटेड हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप एक संदेश के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ हमें अपनी बात के साथ भेजें। शंकरलाल जायसवाल जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। भाव्या मैथिली जी ने भी अपनी बात संदेश हम तक पहुँचाई। ये हमें स्टेट बैंक कॉलोनी नजफगढ़ से सुन रही हैं। तो ये देखिए कुछ कुछ नाम जो हैं वो नए हैं प्रोग्राम में, तो इसके लिए शुक्रिया। एस एम जावेद, अरविंद कुमार जी ने भी तीसरी कसम फिल्म से गीत की रिक्वेस्ट भेजी है और इनके साथ गुड़िया भाव्या निवेश और नियति कुमारी है। मधुबनी बिहार से ये हमें सुनते हैं। शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए। भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और बिना गीतों के तो ये संभव नहीं है।

ये रात भी अजीब खेल दिखाती है, सोए हुए जख्मों को फिर से जगा जाती है। सारे शहर में तो चिराग बुझ जाते हैं, लेकिन बस एक मेरी आंखों में ही रोशनी रह जाती है।

जी हाँ श्रोताओं, कितना खूबसूरत गीत और फिर मधोश से था ये गीत, और सच में मधोश करने वाला था। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ और गीत लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत दिया मदन मोहन ने, बेहद खूबसूरत।

जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं और ऐप के थ्रू भी आप हमसे जुड़े रहते हैं। संदेशों के जरिए आप हमसे जुड़ते हैं ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com पर आप हमसे संदेशों के जरिए जुड़ते हैं और हमें इंतज़ार रहता है आपके संदेशों का। अनिल मोहन पहाड़गंज से सुनते हैं हमें। उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमेशा की तरह कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। राजकुमार डूडी जी ने हमें मैसेज भेजा है फ्रांसीसी जिला हिसार से, और कोई भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें, साथ में इनके प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार भी हैं। राम बालक दास जी ने भी हमें अपना संदेश भेजा है और लिख रहे हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मुझे भी कोई भी एक गीत सुना दीजिए। जितने भी गीत हैं जनाब, सभी के लिए हैं और बेहद खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएँ लिखना ना भूलें, हमें इंतज़ार रहता है। राजेंद्र जटोलिया जी ने भी अपना संदेश हमें नागलोई से भेजा है, दिल्ली से, और लिख रहे हैं कि मेरे गीत की रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए। कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके गीत आपके नाम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। छोटी अंसारी जी ने हमें अपना संदेश भेजा है, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और कोई भी बदलाव मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। बसंत कुमार सिन्हा जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए, इनके साथ रेखा, अजय कुमार है, बेबी अनविका, तनुश्री गुप्ता, और ये हमें कोलकाता से ही सुनते हैं। इसके साथ साथ नासिर शेख जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। प्रकाश वर्मा जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, शुक्रिया आप सभी का। और साथ में अली जी जो हैं, और सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, और लिख रहे हैं कि आप सॉन्ग बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं।

ये पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ लिखा है कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर इंसान कर रहा है, अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर इंसान कह रहा है जमाना खराब है। मुरादाबाद से, बहुत खूब। वाकई में हम लोग दूसरे पर अगर कहें कि पर्दा, अपने ऊपर पर्दा डाल के ही सोचते हैं कि सच में ज़माना ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा खुद पर भी गौर कर कर देखिए तो शायद ज़माना सुधर जाए।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत आर पार फिल्म से रहा और ओपी नैयर ने इस गीत को संगीत दिया, बेहद खूबसूरत। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:42 हो चुके हैं और देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि वक्त यहीं पे थम जाए और आपसे बातें होती रहें। लेकिन गीतों के साथ साथ आपके खूबसूरत संदेश जो हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, कितिका खोरवाल, भानु प्रकाश हमें सुन रहे हैं और इन्होंने फिल्म चित्तौड़ से गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। स्वर्ण सिंह जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है और गीत की रिक्वेस्ट भी भेजी है। लोहागढ़ फिरोजपुर पंजाब से हमें सुनते हैं। इसी के साथ साथ नवी हसन जी ने अपना संदेश भेजा है। चेतना जी नमस्कार, आदाब और फिल्म कर्तव्य का गीत सुना दीजिए, मेहरबानी होगी। और साथ में किदवई नगर सिद्ध पूरा टाउन से जुबेर और सभी अंजुमन भी हैं। शुक्रिया आप सभी का रिक्वेस्ट भेजने के लिए और वाकई मैं बार बार यही कहूँगी कि पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी गीतों को शामिल कर सकूँ, आपके नामों को शामिल कर सकें।

रात भर आसमान में चांद चमकता रहा, याद में दिल मेरा तड़पता रहा। ख्वाब बनकर तू आती रही मेरे ख्यालों में, और रात भर मैं खुद से बातें करता रहा।

और अकरम हुसैन प्रिंस जी ने अपना संदेश हम तक पहुंचाया, लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में मेरे नाम को शामिल करने में इंतज़ार कर रहा हूं। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमें सुनते हैं। मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत रिफअत जहानाज और साथ में नाजिया हैं इनके साथ साजिया। तो हमने आपके नाम को शामिल कर लिया इस गीत के साथ अकरम हुसैन जी।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और फ्रीक्वेंसी वही आपकी 366.3 मीटर पर आप हमें सुनते हैं और समय बता दें आपको कि रात्रि के 11:47 हो चुके हैं और वक्त तो है बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। चलिए संदेशों की ओर चलते हैं। हमारे पास सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार, साधना पवन पाटिल ने संदेश भेजा है और ये भेजा है हमने इस्लामपुर महाराष्ट्र से। आप सभी का शुक्रिया। साथ में मोहम्मद कमर जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना आदाब हम तक पहुंचा रहे हैं। इनके साथ हरजी साहिबा जी नमस्कार, आदाब अर्ज है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। मोहम्मद फरीद अंसारी जी लिख रहे हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारा भारत महान है, बिल्कुल ये हम कैसे भूल सकते हैं। अरीश अली जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया दोबारा से। इरशाद हुसैन अंसारी इनके साथ और लिख रहे हैं कि आपका अंदाज़ और आपकी पेशकश हमें पसंद आ रही है और गीतों का चुनाव भी आपका अच्छा है, शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। और इन्हीं के साथ साथ इंद्रभान सिंह जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं। अनुभव सिंह, ऋषभ, राम नारायण, दिनेश, कालिंद्री लहरी जी भी हैं इनके साथ में। अश्विनी चुग ने भी सेक्टर 9 पंचकुला से अपने संदेश को हम तक पहुंचाया है। अरुण कुमार पांडे कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें, नियमित श्रोता हैं। अरुण कुमार पांडे मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। साथ में सुदर्शन मुखे जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और गीत की रिक्वेस्ट भेजी इन्होंने डेट और टाइम के साथ और बहुत सारे ब्लैंक भी मैसेज हैं हमारे पास, तो जब आप अपने संदेशों को भेजें तो प्लीज़ एक बार चेक करके भी भेजें। फिलहाल इस गीत की तरफ बढ़ते हैं।

जी हाँ दोस्तों, समय देखिए ना कितनी तेजी से दौड़ रहा है। 11:54 हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि बस आपसे बिछड़ने का समय आ चुका है। छोटे अंसारी जी लिख रहे हैं कि प्रोग्राम की तारीफ तो बनती है, शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी ने हमें फिरोजपुर पंजाब से मैसेज भेजा है और गीत की बोल धीरे धीरे कोई सुन ना ले, ये गीत पसंद आया। वही कहीं ना कहीं जो गीत हैं वो हमारी पसंद बन भी जाते हैं कभी कभी। हम जिन गीतों को सुनते हैं वो हमने कभी सुने नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट अगर पूरी नहीं हुई तो इतने सारे गीतों में कहीं ना कहीं आपकी पसंद का कोई और गीत भी हो सकता है। इंद्रभान सिंह जी ने भी अपने संदेश को दोबारा हम तक पहुँचाया है। सतीश अनेजा जी प्रोग्राम की प्रतिक्रिया लिख कर भेज रहे हैं, हमेशा की तरह आज भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अच्छा रहा, खूबसूरत गीतों का समावेश और आपकी बेहतरीन प्रस्तुति। आपकी आवाज़ सुनते ही शब्द पिरोने शुरू कर देता हूँ क्योंकि आपका संदेश

पढ़ने का अंदाज़ भी सबसे अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सतीश जी तो हमेशा ही तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और हमें बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपने संदेश तक पहुंचाते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कई जो लिसनर्स हैं बहुत ध्यान से कार्यक्रम को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं और गीतों को पसंद भी करते हैं। हालांकि बहुत सारी हमारे पास ऐसे भी मैसेज आए हैं जो थोड़े बहुत चेंजेस के लिए हैं, उन पर भी हम ज़रूर ध्यान देंगे। और मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया, लिख रहे कि मैम आप सभी का नाम और एड्रेस आपने मेरा नहीं पढ़ा है। तो मुरादाबाद से इन्होंने भेजा है, सारे संदेश और पूरे पूरे एड्रेस के साथ अली साहब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने कम समय में आप देखिए ऐसे शायद कई नाम छूट भी गए होंगे मेरे से जो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए, लेकिन इसके लिए आप खफा मत होइए, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे हम आपके गीतों के साथ आपकी बातों के साथ, ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे आपकी रिक्वेस्ट को।

और श्रोताओं, वक्त जाने का हो चुका है। आखिरी गीत के साथ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। अपना ध्यान रखिए और जल्दी फिर मुलाकात के वादे के साथ आपसे विदा लेती हूँ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीएनएम 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण

0: भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। अगले महीने की 29 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. India

सुरों का सफरनामा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, यानी कि बात आज हम करेंगे उस शायर से जिसकी कलम ने दर्द को शब्द दिए, मोहब्बत को आवाज दी और समाज को सवालों को गीतों में ढाल दिया। हम बात कर रहे हैं उस लिरिसिस्ट की, उस गीतकार की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने शब्द के बजाय समाज के सवालों का ज़्यादा ध्यान रखा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हसन कमाल की बारे में, जो सिर्फ फिल्मी गीतकार ही नहीं, पत्रकार, शायर और कहते हैं ना बेबाक लेखक वो भी रहे। लखनऊ की तहजीब से निकले इस इंसान ने मुंबई में अपनी पहचान बनाई और एक गीत ऐसा लिखा जिसे सुनकर सभी की आंखें तो नम हो ही गई, लेकिन उसे आज भी याद किया जाता है। कौन सा वो गीत था वो बाद में जानेंगे, पहले सुनते हैं इन्हीं के लिखा एक गीत जो फिल्म एतबार से लिया गया है, भूपेंद्र और आशा भोसले की आवाज़ में।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके गीत के पीछे भी संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। 1943 की बात है, लखनऊ में जन्मे हसन कमाल बचपन से ही शायरी की दुनिया में खोए रहते थे। घर में अदब का माहौल था और स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने आसान रास्ता नहीं था। फिल्मों में जाने से पहले उन्होंने पत्रकारिता चुनी थी। 1965 की बात है जब वो एक अखबार के लिए काम करने लग गए, सब एडिटर के रूप में। यही नौकरी उनकी असली पाठशाला साबित हुई। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसके पीछे की बात यह है कि कहा जाता है कि वो शब्दों को लेकर इतना सजग रहते थे कि एक छोटी सी हेडलाइन पर भी कई बार घंटों सोचते थे और कई बार पीछे रह जाते थे। इसका उन्हें बहुत सारा कुछ सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त इंसान को सिखा देता है। इसके कारण वो मंच से चले गए, यानी कि अपने चीज़ों को परफेक्ट करने के चक्कर में वो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम को करने लग गए, लेकिन परफेक्शन के साथ। और उन्हें लगता था, ये वो ऐसा सोचते थे कि सही शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं।

क्यों खूबसूरत है ना गीत, इसके बोल वाकई में लिखने वाले के हाथ में जादू है। 1974 में वे उर्दू के संपादक, उर्दू के एक पेपर के अखबार के संपादक बने। उस समय अखबार की बिक्री लगभग 13,000 थी। कुछ ही वर्षों में इसे बढ़ाकर लगभग 1 लाख प्रतियां प्रति सप्ताह तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, क्योंकि उनकी लेखनी में इतना दम था कि लोग बहुत भाव लेकर पढ़ते थे। क्योंकि वो सिर्फ संगीत और शायरी जैसे शब्द नहीं पिरोते थे, उनकी लेखनी में लेखक भी था। हसन कमाल सिर्फ संपादक नहीं, वो ऐसे लेखक थे जिनके कॉलम तमिल, तेलुगु, मराठी और अंग्रेजी में भी अनुवादित होते थे। यानी उनकी सोच भाषाओं की सीमाओं को पार कर चुका था, यानी उससे उनमें कोई भी बंदिश नहीं थी। चाहे वो कोई भी भाषा हो, वो हर एक भाषा को संभाल कर और उसमें लिखने की कोशिश करते जिससे आम जनता तक सारी बातें पहुंच सके।

और वाकई में एक नई सुबह लेकर आएगा सूर्य। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से ही थे कि लोगों में जोश जगाए, लोगों के अंदर वो बात सिखाए जो आज के दौर में चल रहा हो। 1980 के दशक की बात है। शुरुआती 1980 में निर्देशक B.R. चोपड़ा फिल्म निकाह बना रहे थे। संगीतकार रवि नए शब्द चाहते थे। यहीं से हसन कमाल की जिंदगी बदल गई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे। संगीतकार रवि जब नए शब्द चाहे, तब उन्होंने फिल्म के लिए हसन कमाल को चुना और उनसे 5 गीत लिखवाए। हसन कमाल पीछे नहीं हटे, उन्होंने 5ों गीत लिखकर सौंप दिया। और फिर एक गीत आया जिसने इतिहास रच दिया। निकाह फिल्म से दिल के अरमां आंसू में बह गए। ये गीत सिर्फ हिट ही नहीं हुआ, लाखों टूटे दिलों की आवाज बन गई। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 बार नामांकन मिले। हालांकि पुरस्कार उस बार तो नहीं मिला, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिल गई। फिर 1984 में आई फिल्म आज की आवाज़। इस फिल्म का टाइटल गीत ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिलाया। ये सिर्फ प्रेम गीत नहीं था, इसमें समाज की बेचैनी भी थी। हसन कमाल की यही खासियत थी, वे दर्द भी लिखते थे और ज़मीर भी।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा और आज बात हो रही है महान लेखनी, महान शब्दों की जादूगर। जी हाँ, जब हम शब्दों की जादूगर की बात करते हैं तो बहुत सारे लिरिसिस्ट का नाम सामने आता है, लेकिन हसन कमाल वाकई में कमाल के थे। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, कई हिट फिल्मों में अपने शब्दों से उस फिल्म को हिट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। वे दुनिया में कई देशों में मुशायरे में शामिल होते थे और फिर भारत के बाहर भी जाते थे शायरी करने, और लोगों को खूब पसंद भी आती थी उनकी शायरी। उन्होंने टीवी के लिए भी लेखन किया, और कहते हैं ना कि उनकी कलम सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही। उनके रचनाओं में अक्सर मोहब्बत, इंतज़ार, तन्हाई, इंसानी रिश्ते बहुत गहराई से दिखाई देते थे। 2007 में आई थी फिल्म अनवर, उसके गीत उनके अंतिम चर्चित फिल्म गीतों में से एक माना जाता है।

आपको बता दें कि इस फिल्म के कई सारे ऐसे गीत थे जो हसन जी को अपने पुराने दिनों को याद करके लिखते बनता था, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हालांकि वो कम ही लोगों से बात करते थे अपने जीवन के बारे में, लेकिन कहा था कि उनका दिल करता है कि इतना लिख जाऊं, इतना लिख दूं कि हर एक गीत लोगों की जुबां पर छाई रहे और वो गीत उनके द्वारा लिखे गए हों।

और अगर फिल्म फेयर की बात की जाए तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सम्मान से इन्हें सुशोभित किया गया, सम्मानित किया गया। साहित्यिक पुरस्कार भी मिला, सुर सिंगार सम्मान और अनेक सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह पुरस्कार भी नहीं होगी, इतने बड़े लेखक, शायर और लिरिसिस्ट को, क्योंकि ये कहा जा सकता है जो व्यक्ति दूसरे की जज्बात, उसके मन का दर्द अपने शब्दों में पिरोता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वो चीज महसूस होती है कि उसकी लेखनी में, उसकी लेखनी के लिए और उसकी लेखनी से कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग उससे प्यार करते हैं और कितने लोग उसे अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए पुरस्कार से ज्यादा कहते हैं इन्हें पसंद था लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी लेखनी से जो लोग प्यार करते थे, जो मोहब्बत करते थे, वो उन्हें भा गया था। आज भी लोग उनका गीत गुनगुनाते हैं और एक बार जरूर कहेंगे कि जो व्यक्ति लिखता है शायद उसे कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए ये खूबसूरत शब्द किसने उतारे हैं, किसने उकेरे हैं और किसने उसे एक सेंटेंस यानी लाइन बनाई है शब्दों को पिरोकर। ये किसके हाथ का जादू है ये जरूर जानना चाहिए। यही एक गीतकार की सबसे बड़ी जीत होती है। तो फिर जब अच्छा लिखने वाला व्यक्ति कहीं दिख जाए, कहीं नजर आ जाए, तो उसकी लेखनी पर जरूर गौर फरमाइएगा और जब लेखनी अच्छी नजर आए तो जरूर गौर कीजिएगा किसके द्वारा आखिर लिखा गया।

हसन कमाल ने हमें सिखाया कि शब्द सिर्फ कागज पर नहीं उतरते, वे दिलों में घर बनाते हैं। लखनऊ से शुरू हुआ उनका सफर मुंबई तक पहुंचा, लेकिन उनकी असली मंजिल लोगों के दिल में थे, जो उन्होंने अपने शब्दों से वहां पर घर बनाया। आज के शुरू का सफरनामा बस यहीं तक है। मैं हूं पूजा भारती और आपसे लेती हूं विदा इस कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए कलाकार और उनकी अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 1 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: सहायता मिलेगी।
1: इनटू कंक्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार की विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete

अगर गीतों का सिलसिला ये चला जहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, वहाँ पर कुछ गीत ऐसे भी बने हैं जिन्हें उनके अपने मोहब्बत के पहनावे, उनके श्रृंगार, उनकी बातों को लेकर कुछ अलग सा कहा जाता है। आपको पता है, जब पुराने गीतों की बात चलती है तो आप समझ ही नहीं सकते कि कौन सा गीत किस मूड का है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हो, जब आप उसे सुनने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है, अच्छा, इस समय के हिसाब से इस गीत को बनाया गया। फिल्मों में गीत सिर्फ मोहब्बत के नहीं होते थे, हर एक सिचुएशन पर गीत बनते थे, और शायद यही कारण था कि पुराने जमाने की जो फिल्में हुआ करती थी वो बिल्कुल सधी हुई होती थी, क्योंकि उसमें हर एक चीज, हर बारीकियों का पर ध्यान दिया जाता था। और जब गीतों की बात चलती है तो चाहे वो किसी भी सिचुएशन पर क्यों ना हो, उस सिचुएशन पर गीत बनते थे, बनाए जाते थे, और उसे बखूबी, इतना खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था कि वो गीत खूबसूरत हो जाते थे। और आज भी हम उस गीत को याद करते हैं।

0: और गोल्डन एरा फिल्म की बात हो रही है मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। गोल्डन एरा गीत सुनहरे आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी लाइव न्यूज़ पर आप रोज़ाना सुनते हैं 1:10 से इस कार्यक्रम को। फिल्म संगीत पर आधारित है यह कार्यक्रम और उस ज़माने की बात चल रही है जिस ज़माने में फिल्म बनाना क्या एक सीन बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, पुल पर काम होता था, शूट भी बड़ी मुश्किल से होती थी, हर एक काम में कड़ी मेहनत छिपी थी और वही मेहनत रंग लाकर तब बने हैं वो एरा गोल्डन एरा और उनके गीत बने सुनहरे। जी हाँ, उन्हीं गीतों के बारे में बात कर रहे हैं और वो गीत जब किशोर और आशा दो आवाज़ें ऐसे जुड़ गए कि गीत को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता था तो फिर क्या बात है। और जब वो लाइंस, वो शब्द जो उसे और खूबसूरत बना दे, वो शब्द सुनने के बाद इस गीत को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। जी हाँ, पेइंग गेस्ट का ये गाना हर किसी की जुबान पर आज भी तरोताजा है।
1: निगाहें मस्ताना देख सम

0: मस्ताना।
1: वो निगाहें मस्ताना, गीत बहुत खूबसूरत से थे। और अगर बात हो कि तुमने इतना खूबसूरत क्यों कपड़े डाले, इतने सुंदर क्यों लग रही हो, क्यों ऐसे सजी हो, क्यों हम इस लाइन को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे इसे और खूबसूरत, क्योंकि हम नहीं बना सकते। वो गोल्डन लोग ही थे जिन्होंने इन गीतों को इस कदर से, इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोया है कि हमें अच्छा तो लग रहा ही है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि मोहब्बत की गीतें जो जो गीतों में जो कला है, जो लिखने का तरीका है, तो ये सोच सकते हैं कि ये करते करते और सुनते सुनते इंसान आराम से ढाल सकता है, शायद कम मेहनत करनी पड़े। मेहनत तो है लेकिन कम करनी पड़े। लेकिन अगर ये बात अगर आती है कि इसमें कुछ अलग मूड के गीत, कुछ अलग सिचुएशन के गीत बनाने हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत यदा कदा ही गीत बने होंगे, लेकिन फिर भी बनाने वाले ने क्या खूब लिखा है और क्या खूब गाया है।

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप, गोल्डन एरा गीत सुनहरे, आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और बात जब हो रही है और सारे सिंगर को हम सुन रहे हैं, तो फिर हेमंत कुमार को क्यों पीछे छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये तो वो शख्स हैं जो गीतों को लिखना, गाना, उसे सुर देना, फिल्मों को डायरेक्ट करना और कई सारी चीज़ों में इनकी पकड़ थी। कैसे कोई व्यक्ति इतना महान और विद्वान हो सकता है? और इनके गाए हुए गीत, हर एक गीत बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। आइए सुनते हैं और इनके स्वर का जादू देखते हैं।

वाकई में जादू है आवाज में। यूं ही नहीं खूबसूरत बनते आए कोई भी चीज। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो एक खूबसूरत चीज सामने उभर कर आती है। पुरानी फिल्में, पुराने गीत शायद इसीलिए इतने खूबसूरत हुआ करते थे। हर चीज में कड़ी मेहनत छिपी होती थी। सभी कुछ कहते हैं कि उस जमाने में लोग इतने मेहनती थे कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता था और वो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते थे। तभी शायद वो एरा ऐसा था कि हर कोई वहाँ हिट नहीं हो पाता था, आगे नहीं निकल पाता था। जो जितना मेहनत करे वही आगे बढ़ पाता था और उनकी मेहनत रंग लाई। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा के बारे में। जी हाँ, उसी एरा का जिसका गीत आज भी तरोताजा है, सुनहरा है। आइए सुनते हैं गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत।

आपने ये गौर किया है, जब पुराने ज़माने के गीतों की बात चलती है, उन गीतों के ड्यूरेशंस बहुत कम हुआ करते थे, यानी कि कम समय का गीत बनता था पहले। बहुत कम ही ऐसे गीत हैं जिसके ड्यूरेशन, यानी कि जिसका समय जो है वो लंबा हो, बहुत बड़ा हो, ऐसा बहुत कम गीत है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटे थे इसलिए आसानी से बन जाते होंगे, या फिर बड़े हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या छोटे हैं तो। लेकिन बात असल में ये है कि उस छोटे से गीत, उस छोटे से समय में बहुत कुछ सिमट कर एक गीत में ही आ जाता था, और सारे बोल जो कहना है उस सिचुएशन पे, वो सब उस छोटे से गीत में इस कदर शब्दों के साथ कह दिया जाता था कि कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं लगता था कि गीत कम तो नहीं रह गया, या सिचुएशन पर बेस्ड ये गीत सिचुएशन को अच्छे से बता नहीं पाया, ऐसा कहीं नहीं लगा। गीतों को ढालने का शायद ये बहुत अलग सा तरीका उस जमाने का था, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरा।

बहुत खूबसूरत संगीत था। तलत महमूद की आवाज़ में आपने इस गीत को सुना। फिल्म छोटे भाई से, छोटे बाबू से आपने इस गीत को सुना, और गीतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये कुल रेरा के गीत हैं और गीतों का समावेश अलग अलग तरीके के गीत आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ मैं। पूजा भारती, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म भाभी से। और गीतों का सिलसिला जब चल रहा है तो एक गीत इसके बाद मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी, ये गीत मुझे अत्यधिक प्रिय है, बहुत प्यारा सा गीत है वो। लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत, ये भी कम खूबसूरत नहीं है।

ना खूबसूरत गीत था ये, छुपा कर मेरी आंखों से वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हर। क्या लाइन क्या गीत, वाकई में इस गीत के क्या कहने। ऐसे एक और गीत है और उस गीत में भी कुछ इसी तरीके से मोहब्बत का इजहार किया गया। हालांकि मैंने अपने जो गीत सिलेक्ट किए वो 50s के गीत सिलेक्ट किए हैं, गोल्डन एरा का वो पीरियड, उस समय, और वो समय लगभग 70s तक इतना ही खूबसूरत रहा। गीतों के में जो बदलाव आने शुरू हुए वो 60s के बाद आए, लेकिन 70s में बिल्कुल अलग आया और थोड़ा सा म्यूजिक पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। लेकिन अगर बात करें गोल्डन एरा उस जमाने की, जब फिल्म बनती थी लेकिन वही उसी मुश्किल से उसी दिक्कत से, तब की बात अगर करें तब के जितने सारे गीत हैं वो एक से बढ़कर एक थे। और जब गीतों का ये सिलसिला चलता है तब हम ये सोचते हैं कि जब गोल्डन एरा की बात हो तो ऐसे गीत आप कहाँ है सुन सकते हैं, आप कहाँ सुन पाते हैं। आप अत्यधिक म्यूजिक वाले अत्यधिक संगीत वाले गीत सुनते हैं या फिर वो बोल आप नहीं पा सकते जो बोल अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का एक अलग ही उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसे आपने जमाने से इन कानों से नहीं सुना, उसे आप तक पहुंचाने का मकसद इस कार्यक्रम का है, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के साथ आप लोग कई सारे ऐसे गीत जिसे सुने हुए आपको जमाना गुजर गया उन्हें सुन पाते हैं। तो गीतों का सिलसिला क्यों रोके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं।

और गोल्डन एरा का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मन यही कह रहा है कि क्यों ना एक छोटी सी लाइन आप तक और पहुंचा दी जाए। कल लेकिन फिर से सामना होगा गोल्डन एरा में, जी हाँ, फिल्म संगीत में। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।

0: स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries

यार लाइव न्यूज़ 24x7 से आप जुड़े हैं। 2:10 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत बहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी EIR लाइव न्यूज 24x7। 3 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना

0: मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गीत और गजल का कार्यक्रम।

से घर से हम निकले थे मस्जिद की तरफ जाने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म का कार्यक्रम, और इसमें अभी आप सुनेंगे चरण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अभी आपने चरण्य लक्ष्मी कुमारन की ये प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 48 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का, जबकि 5:30 पर आप सुनेंगे स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत सरिता पाठक यजुर्वेदी द्वारा गाया राग अल्हैया बिलावल।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए, अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

श्रोताओं, आओ योग करें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब आप सुनेंगे सरिता पाठक यजुर्वेदी द्वारा गाया राग अलहैया बिलावल।